हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

बोलो, जम के बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, मैंने सुनिया, दिल से बोलो, आवाज नहीं आई, मिलके बोलो।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUIC

0: लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।
1: ओके।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
5: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी है मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहा है। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
4: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
6: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
4: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
7: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई

0: के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
4: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुखपृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाश, जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट TB, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
7: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
8: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
7: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
9: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
10: टायर लो सोना जीतो।
11: क्या?
10: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
12: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
13: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
14: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
15: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह, घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
14: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।
16: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
17: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
18: कैसे हालचाल है, मेरा नाम आरजे आनंद है, आप सभी का स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन। दोस्तों, कहते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है आपकी मुस्कान। हमारी मुस्कान है ना, जब मुस्कुराते हैं तो अलग ही लेवल का स्वैग होता है। लेकिन मुस्कुराने के लिए हमारे दांतों का सुंदर दिखना भी तो बहुत जरूरी है ना। सो आज आपके दांतों को और भी चमकदार बनाने, देखिए हम एंटरटेनमेंट पे बात करते हैं, हम तमाम सारे मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा आपके दांतों की बात भी होनी चाहिए। तमाम सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आती रहती है, तो हमने सोचा यार आज इस सेशन को और भी खास बनाते हैं। इस खास मुलाकात में हमने खास एक्सपर्ट को किया है अपने स्टूडियो में। तो आइए जरा सर का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है मुरादाबाद के स्टूडियो में, कैसे हैं आप? हाउ आर यू
19: सर? आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ।
18: जी सर, इट्स माय प्लेजर सर, प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
19: मैं डॉक्टर SP सिंह, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग देयर इन देवनंदी हॉस्पिटल।
18: ऑलराइट।
19: और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ अपने डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट का, और इसके अलावा मेरा खुद का क्लिनिक है अवंतिका डेंटल होम्योपैथिक क्लिनिक नाम से। तो मैं पिछले 16 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ।
18: अरे वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। जल्दी, ये सर ने तो परिचय भी बड़ा अमेजिंग सा दिया है, बहुत ही बढ़िया। सर आप ये बताइए, रेडियो स्टेशन में आके आपको कैसा लग रहा है, मतलब वाइब, स्टूडियो, माइक और ये सब देख के आपको कैसा लग रहा है?
19: ये अमेजिंग है बिल्कुल, न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी।
18: ऑलराइट, अच्छा पहली बार आप स्टूडियो में आए हैं, मतलब रेडियो स्टेशन में?
19: हाँ, रेडियो स्टेशन में पहली बार आया हूँ।
18: क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा।
19: नहीं, डेफिनेटली।
18: चलिए सर, मुद्दे की बात शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत छोटे

0: मसूड़े पे उस जो भी नुकसान होना है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो उस समय मतलब अगर छोटी सी गंदगी है तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगी, ठीक है। तो उसके लिए माताओं बहनों को सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और एक जो हमारे इंडिया में मिथ है कि हाँ भाई माता लोग या हमारी जो पुरानी माता जी है वो बोलती है कि हाँ भाई डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीने आप उसको ब्रश ही नहीं करने देते, ये एक बहुत गलत। ऐसा करने से आप सोचो जब डिलीवरी होती है डिलीवरी के बाद पूरा ध्यान उस जच्चा के खाने पीने के पीछे ही रहता है। वो पूरा दिन कभी कुछ खाएगी कभी, बिकॉज उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। और आप अगले 2 महीने ब्रश नहीं करोगे तो सोचो दांतों की और मसूड़ों की क्या हालत हो। तो मैं तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं जो भी लेडीज आती है कि नहीं जी मेरी सासू माँ ने बोला था कि नहीं ब्रश नहीं करना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सासू माँ को बताने की जरूरत ही नहीं है आपको ब्रश करना है नहीं करना। आप बाथरूम में गए चुपचाप ब्रश उठाओ ब्रश कर लो, कौन देख रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: उससे आपकी सासू माँ को पता नहीं चला और आपके दांतों की भी देखोगे।
1: बिल्कुल, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर, मुझे ऐसा लगता है। जरूरी नहीं है कि सबको बता के किया जाए। बहुत अच्छी बात है। सो अब जो है आपके मन में जो भी मिथ है आई होप वो आज सारे दूर हो रहे होंगे डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने दांतों की बात करी पेन की बात करी, तो इसका ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितने समय में स्टार्ट कर देना चाहिए पीस?
0: जैसे ही आपको दर्द हो कायदे में
1: कई लोग अवॉइड करते हैं, जैसे अवॉइड कर देते हैं आज डिले कर दिया कल चले जाएंगे परसों चले जाएंगे।
0: देखिए सर, दांत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, अगर आपको दर्द है तो उसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के पास है। आप पेन के खा के दांत का इलाज नहीं कर सकते।
1: करेक्ट,
0: आप पेन किलर खा के दर्द खत्म कर सकते हो, और अगर आप इलाज नहीं करा रहे तो यकीन मानिए आपका दांत भी खत्म हो जाना है।
1: ओ माय गॉड, मतलब ये बहुत बड़ा रिस्क भी है।
0: जी
1: ओके। सो दोस्तों देखिए, तमाम सारे मिथ आज आपके दूर हो रहे हैं एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगने वाला है। डॉक्टर साहब एक और सवाल, इसी बीच मेरे जहन में तमाम सारे सवाल आ रहे हैं और आज मैं सोच रहा हूँ भर भर के जितने भी सवाल है सब क्लियर कर लूँ, क्योंकि ये मौका कभी कभी मिलता है हमें। अच्छा, कई लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, तो ये दुर्गंध मतलब दांतों की वजह से आती है, खाना फंसा रह जाता है इस वजह से, या कुछ और रीजन है?
0: सर मुंह से दुर्गंध के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो लोकल रीजन मतलब अगर आपका दांतों में गंदगी है तो मुंह से बदबू आएगी, ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि आदमी के दांत साफ हैं, ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी मुंह से बदबू आ रही है। तो इसका दूसरा कारण है कि उस आदमी का या बंदे का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो भी आपके मुंह से स्मेल आती है, जो आप रिफ्लेक्स से जाते हैं वो बदबू के रूप में बाहर आते हैं।
1: मतलब इसका दांतों से कोई लेना देना है
0: नहीं? बदबू के 2 कारण है, एक तो दांतों दांत है,
1: ठीक है।
0: अगर दांत आपके साफ है उसके बाद बदबू आ रही है तो इसका मतलब आपका पेट खराब है।
1: ओके,
0: आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो अंदर से बहुत सारी गैसेज आती हैं पेट से, वो बदबू करती है,
1: वो बदबू करती है। ओके ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दांतों में ब्लीच कराना अच्छा होता है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड भी हो गया है कि आप दांतों की जो है ब्लीच करा लो, आपकी शाइन बढ़ जाएगी, ग्लो बढ़ जाएगा दांतों का, तो क्या ये सही में सही होता है क्या दांतों के लिए?
0: सर ब्लीच कराना मतलब जो हम ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं वो बेसिकली एसिड होता है।
1: ओके,
0: वंस ए व्हाइल ठीक है, हाँ भाई किसी की शादी है, एक दिन का प्रोग्राम है, उस दिन आदमी को सबसे सुंदर दिखना होता है, तो उसके लिए आप करा सकते हो, बट रेगुलरली कराना दांतों को नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक।
1: ओके, मतलब ये ऐसे नहीं कंटिन्यू नहीं कराना चाहिए, मतलब कभी कभार कोई फंक्शन में
0: वन से वाइप
1: जैसे आपने बताया। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ब्लीच करा के आ रहे, तो भाई ज्यादा कराओगे तो दांतों के लिए खतरा होगा कहीं ना कहीं। सर एक सवाल है बेसिकली, जैसे अब मैं अपने घर से रिलेटेड है, मेरे मम्मी है, हमारी दांतों में प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ खाती है तो वो अपने आप हिलने लगता है, तो उनकी शिकायत है कि इस दांत को निकलवा के नया लगवाना है मैंने, तो मतलब क्या वो दांत निकलवा देना चाहिए जो हिल रहा है?
0: सर देखिए ऐसा है, दांत क्यों हिल रहा है पहले तो हमें इसका कारण जानना चाहिए। वो जो हम पायरिया की बात कर रहे थे ये बेसिकली पायरिया ही है।
1: ओके,
0: पायरिया ऐसी बीमारी,
1: मतलब अगर खून नहीं भी आता तो भी पायरिया?
0: या एग्जैक्टली, खून जब पायरिया शुरू होगा तब आएगा, जब पायरिया जब इन्फेक्शन आपकी हड्डी में चला जाएगा फिर आपको ब्लीडिंग नहीं होगी।
1: ओके,
0: धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी दांत की हड्डी को गलाता रहेगा।
1: ओके,
0: और जब हड्डी पूरी गल जाएगी तो दांत निकल के बाहर आ जाएगा।
1: ओके,
0: तो इसलिए पायरिया भी खतरनाक बीमारी है, वो पूरा टूथ लॉस कर देती है।
1: ऑलराइट,
0: अगर आपको लग रहा है आपका कोई दांत हिल रहा है तो आप जाओ डेंटिस्ट को जाके दिखाओ, वो आपके दांतों की सफाई करेगा, पायरिया का इलाज करेगा। एक चीज और, कई बार दांत हिलने का और भी कारण हो सकता है,
1: जैसे
0: बहुत सारे लोग हैं, मतलब आजकल कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अगर किसी आदमी को कोई आदमी गुटखा खाता है, कोई आदमी सिगरेट पीता है, तो ऐसे लोगों कैंसर होने की संभावना ज्यादा
1: होती है।
0: ठीक है, तो अगर कोई आदमी गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है या तम्बाकू से रिलेटेड कोई भी चीज वो यूज करता है, कंज्यूम करता है, और उसको लगता है कि मेरा दांत अचानक से हिलने लगा, तो उसको एकदम से जाके किसी भी डेंटिस्ट के पास उखड़वाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसका कारण ये है कि वो दांत हिल रहा है, उसको ऐसा लगता है कि नॉर्मली हिल रहा है, बट कई बार मतलब ऐसा होता है कि वो कैंसर की वजह से दांत हिल रहा होता है, तो वो पूरा प्रॉपर चेकअप कराने के

0: आदि दांत को उखड़वाना चाहिए। तो हमारे पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब अभी जैसे मेरे पास 3 दिन पहले एक पेशेंट आया
1: जी,
0: उसने दुबई में दांत उखड़वाया 4 महीने पहले।
1: अच्छा।
0: हाँ, और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब ये मेरा जख्म 4 महीने से नहीं भर रहा है। तो मैंने उसको देखा, मुझे देखते ही लगा तो कैंसर का है, मतलब प्रोबेबिलिटी कैंसर की ज्यादा। मैंने उसकी बायोप्सी ली, बायोप्सी भेज दी लैब में, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ शायद कैंसर ही निकलेगा। और कैंसर ऐसे ही पता चलता है कि जी मैंने दांत उखड़वाया था। लोगों में ये भी था कि दांत उखड़वाने की वजह से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। इवन मेरे से एक पेशेंट आया, वो बहुत गुट का क्रोनिक चीवर, ठीक है, और उसको पीछे अक्कल डाड़ फंसी हुई है। मैंने कहा तुम गुटखा खाते हो, ये तुम्हारी डाड़ तुम्हारे गाल को काट रही है, मैं इसको निकालना पड़ेगा, अक्कल डाड़ है, इसका वैसे भी कोई यूज नहीं होता। कह रहे नहीं डॉक्टर साहब डाड़ नहीं उखड़वाऊंगा, मेरा वो साला है उसको डाड़ उखड़वा, उसके बाद उसको कैंसर हो गया।
1: ओह माय गॉड।
0: तो वो उसकी जो सोच है वो ये है कि दाढ़ उखड़वाने से कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है।
1: ये तो बहुत सारे लोगों का मिथ है फिर कहीं ना कहीं सर।
0: हाँ, गलत है वो।
1: ओके।
0: तो अब आप उसकी क्रोनोलॉजी समझो, अब वो तब आएगा या तो उसको कुछ नुकसान हो जाएगा, उससे पहले वो नहीं आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए मतलब आपको दांत उखड़वाना है तो मतलब डेंटिस्ट के पास जाइए। और मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है, एक पढ़े लिखे अच्छे डेंटिस्ट को ही दिखाइए।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। अनक्वालिफाइड लोगों को दिखाना मतलब आप अपने दांत के साथ और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
1: ओह माय गॉड। कई बार होता है ना सर कि छोटे छोटे हम ऐसे ही किसी के पास भी चले जाते हैं, कुछ झोला छाप के पास भी चले जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियों के बीच एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आजकल आपको पता है हमारे सभी लोगों को लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गया है, एंड खान पान भी बहुत बदल रहा है लोगों का, स्पेशली आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो। आजकल जैसे जंक फूड एकदम से ना बहुत छाया हुआ है लोगों के दिमाग में, जहन में, तो क्या इससे भी हमारे दांतों की सेहत पे कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ता है?
0: जंक फूड तो आपके पूरे सिस्टम को खराब करता है।
1: ओके।
0: जनरली जंक फूड क्या है, वो स्टिकी फूड होता है, तो वो दांतों में ज्यादा चिपकता है, उसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब जो ट्रेडिशनल फूड है उसके मुकाबले दांतों से ज्यादा चिपकता है, तो उससे कैविटी होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। इतना नुकसान है। बाकी जो आपके सिस्टम को आपके डाइजेशन को नुकसान है वो एक अलग चीज है।
1: ओके। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोगों के दांतों में आपने देखा होगा येलोपन आ जाता है, तो वो येलोपन मतलब किस वजह से बनता है वो येलो परत? क्या वो लाइफ में कभी हटेगी भी या नहीं? जैसे कुछ लोगों का मिथ हो जाता है कभी हटेगी नहीं, आप कितनी ब्रश कर लो, कितनी ब्लीचिंग करा लो,
0: दांत कभी भी व्हाइट नहीं होते।
1: ओके।
0: वो थोड़े से पीले होते ही है, ठीक है, अंदर डेंटिन होती है, वो बिल्कुल येलो होती है, उसके ऊपर हमारा इनेमल होता है।
1: ओके।
0: तो इनेमल की थिकनेस के ऊपर उस दांत का कलर डिपेंड करता है।
1: ओके।
0: और ये कलर आदमी के स्किन के कलर पे भी डिपेंड करता है।
1: ओके।
0: ठीक है, जैसे कोई ब्लैक आदमी है, मतलब जो अफ्रीकन है, उनके दांत हमेशा आपको सफेद ही दिखाई देंगे, चाहे वो व्हाइट है चाहे येलो है। और उसके कंट्रास्ट अगर आप किसी व्हाइट पर्सन को देखो, किसी अंग्रेज को देखो, ठीक है, उस दांत आपको हमेशा पीले दिखेंगे, क्योंकि वो तो इतना व्हाइट है, उससे ज्यादा व्हाइट उसके टीथ हो ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर दांत गंदे, अगर वो गंदगी की वजह से पीले हैं, तो उस गंदगी को साफ करके दांतों को साफ किया।
1: अच्छा, मतलब उसके लिए आपको रेगुलरली ब्रश और सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नीम की दातुन करो, दातुन चबाओ, ये ब्रश से अच्छी होती है, तो आपका क्या सजेशन होगा?
0: सर, नीम की दातुन मसाज कर सकती है, वो ब्रश नहीं कर सकती।
1: वही ना, कई लोग उसको चबा के उसका फूल बना के ब्रश करने की कोशिश करते हैं।
0: बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, नीम की दातुन बहुत बढ़िया, नीम की दातुन आपने पूरी क्रश कर दी तो वो इतनी सॉफ्ट होती है, वो दांतों के बीच में जाके साफ ही नहीं कर सकती।
1: इनफैक्ट फंस और जाएगी, छोटी छोटी वो फंस जाती है, तो मतलब ब्रश का ही इस्तेमाल करना है।
0: एग्जैक्टली, ब्रश से ही साफ होता है।
1: तो दोस्तों देखिए, जागो श्रोताओं, जागो, अब ब्रश करने की बारी, आप जो है एक्सक्यूज़ मत दो, सुबह हो या शाम ब्रश करना जरूरी है, ये एक छोटा सा है काम। सर एक डॉक्टर साहब, आपसे तमाम सारी बातें हम कर रहे हैं, दांतों की हेल्थ के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो आप बताइए सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है, अभी ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी वाइब चेक कर लेते हैं, आप रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, एंटरटेनमेंट की फील्ड है।
0: नहीं, डेफिनेटली, मतलब इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बीइंग हियर, और आप मतलब मैं सुनता ही था, आज मैं आपको साक्षात देख रहा हूँ, तो ऐसी फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि नहीं यार आपका काम भी काफी हार्ड है, मतलब इट्स नॉट सो सिंपल।
1: एग्जैक्टली,
0: ठीक है,
1: मतलब चैलेंजिंग भी है आई थिंक।
0: एग्जैक्टली, मतलब आपको जनता की नब्ज पहचाननी है, ठीक है, जो दूसरा बंदा आपके सामने उसकी भी नब्ज पहचाननी है, मतलब यू शुड हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मैं देख रहा हूँ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सर जिस काम को आप करते हो ना, वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं, तो अपग्रेड होती चले चली जाती हैं।
0: Exactly.
1: आप दांतों के डॉक्टर हैं, हम रेडियो के डॉक्टर हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नो डाउट। सो वेल आगे बढ़ेंगे सर, एक और क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोगों के दांत खराब हो जाते हैं तो फिर उनको ये लगता है कि अभी किसी काम के नहीं रहे, और वो कई बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। कहीं ऐसे बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर लोग आज भी इतने अवेयर नहीं है, तो अगर किसी वजह से किसी के दांत खराब है या कोई दिक्कत परेशानी है दांतों में, तो उसका बेसिकली सही तरीका क्या होगा?
0: सर अगर किसी के दांत खराब हो गए हैं तो पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको इलाज करके सही कर लें, क्योंकि नेचुरल के जैसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो नेचुरल खराब होने के बाद भी अगर वो सही हो सकता है तो आपके लिए वो सबसे अच्छा है। बट अगर आपका दांत किसी भी कारण से उखड़ गया है तो अभी बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है। ठीक है, आप ब्रिज लगवा सकते हैं, और ब्रिज में क्या है, आपको साइड वाले दांत घिसवाने पड़ते हैं, दांत घिसने का मतलब दांत का नुकसान होना। बट एक दूसरा तरीका है जो आजकल बहुत पॉपुलरली है, काफी पॉपुलर है और चल भी रहा है, डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट देखिए नेचुरल जैसा ही है, नेचुरल नहीं हो सकता, बट आपको उससे बिल्कुल नेचुरल जैसी फीलिंग आएगी, और बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है, जरा सा हल्का सा चीरा लगाते हैं, ड्रिल करके लगा देते हैं, और बिल्कुल नेचुरल जैसा दिखाई देता है, और आप उससे कुछ भी चबा सकते हैं।
1: ओके,
0: इम्प्लांट लगाने में कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है, और आपके दांत बिल्कुल नेचुरल जैसे ही दिखाई देंगे, बशर्ते वो जो लगाने वाला है वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए, वो अनुभव वाला डॉक्टर होना चाहिए,
1: एक्सपीरियंस होल्डर।
0: एग्जैक्टली,
1: ओके,
0: वो सारा स्किल का खेल है। अगर आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट भी मतलब बोलेगा, लगेगा कि नहीं यार मतलब वो नेचुरल जैसा दिखाई देगा।
1: ओके,
0: इंडिया में दांतों की बड़ी सी मतलब वैल्यू कम है लोगों को, उनको लगता है कि बिना दांत के भी सारी चीजें हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक आदमी को अगर दांत नहीं है तो वो खाना चबा के नहीं खाता, खाना चबा के नहीं खाएगा तो उसका पेट खराब होगा, उसका पेट खराब होगा तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा, वो फिजिशियन के पास जाएगा, और वो पूरी उम्र पेंटोप्राजोल, ठीक है, रेविप्राजोल या वो गैस वाली दवाइयां पूरी उम्र खाता रहेगा।
1: करेक्ट,
0: तो दांत का काम तो दांत ही करे, पेट नहीं कर सकता, उसकी एक लिमिट है, कब तक करेगा।
1: बिल्कुल सर,
0: और जैसा सभी जानते हैं कि भाई जो डाइजेशन है वो 50-60% ओरल कैविटी में ही हो जाता है। जब आपके दांत खाने को अच्छे से चबाएंगे, सलाइवा आके मिक्स होगा, बहुत सारे एंजाइम उसमें मिक्स होंगे, तो डाइजेशन आपकी ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो वो वाला काम हो नहीं रहा है, उस काम के लिए फिर पेट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, पेट वो काम कर नहीं पाता, तो अल्टीमेटली आपको गैस, कब्ज़ और इन सब चीजों से गुजरना।
1: ओके, सो श्रोताओं छोटी छोटी बातें हैं, एंड आई एम श्योर ये बहुत काम की होंगी, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डॉक्टर साहब जाते जाते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, बहुत छोटा सा सवाल है, जैसे छोटे बच्चों के बारे में आपने बात करी थी अभी कि ब्रशिंग का उनका टाइम बेसिकली, तो कई बारी ना बच्चों के ब्रशिंग के साथ साथ उनका जो नेचुरल लाइट होता है वो भी हमारे दांतों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारा नेचुरल खान पान जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी दांतों की हेल्थ के लिए, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो।
0: देखिए सर, नेचुरल तो हमेशा बेस्ट होता है, लेकिन
1: स्पेशली जैसे दांत के कुछ लोग कहते हैं, मैं आपको बीच में कि दूध ले सकते हो, कैल्शियम ये दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इस तरह की कुछ
0: नहीं, दांतों के लिए कैल्शियम रिच डाइट या मतलब आयरन कैल्शियम ये सारी चीजें जरूरी है, वो आपके बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए भी जरूरी है और दांतों के लिए भी जरूरी है। ठीक है, बट न्यूट्रिशन के लिए पहले दांत होने चाहिए।
1: ओके, बिल्कुल सही बात है।
0: ठीक है, अगर आप चबा के ही नहीं खा पाओगे तो न्यूट्रिशन कैसे प्रॉपर
1: होगा।
0: बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है ना, तो दूध के दांत निकल जाएंगे। अगर ऐसी बात थी तो नेचर ने क्यों दिए।
1: सही बात है,
0: भगवान ने, कुदरत ने, अल्लाह ने क्यों दिया, इनको जरूरत है।
1: करेक्ट,
0: जब तक परमानेंट दांत नहीं आ जाते तब तक इनकी जरूरत है, तब तक बच्चा उन्हीं से खा रहा है, तो उनकी केयर करना भी जरूरी है। बच्चे के दांत में एक बार दर्द हो गया तो किनमानी वो नहीं खाएगा।
1: करेक्ट,
0: ठीक है, आपने उसको मेडिसिन दे दी, दर्द बंद हो गया, आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, बट उसको कंटिन्यूअसली दर्द हो रहा है, तो वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, उसके बाद बोलना भी छोड़ देगा, बट वो उधर से चबाना भी छोड़ देगा। ठीक है, और अगर यही कंडीशन दूसरी साइड भी होगी तो बिल्कुल ही चबाना छोड़ देगा, वो चबाने वाली चीज जो है वो खाएगा ही नहीं, और यकीन मानिए अगर बच्चा चबा के नहीं खा रहा है तो उसके जबड़े की ग्रोथ भी नहीं होगी।
1: अच्छा, और सर जब चबा के खाना खाते हैं तो उसके रिजल्ट भी बेहतर मिलते हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: तो थैंक यू सो मच, आपने तमाम जानकारियां दी आज हमारे सुनने वालों को, और ये जो इन्फॉर्मेशन है तमाम लोगों तक बहुत हेल्प करने वाली है। सो सर जाते जाते कोई एक अपनी तरफ से एक सबकी दांत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और दांतों की हेल्थ के लिए कोई एक अच्छा सा,
0: सिर्फ एक ही मंत्र है, सफाई, ओरल हाइजीन, उसके लिए आप दोनों टाइम प्रॉपरली ब्रश कीजिए, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साल में एक बार अपने डेंटिस्ट को जाके चेकअप करा लीजिए, क्योंकि अगर कोई परेशानी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा।
1: ओके,
0: वो सिर्फ आपका डेंटिस्ट ही चेक करके बताएगा कि इस दांत में ये परेशानी है, और उसका समय से इलाज हो जाएगा।
1: अरे वाह क्या बात है। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने भी इस इन्फॉर्मेशन को सुना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमें अपने मैसेज जरूर पहुंचाइएगा, अपने फीडबैक, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। हमारा नंबर बहुत सिंपल है 9837896896, और ऐसी तमाम सारी जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सर कुछ और कहना चाहते हैं आपसे? मुझे बात करके बहुत मजा आया, मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं भी आपको फ्री कर दूं, लेकिन ज्यादा लंबा आप कर भी नहीं सकते हैं।
0: नहीं नहीं सेम यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मुरादाबाद आके, तो इट वाज ए नाइस एक्सपीरियंस एंड आई विल रिमेंबर इट।
1: थैंक यू सर, और मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना बात के लिए भी छोड़नी चाहिए, कुछ आज ही पूछ लेंगे तो फिर मजा नहीं
0: आएगा, सही कह रहे हैं।
1: जल्दी सर से फिर वापस मिलेंगे, आप कहीं मत जाइए, अच्छे गानों के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद। थैंक यू सर, FM मुरादाबाद और RJ आनंद आपका दिल से शुक्रिया करता है सर।
0: थैंक यू,
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
8: कॉल 8826213131।
9: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद, कॉल 7066002430।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, और प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, हमारी जो सोच है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जिंदगी को, लाइफ को मस्त और झकास बनाने के लिए, है ना रीना? अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो सब कुछ हम अच्छे से कर पाएंगे, अच्छा ही होगा और अच्छा भी कर पाएंगे, है ना?
10: बिल्कुल।
1: तो देखिए ये जो प्रोग्राम है ना ये सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है, और चाहे आप विमेन्स हैं या फिर आप मेन्स हैं, आप बच्चे हैं या आप युवा हैं, ये जो कार्यक्रम है वो आप सभी के लिए है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी राय अपने विचार रख सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, बिल्कुल हम आपके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो रीना तुम कैसी हो पहले ये बताओ।
10: आनंद मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ। आई होप कि तुम बहुत अच्छे
1: होगे। अच्छा ही हूँ यार मैं। और देखो दोस्तों मैं और रीना आए हैं चटपटी बातें लेकर। तो रीना हमारे शो का नाम है सोच बदलो, ये डेली हम प्रसारित करते हैं।
10: बिल्कुल,
1: क्या मानना है, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा या नहीं?
10: अरे बिल्कुल, अगर हम सोच बदलेंगे तो हमारा समाज भी बदलेगा और हमें जो आसपास सुन रहे हैं उनकी भी सोच बदलेगी, फिर वो एक दूसरे तक बताएंगे कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो आज सोच बदलू का जो टॉपिक है वो है भैया ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बचें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक पे बात करना। तो जितने भी हमारे इस वक्त दोस्त हमारे प्रिय मित्र रेडियो से जुड़े हैं बिल्कुल जुड़े रहिएगा। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद में रीना वापस आएंगे। उसके बाद हम इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड से धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं। तमाम जानकारियां आज आपके लिए इस प्रोग्राम में, तो आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। श्रोताओं आई लव यू।

0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो श्रोताओं, आज हम मुद्दा लेकर आए हैं आपके लिए कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। रीना, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया है, हर इंसान जो है डिजिटली आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को जो है अब डिजिटली ग्रो करना है, मतलब सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आजकल तो लेने देने का सीन भी ऑनलाइन हो गया। और इसी बीच तमाम सारे जो हैकर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उनकी भी कतार मार्केट में बढ़ती जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं
1: ज्यादा बढ़ रही है
0: जी। जो फ्रॉड के मामले रही ना, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई सीन या कोई कहानी या किस्सा है तुम्हारे साथ या कभी हुआ हो? हाँ तो रीना, वही मैं आपसे पूछ रहा था, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो?
1: देखो, मैं किसी और की कहानी बताने से पहले मैं अपनी बता देती हूँ।
0: बता, बिल्कुल बता यार।
1: एक्चुअली ये हुआ ना कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ, कपड़े बहुत खरीदती
0: हूँ, सभी करते हैं।
1: हाँ, तो मेरे को ना, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा बहुत अच्छे से सूट के, जो उन्होंने अपना खुद का पेजेस बना रखा था कि यहाँ से सूट ऑर्डर करो और कम दाम में आपको अच्छे सूट मिलेंगे। तो उन्होंने ऑफर डाला था कि 500 में आपको 2 सूट मिलेंगे, अगर आप 1000 डालते हो तो आपको 5 सूट मिलेंगे। तो मैंने सोचा वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने उन्हें मैसेज वगैरह किया, तो मैंने जो भी सूट लेने थे मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको इतने इतने पेमेंट करने पड़ेंगे। मैंने पेमेंट कर दिया 1000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरा ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम चेक करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपने जो ये 1000 रुपए पेमेंट कराया ना, तो ये हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा, आपको 8000 और करने हैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं वही समझ गई, मैं कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पर।
0: तो मतलब तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो गया ना।

0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: दोस्तों, अब देखिए रीना के साथ तो जो है धोखाधड़ी वाला सीन हो गया। आपके साथ ना हो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आप इस चीज का शिकार होते हैं तो आप कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कहाँ पर जाकर आप जो है इसकी सुनवाई करा सकते हैं, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। श्रोताओं, सबसे मजे की बात पता है क्या है कि आजकल ना जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड करते हैं लोग, जो स्कैम करते हैं मार्केट में, इतने इनके जो तरीके हैं ना बहुत बदल गए, एकदम आपको जेन्युइन लगता है रीना। जैसे केवाईसी अपडेट के नाम पर आपको कॉल आ जाएगा,
0: बिल्कुल,
1: कभी
0: बिल्कुल।
1: आपको व्हाट्सएप पे कोई अचानक से लिंक आ जाएगा,
0: कभी बोलेंगे बैंक वाले बोल रहे हैं,
1: कॉल्स आ जाती हैं। और आजकल तो शादी के कार्ड भी आ रहे हैं, ऐसा लगेगा किसी ने भेजा है, क्लिक करोगी तो पैसा
0: पैसे कट जाते हैं,
1: ऐसा वाला सीन भी चल रहा है। तो दोस्तों, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और इसी बात को जो है हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक अंतराल का समय है, म्यूजिकल ब्रेक भी लेंगे, अंतराल का समय है, और उसके बाद आपको सुनवाएंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, और बचने के लिए आपको कहां कैसे शिकायत दर्ज करानी है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद,
0: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे,
1: यह है आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। चलिए एक छोटा सा अंतराल, फिर मिलते हैं।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
1: श्रोताओं, एक बार फिर से पुनः आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रीना और मैं प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं सोच बदलो, और इस प्रोग्राम का नाम ही इतना प्यारा है, तो ये सोचिए प्रोग्राम कितना प्यारा होगा। वेल, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। और आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, मैं और रीना, आपसे ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक खास जानकारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ एक छोटा सा आपके साथ एक प्रोग्राम साझा कर रहे हैं। आप इसको भी सुनिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम थोड़ी देर में मिलेंगे, मैं और रीना। क्यों रीना, दोस्तों बहुत जरूरी है, देखिए सही सोच के साथ साथ सही जानकारी का होना भी जरूरी,
0: बहुत जरूरी है।
1: तो आइए सोच बदले प्रोग्राम के अंतर्गत सुनते हैं ये खास और महत्वपूर्ण जानकारी।
5: आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है उससे, पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट, सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है, और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रुपए में दे रही है,
6: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रुपए का है।
5: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं? फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए ना तो डिलीवरी आई है ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है, या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें, ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है। HTTPS और लॉक का निशान देखें। बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें। अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें। कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुने। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले, छात्र और गृहिणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें। शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है, साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना, वो जितने शातिर है ना, आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
7: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
8: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
9: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
8: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
10: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
11: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवास, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
12: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
13: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आप सभी का फेवरेट शो लेकर मैं हाजिर हूँ बिंदास मॉर्निंग। सुबह के दोस्तों 9:06 हो चुके हैं राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में, और खूबसूरत सा आज का दिन वेनेसडे का। जी हाँ दोस्तों, सुबह की हल्की हल्की हवाएं, चिड़ियों की चहचहाट और धूप की चमक ये याद दिलाती है कि हर दिन अपने साथ नई उम्मीदें लेकर आता है। और हाँ, गर्मी जरूर बढ़ रही है, धूप भी तेज है, लेकिन अगर मन ठंडा और सोच पॉजिटिव हो तो हर मौसम खूबसूरत लगने लगता है। और दोस्तों, आज का हमारा शुभ विचार कुछ ऐसा ही है जो शायद आपके दिलों को छू जाए। साथियों, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना सीखिए, जो बदला नहीं जा सकता उसको स्वीकार करना सीखिए, और जो जिंदगी में आता है उस पर अच्छे से काम कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है उसमें दिल लगाकर मेहनत करिए, यकीन मानिए सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और दोस्तों, जिंदगी हर किसी को अलग अलग रास्ते देती है, कभी आसान कभी मुश्किल, लेकिन जो इंसान मुस्कुराकर आगे बढ़ता रहता है वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। देखिए, हम तो अपनी मंजिल पर आ चुके हैं, और मुझे पता है हमारे बहुत सारे श्रोता इस समय ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ ऑफिस निकल चुके हैं, कुछ अभी ऑन द वे कार में हैं। एंड हमारी जो ब्यूटीफुल वुमेन इस समय हमें सुन रही हैं वो नाश्ता बनाने में बिजी हैं, और कुछ तो तैयार हो रही हैं आज। ओहो क्या बात है, आज जो आपने साड़ी पहनी है ना, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। दोस्तों, वेनेसडे का दिन है, बहुत ही खूबसूरत सा बुधवार का दिन है, खुशी आपके साथ है, और शो का नाम है बिंदास मॉर्निंग। आपकी मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए आज खुशी यहाँ पर आ चुकी है। कुछ कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें आज होने वाली हैं। शो में क्या होने वाला है आपको धीरे धीरे पता लगेगा, लेकिन आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आप सभी के लिए, इंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। यह है आपकी शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओहो, अभी अभी चाय पी रहे हैं आप, चलिए चाय की चुस्कियों के साथ ये खूबसूरत गीत का आनंद लीजिएगा।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल।

0: जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
5: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
4: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
5: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
4: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
6: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक इंजॉय किया फ्रॉम द मूवी ड्रीम गर्ल से, ओ राधे राधे राधे तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। देखिए, कृष्णा के बिना तो राधा जी और राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, जैसे हम आपके बिना अधूरे हैं। अब आप सब हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी सुबह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ एवरीवन कि आप भी मुझे अपने संदेश पहुँचाइए, नंबर 9837896896। और सुनने वाले सभी श्रोताओं को पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, ये एकादशी बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। ये एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और ख़ास तौर पर अधिक मास में आने वाली एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है। और हम तो बस यही कामना करते हैं प्रभु से कि भगवान विष्णु जी आप पर सदैव, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपका जीवन सुख शांति समृद्धि और खुशियों का वास हो आपके घर में, एंड आप हमेशा मुस्कुराते रहें। दोस्तों, समय हुआ है 9:19 और आज के इतिहास की बात भी कर लेते हैं। अब हम आपके साथ कनेक्ट हुए हैं और इतिहास के पन्नों में क्या कुछ खास है सब आपको बताते हैं।

साथियों, 27 मई एक ऐसा दिन जिसने भारत और दुनिया को कई यादगार पल दिए। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी खुशी। और अब वक्त हो गया इतिहास की पन्नों को पलटने का। 27 मई की तारीख है ये दिन। ये तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है, बल्कि कई भावों को प्रेरणादायक और ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह भी है। साथियों, 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ था। आज ही के दिन स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। उन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी कहा जाता था, क्योंकि बच्चों के प्रति उनका स्नेह बेहद खास था। उन्हें आधुनिक भारत की नींव रखी, उन्होंने भारत की आधुनिक नींव रखी। देश में बड़े बड़े उद्योग, वैज्ञानिक संस्थाएं और शिक्षा के नए रास्ते खोले। उनकी एक खूबसूरत सोच थी, संस्कृति, मन और आत्मा का विचार है। साथियों, आज भी उनका योगदान भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। और बात करें अगर 2010 की, तो भारत की मिसाइल शक्ति हुई और मजबूत। जी हाँ दोस्तों, 27 मई 2010 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में स्वदेशी मिसाइल धनुष और पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया था। इस उपलब्धि ने दुनिया को दिखा दिया था कि भारत अपनी सुरक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है।

और दोस्तों दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट, जी हाँ, लंदन के ग्रेट एग्जीबिशन के दौरान दुनिया का पहला इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। यानी दिमाग खेल की दुनिया में भी 27 मई का दिन ये खास बनाता है।

और दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, कोच और शानदार कमेंटेटर रवि शास्त्री जी का आज जन्मदिन है, तो हमारी पूरी एफएम की टीम की ओर से रवि शास्त्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी आवाज और उनका अंदाज आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में बसता है। और दोस्तों इतिहास हमें सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि आने वाले कल को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देता है। और भी बहुत सारी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ कनेक्ट रहिए और शानदार गीतों के साथ, शानदार बातों के साथ हम आपसे अभी फिर से कनेक्ट होते हैं। आप बस कहीं मत जाओ, दिल से मुस्कुराओ और हाँ, रेडियो किसी को बिल्कुल भी मत घुमाना। चलिए एक प्यारा सा गाना आज की मॉर्निंग आप सभी के लिए एंजॉय कीजिएगा। मैं लौट कर आती हूँ कुछ ब्यूटीफुल नगमों के इस बार।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर UKG तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, AI, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

क्या बात है दोस्तों, सुबह सुबह इतने एनर्जेटिक ट्रैक आप सुनेंगे ना तो आपकी मॉर्निंग और भी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी। जी हाँ, शुभ नाम है बिंदास मॉर्निंग और मैं आपकी अपनी आरजी खुशी आपके लिए हाजिर हूँ आज की सुबह। मुझे ये अवसर मिला है, आई एम वेरी हैप्पी। और दोस्तों, अभी आपने बहुत ही अमेजिंग ट्रैक इंजॉय किया सुनिधि चौहान साथ में शाहिद माले जी की खूबसूरत सी आवाज में। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों मौसम के बारे में, या एक्चुअली क्या हो रहा है ना, दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से एक ज़रूरी अपडेट सामने आ रही है। 28 मई से मौसम करवट ले सकता है और इस मौसम में आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार नहीं करवाएंगे बिल्कुल भी, आपको बता ही देते हैं एवरीवन, क्योंकि समय की अगर बात करें तो यहाँ पर वक्त हुआ है 9:33 और कुछ जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं, साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसे में आप सभी थोड़ा सतर्क रहें, अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो ख़राब मौसम में बाहर निकलने से बचें और अपनी सेहत का भी खासकर ध्यान रखें एवरीवन। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब मौसम ख़राब होता है ना तो अक्सर बिजली की समस्या भी बढ़ जाती है, इसीलिए एक छोटी सी लेकिन ज़रूरी सलाह, अपना मोबाइल फ़ोन पहले से ही चार्ज करके रखें, क्योंकि आजकल फ़ोन सिर्फ बात करने का ज़रिया नहीं है बल्कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा भी बन चुका है। फ़ोन से ही हमारे कई ज़रूरी काम होते हैं, चाहे किसी से संपर्क करना हो, ज़रूरी जानकारी लेनी हो या फिर किसी इमरजेंसी में मदद मांगनी हो। मौसम बदले तो सावधानी भी ज़रूरी है और फ़ोन चार्ज हो तो थोड़ी राहत भी ज़रूरी है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं दोस्तों कि आप इस मौसम में अपना ख्याल रखें और फ़ोन वगैरह चार्ज करके रखें, पहले से ही हम आपको बता देते हैं।

और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, अगर सुबह के नाश्ते में कुछ हल्का स्वादिष्ट और हेल्दी खाना खाने का मन है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, बताएं आपको, पोहा एक शानदार विकल्प है। जी हाँ, पोहा आसानी से पच भी जाता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा भी देता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। इसमें आयरन, कार्बोहाइड्रेट और कई ज़रूरी पोषण तत्व पाए जाते हैं। और अगर इसमें मूँगफली के दाने, हरी सब्जियां और थोड़ा सा नींबू मिला दिया जाए तो इसका स्वाद और सेहत दोनों दोगुना हो जाती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि सुबह सुबह क्या बनाएं ब्रेकफास्ट में, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे कहती हूँ पोहा बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। क्योंकि दोस्तों, दिन की शुरुआत करें एक हेल्दी प्लेट पोहे के साथ, ताकि पूरा दिन रहे एक्टिव, फ्रेश और मुस्कुराता हुआ। जब आप हेल्दी खाते हैं तो आपका पूरा दिन भी अच्छा जाता है। देखिए, यहाँ पर अभी हमने की है खाने की बात और मौसम की बात, है ना। अब कुछ म्यूजिकल ब्रेक का टाइम भी हो गया है, तो म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम लौट कर आते हैं। और जो यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आए हैं ना बैक टू बैक, आप सभी के, उनको भी हम शामिल करते हैं। आप कहीं मत जाइए, रेडियो किसी को बिल्कुल भी मत घुमाइए। और खुशी कहती है अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर चिपके रहिए। और ये प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए जस्माना की आवाज़ में।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. बिंदास मॉर्निंग में खुशी आपके साथ है और ये है आपके सिटी का फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6. और वक्त हुआ है अभी 9:44. जी हाँ, 9:44 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में. और मैंने जैसे आपसे कहा था कि दोस्तों रिटर्न हम आएंगे, तो जो आपके खूबसूरत से यहाँ पर मैसेज आए हैं उनको हम क्विकली शामिल करते हैं. और कुछ वॉइस नोट भी हमारे पास आए हैं बहुत स्वीट से, तो उनको भी जल्दी से सुनते हैं आज की मॉर्निंग क्या पहुँचाते हैं हमारे प्यारे प्यारे से लिसनर्स. उनके दिल की आवाज़ें, उनकी प्यारी सी मधुर आवाज़ हम भी सुन लेते हैं और आपको भी सुनवाते हैं. तो चलिए क्या पहुँचाया है प्यारी सी छोटी सी बच्चे ने, उनकी आवाज़ सुन लेते हैं.
1: खुशी मैडम नमस्कार, हम भी कार्यक्रम सुन रहे हैं. मेरा नाम अर्जित सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रहा हूँ. खुशी मैडम नमस्कार, ढेर सारा आलू भेजे हैं, खा लीजिएगा. मेरा नाम अर्जित सिंह है.
0: थैंक यू अर्जित, आपने बहुत सारे आड़ू हमें भेजे हैं और बताएं हम आज हमारा आज उपवास भी है और फ्रूट्स हम खा सकते हैं. थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे फ्रूट्स हमें भेजे हैं आज की मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद. और ये मैसेज हमारे पास आया है. मैडम जी नमस्कार, उमा शंकर जी का मैसेज हमारे पास आया है, साथ में अवंतिका सिंह है, अर्जित सिंह है और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से. एंड नेक्स्ट हमारे पास एक और वॉइस नोट आया है बहुत ही प्यारा सा, उसको भी सुन लेते हैं.
2: नमस्कार राधे राधे, बिंदास मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे खुशी के साथ और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पागबड़ा से. आज है प्रभु का बहुत पावन दिन, आज है पद्मिनी एकादशी जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी है और इस एकादशी पर व्रत करने पर पूरे साल भर की एकादशियों का पुण्य आपको मिलता है. इसलिए अगर आपने अभी तक कुछ ग्रहण नहीं किया है तो इस एकादशी को व्रत रखिए और साल की सारी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कीजिए. जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है. कभी कभी अपना दृष्टिकोण बदलकर समस्याओं को देखने से चीज़ें बदल जाती हैं. जैसे काफ़ी अकेला हूँ, अकेला ही काफ़ी हूँ, दोनों में अंतर है. इसलिए अपना दृष्टिकोण बदलें और बदलाव देखें. नमस्कार राधे राधे, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6. बजाते रहो, गुनगुनाते रहो और भेजते रहो अच्छे अच्छे मैसेज, वॉइस नोट जो सुनाई देंगे सारे शहर, सारे देश और हो सकता है सारे संसार को. राधे राधे, पद्मिनी एकादशी की आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं.
0: राधे राधे, आपको भी नमस्कार भूपी शर्मा जी. थैंक यू सो मच, आपने अपना वॉइस नोट पहुँचाया है और बहुत अच्छा लगता है जब एवरी डे आपके थॉट्स, आपका वॉइस नोट हम सुनते हैं. एक्चुअली हमारी मॉर्निंग और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और जब इतने प्यारे प्यारे लिसनर्स इतनी शिद्दत के साथ मोहब्बत करते हैं रेडियो से. और मैंने आपसे भी कहा था दोस्तों कि आप भी अपना वॉइस नोट पहुंचा सकते हैं, इतना कंजूसी मत किया करो. माना कि आपकी आवाज़ बहुत मीठी है तो भेजने में क्या जा रहा है. हाँ, आप इतनी कंजूसी सुबह सुबह क्यों करती हो मुझे बताओ ज़रा. और यहाँ पर कुछ और भी मैसेज आए हैं, उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ. हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग. विकी सागर जी का मैसेज आया है और कहते हैं आरजी खुशी के साथ सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग. थैंक यू सो मच, आज खुशी आई है खुशियाँ लेकर. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, बिंदास मॉर्निंग शो में आज आपको सुना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया. और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं रामपुर से अयूब जी. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है रानी नांगल से रिहाना जी का और रिहाना जी भी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं. वेरी गुड मॉर्निंग डियर.

और दोस्तों अभी हम बात करेंगे आकर क्रिकेट के बारे में। जी हाँ, रात का जो मैच था बहुत शानदार था, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत, उसकी बात करेंगे आपसे गुफ्तगू। आप कहीं मचाइए, हाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आप, चलिए अच्छी बात है, नाश्ता करते रहिए, थोड़ा सा हमारे लिए भी बचा लीजिएगा, हम भी आ जाएंगे। अरे मजाक कर रहे हैं। और एक प्यारा सा गाना आपके लिए जो आपकी मॉर्निंग को बनाएगा और भी ज़्यादा खूबसूरत, मुझे उम्मीद है कि ये गाना आपको बहुत पसंद आएगा।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
2: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
3: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
3: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
4: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
5: इश्क वो बना है, जिसको छुआ इसने वो जला है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, 10 बज चुके हैं राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। शो का नाम है बिंदास मॉर्निंग और मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी। जावेद बशीर जी की आवाज में प्यारा सा ट्रैक आपने एंजॉय किया और करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। और मैंने बात की थी क्रिकेट के बारे में,

और दोस्तों क्या शानदार पल था ना वो आईपीएल 2026 के एक ऐतिहासिक मुकाबले में जैसे ही आरसीबी ने जीत हासिल की पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। और सबसे खूबसूरत पल तो तब आया जब विराट कोहली भावुक होकर सीधे स्टेट की तरफ दौड़े एंड जहां अनुष्का शर्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे और उस पल ने करोड़ों दिलों को छू लिया। दोस्तों ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये सालों की मेहनत, इंतज़ार, भरोसे और जुनून का नतीजा था। अगर मेहनत सच्ची हो तो देर ज़रूर लग सकती है लेकिन सफलता एक दिन पूरी दुनिया को दिखाई देती है। विराट कोहली जी हमें यही सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, अगर आप अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करते रहो तो एक दिन जीत आपकी ही होती है। और सच कहें जब कोई इंसान अपनी मेहनत का फल पाता है ना तो उसकी खुशी सिर्फ उसकी नहीं रहती, वो हर उस इंसान की खुशी बन जाती है जिसने उस पर भरोसा किया हो। तो दोस्तों आज की सुबह बहुत ही इतना खूबसूरत सा मोमेंट है और इतनी खूबसूरत जीत हासिल की है विराट कोहली जी ने, तो एक खूबसूरत सा ट्रैक तो बनता है आज की सुबह, तो सुनवाते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप कहीं मचाइए, बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से ट्रैक के उस पर। भाई आज तो बोलना बनता है ना चक दे इंडिया क्यों। चलिए शानदार से गाना सुनिएगा, मैं बस जाती हूँ और वापस आती हूँ। एंड आप अपने मैसेज जो आपके संदेशों का सिलसिला है ना उसको जारी रखिएगा, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
5: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
7: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
8: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
7: पर पापा।
8: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आप सभी का वेलकम है। जी हाँ, बिंदास मॉर्निंग शो में खुशी आपके साथ है और समय हुआ है 10:15। एंड दोस्तों देखिए, बात कर रहे हैं अगर वेदर की, मौसम की बात कर रहे हैं, तो अभी टेम्परेचर है राइट नाउ 33 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 33 डिग्री सेल्सियस अभी वेदर है।

और दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि मौसम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उफ, गर्मी का तो जैसे कह सकते हैं कि कहर ही टूट पड़ा हो। दोस्तों, उत्तर और मध्य भारत इस समय भीषण लू की चपेट में है। यूपी का बांदा 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म इलाका बन गया है। सोचिए, सूरज जैसे आग बरस रहा हो। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के कई शहरों में भी तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखें। घर से बाहर निकलें तो पानी की बोतल साथ रखें, सर को ढककर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप तरल चीज़ों का सेवन कीजिए। और हाँ, फोन चार्ज जरूर रखें, क्योंकि मौसम खराब होने पर बिजली की समस्या भी बढ़ जाती है। लेकिन राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग के अनुसार 29 मई से कुछ इलाकों में तेज बारिश और हवाएं देखने को मिल सकती हैं। तो बस थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी उम्मीद बनाए रखें। और इस गर्मी के मौसम में थोड़ा कूल फील करने के लिए हम आपको सुनवाते हैं प्यारे प्यारे गाने। और दोस्तों, अब मैं लेती हूँ बिंदास मॉर्निंग शो से जाने की अनुमति। एंड थैंक यू सो मच, आप सब हमारे साथ कनेक्ट हुए। और अगेन मैं आने वाली हूँ, जी हाँ, मॉर्निंग मसाला शो लेकर आप सभी के बीच। लेकिन जाते जाते बस यही कहूँगी कि आप अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो और ये प्यारा सा ट्रैक इंजॉय करो। ऑनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर। बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430। अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स। कॉल 9412965।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज खुशी वेलकम करती है तहे दिल से आप सभी के अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और साथियों, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना उदित नारायण जी, साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज। और दोस्तों, वाह, क्या कितना खूबसूरत गाना था ना दोस्तों, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। सच कहूँ ना, प्यार खुद में एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग है। कभी मुस्कान बन जाता है तो कभी किसी की यादों का मौसम। और कुछ लोग तो इतने प्यार में होते हैं कि फ़ोन की बैटरी 2% हो जाए लेकिन चैटिंग बंद नहीं होती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं हम प्यार व्यार में नहीं पड़ते हैं, लेकिन वही रात में ऑनलाइन दिखाई देते हैं। हाँ, दिखाई जाते हैं, दिखते हैं। और दोस्तों, आप सभी का इस खूबसूरत सफर में स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी, शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और करेंगी बहुत सारी बातें आप सभी के साथ। और आप कहीं मचाइए और खुशी आपसे कहती है, दिल से मुस्कुराइए। कुछ खूबसूरत गाने आप सभी के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ और आपके बैक टू बैक यहाँ पर प्यारे प्यारे संदेश भी आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपके मन में कोई बात है जो आप काफ़ी दिन से सोच रहे हैं कि मुझे ये बात कहनी है पर आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है। आप यहाँ पर कह सकते हैं अपने दिल की बातें। आप अपना वॉइस नोट भी पहुँचा सकते हैं, आप अपना मैसेज भी पहुँचा सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए, तीन ऑप्शन मैंने आपको दे दी हैं, अब आपकी मर्जी है कि आप क्या चुनना चाहते हैं, आप कैसे हमें हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। और एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक मैं यहाँ पर प्ले करने वाली हूँ, यो यो हनी सिंह जी की आवाज़ में। आज की सुबह थोड़ा सा हनी जी को भी सुन लेते हैं, एंड उनके नाम में ही हनी है तो गाने में भी मिठास होगी ना दोस्तों। चलिए गाना सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ इस ब्यूटीफुल ट्रैक के उस पार। आप कहीं मचाइए, खुशी आपसे कहती है कि दिल से मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है और जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, मॉर्निंग मसाला शो में खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, वक्त हुआ है 10:41 और आप सभी के यहाँ पर खूबसूरत संदेश आए हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और मेरा एक सवाल है आपसे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने सोचा इस गर्मी में क्यों ना कुछ खुराफाती की जाए। और वो क्या सवाल है हमारा फनी साहब, वो हम आपको भी बताएंगे, लेकिन कुछ जो संदेश यहाँ पर आ चुके हैं उनको हम शामिल कर लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें ये संदेश मिला है, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना साहू जी का प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रंजल, समीक्षा, वीवी, आराध्या और ये सब कार्यक्रम को सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और ये संदेश हमें पहुंचाते हैं ताज मोहम्मद अंसारी जी, महराज जहाँ जी हैं, और कहते हैं आदरणीय आरजे जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है आदरणीय प्रसारक जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी, और साथ में साइमन नवाज हैं, हसन नवाज जी का मैसेज हमारे पास आया है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड भी हैं रईस दूल्हा अंसारी जी। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी।

और सर कहते हैं कि एफ एम मुरादाबाद के सभी आरजीज एंड सभी लिसनर्स को ईद की बहुत बहुत मुबारक। ईद तो आपकी शायद कल है ना सर, 28 को ईद है ना, ईद आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सब लोग। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, धनूरी तेलीवाला से निसार सलमानी नौशाद सलमानी बीबी आलिया का मैसेज हमारे पास आया है और ये कहते हैं कि आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने हमारा संदेश शामिल किया, मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, आपका शो मॉर्निंग मसाला सुनकर बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच, एंड हमारी जो मॉर्निंग है वो बिंदास हो जाती है, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों जो हमारा सवाल है वो हम सोच रहे हैं कि अभी मालूम कर लेते हैं बिना किसी देरी के, आप मुझे बताइए दोस्तों कि आप एक दिन में अपने मोबाइल को कितनी बार चेक कर लेते हो। जी हाँ, दिन में कितनी बार आप अपने फोन को बिना वजह के चेक करते हो, बताओ बताओ। देखिए सच सच बताना, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है आपको, कि जो रियलिटी है वही बताइएगा कि आप अपने फोन को बिना वजह, जब कोई काम नहीं होता फिर भी आप कितनी बार चेक कर लेते हो बिना काम के। देखिए काम होता है तब तो हमें फ़ोन चेक करना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी एक हैबिट भी बन जाती है ना, सबके हाथ में फ़ोन होता है, कई बार तो टाइम देखने के बहाने से ही कि चलिए टाइम देख लेते हैं कितना हुआ है, फिर इंस्टाग्राम ओपन करते हैं और रील्स में कब वो आधा घंटा गवा देते हैं उनको भी नहीं मालूम होता है। तो आप मुझे बताइए कि दिन में कितनी बार आप बिना वजह के फोन को चेक करते हैं। नंबर हमारा रहेगा 9833789689 और कुछ खूबसूरत गीत आप सभी के लिए, आप कहीं मत जाइए। और हाँ दोस्तों, नींबू पानी पीते रहिए। हाँ, नींबू से मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना याद आया है और आपको भी याद आ गया है ना। हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है और मैं आपसे कहूँगी कि नींबू पानी पीते रहिए एंड अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे सी गाने के उस पर।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई। सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
6: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
5: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले। तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
7: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला। साथियों, वक्त हुआ है 10:58 और आज हमारी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, कोल्ड हो गया है और गला भी बहुत दर्द कर रहा है, जबकि मैंने गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल किया है और अभी सोच रहे हैं कि मेडिसिन लेकर आएंगे। दवाई बहुत ज़्यादा, मतलब बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब आप सबका साथ होता है ना तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। और आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक सुना। और दोस्तों, हम अभी आपको बताते हैं कि देखिए, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि हर कोई ठंडक ढूंढ रहा है, लेकिन क्या आपको पता है हमारे पुराने ज़माने का देसी तरीका आज भी सबसे बेस्ट माना जाता है, मटके का पानी। जी हाँ, मिट्टी के घड़े का पानी ना सिर्फ नेचुरल ठंडा होता है बल्कि सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। मटके का पानी शरीर को लंबे समय तक हाइड्रेट रखने में मदद करता है एंड डाइजेशन भी बेहतर बनाता है। और सबसे खास बात दोस्तों, ये गले के लिए भी अच्छा होता है एंड अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो उससे आपके गले में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब आप मटके का पानी पीते हैं तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और दोस्तों, मटके का पानी जो है ना वो फ्रिज के पानी से बहुत ज़्यादा सेफ होता है एंड ख़ासकर इस मौसम में। और सच बताऊँ तो दोस्तों, मटके का पानी में जो सुकून है ना वो शायद किसी में चीज़ में भी नहीं है एंड उसकी खुशबू, उसका ठंडा पानी, ओए होए होए, दिल को भी सुकून देता है और जब पीते हैं तो अच्छा भी लगता है। और मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी खूब पानी पीजिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि दोस्तों इस गर्मी में आप जितना अपना ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। और यहाँ पर कुछ और संदेश आए हैं, उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है, गुड मॉर्निंग जिला रामपुर खेटाना से मोहम्मद कामिल जी का। और साथ में नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप आज। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं अयूब जी रामपुर से। और उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है और ये मैसेज पहुँचाते हैं मौसीम अंसारी जी, साथ में सरताज अंसारी जी भी हैं, शाहिद अंसारी जी भी हैं। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं काशी नगरी बनारस से और ये कहते हैं, मेरी तो कोई गिनती नहीं है मैम, दिन भर मैं कितनी बार सोता, क्या बोला इन्होंने, फ़ोन अच्छा चेक करता हूँ। ओके, आप बहुत बड़ी फ़ोन चेक करते हैं। हाँ, मतलब आपका ना वो कह सकते हैं कि वैसा हाल है, सोते उठते जागते बैठते खाते पीते फ़ोन फ़ोन फ़ोन। हाँ, वो शायद किस्सा है, मैंने देखा है कि कुछ लोग मतलब ऐसे ही होते हैं कि वो, उनको हर समय फ़ोन चाहिए, उनकी नज़रों के सामने ना एक पल भी फ़ोन कहीं दूर नहीं जाना चाहिए, चाहे लाइक फ़ोन की बैटरी 2% या 1% क्यों ना हो जाए, उसको चार्ज पर भी लगा कर चलाते ही रहते हैं। भाई थोड़ा सा सुकून उसको भी दी चाहिए। और दोस्तों, मैं अभी आपसे जाने की अनुमति लेती हूँ एंड यहाँ पर नेक्स्ट प्रेजेंटर आ चुके हैं और कौन आ चुके हैं वो आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है, मैं नहीं बताऊँगी, आप उनकी आवाज़ खुद ही सुन लीजिएगा। लेकिन मैं जाते जाते आपको बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक यहाँ पर सुनवा कर जा रही हूँ और आपसे मैं अनुमति अब चाहती हूँ, क्योंकि 11 बज चुके हैं और सुबह से हम आपके साथ हैं और ढेर सारी मस्ती करने के लिए हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर भी यहाँ पर आ चुके हैं आपको और ज़्यादा इंटरटेन मिनट का डोज देने के लिए। तो मैं अभी चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपको 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान, मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। और ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।

0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
4: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवास, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
5: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
7: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: देखिए भाई साहब, धीरे धीरे बोलेंगे आप तक, अगर हम धीरे धीरे नहीं बोलेंगे तो हमारे दिल की बात आप तक कैसे पहुंचेगी, ये बताओ आप, है ना। हमें तो भैया तेज तेज बोलना पड़ेगा, तभी तो आप हमारे दिल की बात सुन पाओगे। हेलो जी, कैसे हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह में ना सही बट अभी सही, मेरी आपकी मुलाकात हो रही है। और बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो आप यकीन मानिए, इस वक्त 11:13 हो रहे हैं, बट आपको ऐसा लगेगा जैसे दोपहर के 2 बज रहे हैं। इतनी तेज गर्मी है बाहर की मैं आपको क्या ही बताऊं। वेल, आज खुशी ने आपको एंटरटेनमेंट का डोज दिया सुबह 9 बजे बिंदास मॉर्निंग में आके। आई होप आपको पसंद आया होगा। आई एम श्योर, कभी कभी जब प्रेजेंटर चेंज हो जाते हैं तो बड़ा मजा आता है यार, सच बता रहा हूं आपको। और अभी आने वाला गाना जो आपको और भी आनंदित कर देगा, आनंद के साथ जुड़ चुके हैं आप। फटाफट से अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो, कुछ पहुंचाना चाहते हो, अपने दिल की हालचाल, अपनी बातचीत, तो बिल्कुल पहुंचाओ भाई साहब। आज वेंसडे की सुबह है, यानी बुधवार है। कहते हैं बुध करे शुद्ध, कहते हैं अगर आपके मन के विचार अच्छे हो तो जिंदगी में सारी चीजें अच्छी हो जाती है बॉस। 11:14 का समय, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। और ये क्या कह रहे हैं जरा सुने,
1: रंग बल्ले बल्ले
0: चल झुट्टा
1: बल्ले बल्ले,
0: सच में
1: रूप बल्ले बल्ले
0: है,
1: तेरे गाल बल्ले बल्ले,
0: हाँ
1: देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया
0: है
1: तेरे खाया।
0: आज मेरे साथ बड़ा अजब सा, मतलब अजीबो गरीब सीन हो गया, बहुत बड़ा गजब का सीन हुआ यार सुबह सुबह। जानना चाहते हुआ क्या, और ये मेरे साथ नहीं, अक्सर आपके साथ भी ऐसा हो जाता होगा। वो कहते हैं ना, जल्दीबाजी कभी कभी आपको नुकसान भी पहुंचा देती है मेरे दोस्त। लेकिन आप फिलहाल मुझे मैसेज करो, मैं लौट कर आऊंगा तो बताऊंगा आपको मेरे साथ क्या घटना घटी है, और इसके शिकार आप ना हो इसीलिए जरा सतर्क और सावधान रहिए। फिलहाल अगर आप अभी घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई इमरजेंसी है, तो प्लीज पानी की बॉटल साथ लेकर जाएं।

क्या बात है जी, बहुत ही बेहतरीन गाना। सोल्जर फिल्म से था ये, जसविंदर नरूला जी की आवाज़, सोनू निगम ने दिया साथ। 1998 में फिल्म आई, बहुत ही कमाल की मूवी और बहुत ही कमाल का गाना था यार। और ये गाना फ्लैश बैक में ले जाता है, कुछ ऐसे गाने होते हैं ना जिनको सुनकर सच में दिल से आवाज़ आती है। आनंद क्या सॉन्ग चलाया। दोस्तों आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां पर हम और आप जुड़ते हैं एकदम देसी अंदाज में, है ना जी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इरशाद हुसैन अंसारी साहब इस वक्त, और ये लिख रहे हैं हमारे यहाँ पर, मतलब जो है मिट्टी का मटका है जिसका ये पानी इस्तेमाल करते हैं और फ्रिज से ज़्यादा मिट्टी के मटके का ये इस्तेमाल करते हैं। वाओ, वेरी नाइस सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। और लिखते हैं हम मिट्टी के घड़े का पानी जो है वो पीते हैं और उससे उसका टेस्ट भी अलग होता है और वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही कमाल का होता है। इरशाद जी, मतलब उसके पानी का अगर आप इस्तेमाल करते हो, सबसे पहले ठंडक और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू भी उसमें आपको फील होती है। तो मिट्टी के घड़े का पानी, मैं सच बताऊँ हमारी नानी और दादी तो बड़ा इस्तेमाल करती थी, आज की जनरेशन का हमें तो नहीं पता बॉस, लेकिन फिलहाल मिट्टी का जो घड़ा है उसके पानी पीने की बात ही अलग है बॉस। आप लोग भी मुझे मैसेज करके बताओ यार, आप अपने गर्मियों के दिनों में क्या स्पेशल करते हो, और हाँ एक दिन में अपने फोन को कितनी बार स्क्रॉल करते हो भाई, जरा ये भी तो बताओ। क्योंकि एक रिसर्च में पता लगा है कि पूरे दिन में एक इंसान कितनी बार फोन इस्तेमाल करता है, पता है आपको? मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। फिलहाल हमारे पास ढेर सारे संदेश लगातार पहुंच रहे हैं, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। और एक गाना, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म मुझे कुछ कहना है। और मुझे आपसे कहना है क्या, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड जरा कंट्रोल में रखिए बॉस, जाम आपको मिल सकता है हल्का फुल्का, या चाहे आप पीली कोठी पर हो या फिर आप हो दिल्ली रोड पे। हाँ, लेकिन अगर आप कहीं जाम की समस्या में फंसे हैं तो वो समस्या किसी और को ना झेलनी पड़े, उसके लिए आप क्या करेंगे, हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं 9837896896, कुछ भी कहना चाहते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है बिल्कुल बता सकते हो जी। 9837896896, मॉर्निंग में मसालों की बात ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उससे पहले बेबो आ गई है हमारे स्टेशन पर, कुछ कह रही है, जरा सुने। अच्छा जी, अगर ये बात मुझे कहनी हो ना भाई, तो मैं सड़क पे आजकल जो ये बड़े सुंदर सुंदर मैंगो नजर आ रहे हैं ना, आम आम, यस, उसको देख के मेरे दिल से भी यही आवाज आएगी। अरे बोल दो यार, मैंगो को देख के क्या फील आती है, येलो येलो आम, उसको देख के भाई साहब इतने बढ़िया बेहतरीन मैंगो चल रहे हैं, आप लोगों ने खाए या नहीं खाए? सीजन का आम जो है पहला खाने का मजा ही कुछ और होता है। आपने सीजन का पहला आम खाया या नहीं खाया ये भी बताना, दिल करे तो ले लो भाई, खाओ मैंगो खाने का। आने वाला बेहतरीन गाना, 11:22, मोहम्मद कामिल जी जुड़े हैं रामपुर से, ग्राम खेरा टांडा से, लिखते हैं एक सॉन्ग मेरा फेवरेट है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और आगे लिखते हैं मुझको फिर वही सुहाना नज़ारा मिल गया, वाह जी वाह। ये लिखते हैं मुझको फिर वही सुहाना नज़ारा मिल गया, इन आँखों को दीदार तुम्हारा मिल गया, अब किसी और की तमन्ना मैं क्यों करूँ, कि अब किसी और की तमन्ना मैं क्यों करूँ, जब मुझे तुम्हारी बाहों का सहारा मिल गया है। गाइज आप भी ऐसी प्यारी प्यारी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं 9837896896, कुछ कड़क अपडेट अभी आपकी मॉर्निंग को सुपर डुपर रिचार्ज बनाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मैसेज कर दो भाई, बता रहा हूँ मैं आपको, नंबर बहुत सिंपल है 9837896896। 11:23 होने को है स्टूडियो की घड़ी में।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ,
7: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
8: अपोजिट
7: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
9: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
10: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
11: कॉल 8826213131।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

प्यार को चाहिए क्या एक नजर, एक नजर। किशोर कुमार का ये गाना सुनवा दें, और पसंद करता है असालत परम मुरादाबाद से फरीद अंसारी।

0: बहुत ही अच्छा गाना था और ये गाना हमने आपको सुनवाया अयूब अली की रिक्वेस्ट पे। इससे पहले और भी गाने आपने सुने, अलग अलग श्रोताओं की पसंद पे हमने सुनवाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े। और ये एक वॉइस नोट आया था थोड़ी देर पहले,
1: प्यार को चाहिए क्या एक नजर, एक नजर, किशोर कुमार का ये।
0: ठीक है सर, ये गाना जरूर आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया है। और ये हमारे साथ देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ गए हैं अर्चित एंड साथ में अवंतिका, उमा शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी भाई साहब, ये गाना एक मैंने आपको सुनवाया था, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी, ये धर्मवीर जी पर फरमाया था। और ये गाने की फरमाइश आई थी रवि कुमार, राहुल जी की, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरप्रीत, इन सभी लोगों ने जो है, गुरशब्द सिंह राहुल, इन सभी दोस्तों ने अम्बाला हरियाणा से इस मैसेज की जो है रिक्वेस्ट पहुँचाई थी। और अब जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बहारुल हुसैन सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं अपने दोस्तों के साथ और तमाम सारे श्रोता साथी लगातार जुड़ रहे हैं। आप भी हमें अपने प्यारे प्यारे संदेश पहुँचा सकते हैं और अभी मैं गाना पहुंचाता हूं।

0: दोस्तों बातों ही बातों में अब हमारा जाने का भी समय हो गया है। देखिए 11:54 का समय हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में और इस वक्त हमारे साथ हमारे श्रोता साथी लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत सारे संदेश आपके लगातार हमें मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इतने अमेजिंग मैसेजेस पहुंचाने के लिए। और अभी दोस्तों
1: रहते तुझको सांझ
0: जाने का समय हो गया, लेकिन जाने से पहले प्रधानमंत्री जी का आज की मॉर्निंग एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ट्वीट। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही खूबसूरत ट्वीट शेयर किया है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें उन्होंने कहा है, यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें और मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों और दुकानों के बाहर मटके में जल भर के रखते हैं ताकि उसे कोई भी पी सके, कोई भी उस जल को ग्रहण कर सके। गर्मी बहुत ज्यादा है और आगे पीएम साहब कहते हैं कि इस प्रचंड गर्मी में हमें अपने आसपास पशु पक्षियों को भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि हम भी आपसे बार बार कहते हैं कि अपने छतों पर अपने टेरेस पर जो है आप प्लीज मिट्टी के पात्र में पानी जरूर रखें, अपनी खिड़की के आसपास आप पानी जरूर रखें, अपने घरों में अपनी बालकनी में अपने छत पर या अपने दुकान या अपने ऑफिस के बाहर पानी से भरा एक छोटा सा बर्तन आप जरूर रखें जिसमें पशु पक्षी भी अपनी जो है प्यास बुझा सकें और वो आकर पानी पी सकें। क्योंकि अभी जो गर्मी है ना, ये प्रचंड गर्मी जो अपने पीक पर है, ऐसे में अगर किसी प्यासे इंसान को पानी मिल जाए तो वो किसी वरदान से कम नहीं होगा। और आगे लिखते हैं पीएम साहब, जब भी संभव हो अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी और अन्य परिजनों को फोन करके उनका हालचाल अवश्य पूछें, उन्हें पर्याप्त पानी के बारे में जरूर बताएं और तेज दोपहर में हो सकता है तो बाहर जाने से बचें, जितना हो सकता है आराम की सलाह दें। जो आपके घर के बुजुर्ग हैं उनका स्पेशली ख्याल रखें आप लोग। तो पीएम साहब की कुछ इंपॉर्टेंट बात जो ट्रेंड कर रही है आज की सुबह, और हम भी आपसे कहना चाहते हैं आप भी अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और सबसे जरूरी है सेल्फ लव, है ना, खुद से प्यार करते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, ढेर सारा पानी पीजिए और अपने स्किन का ध्यान रखिए, चश्मा लगा के बाहर निकलिए, एक अच्छी और बढ़िया वाली सनस्क्रीन भी लगाएं। लड़का हो या लड़की भाई, सभी को अपनी स्किन के प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा चिंता रहती है तो अपनी प्रोटेक्शन के साथ ही बाहर निकलें, हो सकता है तो इस कड़क धूप में छाता लेकर ही घर से बाहर जाएं। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो ही आप बाहर जाएं, अदरवाइज कोशिश करें कि अभी आप अवॉइड करें। आप यकीन मानिए श्रोताओं 11:56 हो रहे हैं लेकिन इस वक्त अगर आप प्रकाश नगर तक भी जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दोपहर के 2 बजे निकल रहे हो, इतनी तपिश है और इतनी भयंकर गर्मी। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ यानी आज के वेदर की बात करूँ तो भैया अभी जो टेम्परेचर दिखा रहा है जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस है और अगर मैं वहीं बात करूँ मैक्सिमम की, सोचिए अभी 36 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिखा रहा है। ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो 35% दिखा रहा है, यानी कि आज जो है गर्मी आपको चिपचिपी लगने वाली है, पसीने आपके निकलने वाले हैं बॉस। विजिबिलिटी 4 किलोमीटर दिखा रहा है, हवा जो है 4 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है, एयर क्वालिटी काफी अच्छी दिखा रहा है आज का। बाकी अगर बात करें गर्मी की तो गर्मी शाम होते होते यानी कि दोपहर जैसे जैसे ढलेगी गर्मी का टेम्परेचर और बढ़ेगा, अभी मिनिमम 36 है, मैक्सिमम 41 डिग्री पहुंचने वाला है, यानी कि 41 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा तो आप सोचिए गर्मी का पारा कितना हाई होने वाला है। मस्त मस्त नहीं बाजी, बुरे बुरे हो जाएंगे हालचाल, इसलिए प्लीज कोशिश कीजिए जरा गर्मी से अगर आपको राहत चाहिए तो बाहर निकलना अवॉइड करें, है ना, छोटे बच्चों का ख्याल रखें और बाकी जितना हो सकता है पानी का इस्तेमाल कीजिए, वाटर इनटेक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आपकी कोई बढ़िया दुकान है, आप शॉपकीपर हैं या आपके आपका घर रोड के किनारे है कहीं आसपास में जहां से लोगों का गुजरना है तो एक बढ़िया सा आप पानी का टैंक वहां पर छोटा सा भर के रख सकते हैं, जैसे वाटर कूलर में पानी भर के रख सकते हैं या मिट्टी के घड़े के पात्र में आप पानी रख सकते हैं और कुछ ग्लासेस भी वहां रख सकते हैं ताकि जो लोग आए वो आराम से पानी पिए और आपको ढेर सारी दुआएं भी दिखर जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने संदेश पहुंचाए, अभी फिलहाल मैं लेता हूं जाने की इजाजत। जाने से पहले आपके संदेश को जरा रीड आउट करना चाहूंगा फटाफट से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिजवान खान साहब ग्राम बीजना से, लिखते हैं आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है आप, तो मिस्टर इंडिया हो रहे हो, कल भी बिंदास मॉर्निंग में नहीं आए थे और आज भी बिंदास मॉर्निंग में नहीं आए थे, क्या बात है, सब ठीक तो है ना। बिल्कुल जी, सब एकदम बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, आप बताइए कैसे हैं। तो रिजवान जी देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अचानक से गायब हो जाना चाहिए, उससे आपको पता लगता है कि आपके दोस्त आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, जब आप लोग याद करते हैं तो ये मोहब्बत का जो कारवा है, जो सिलसिला है वो और ज्यादा डबल हो जाता है। और आगे लिखते हैं कि जिला ग्राम बीजना से मैं रिजवान खान हूँ, आनंद जी एक सॉन्ग सुनवा दीजिएगा, बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश आपने डाल दी है, थैंक यू वेरी मच, आई विल ट्राई, डेफिनेटली प्ले होगा। ये देवभूमि उत्तराखंड से हमारे पास एक गाने की रिक्वेस्ट डाली है इन्होंने, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा जी।

हमारे पास गांव छलिया और पिला ताना से ये हमारे साथ कौन जुड़े हैं? ये गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं मधु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मधु भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश आप पहुंचाते हैं, जरूर हम कोशिश करेंगे इस गाने को प्ले करने की। एंड अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हाँ जैसे कि मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, पानी पीते रहिए। अभी के लिए बाय बाय, जल्दी मुलाकात होगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। छोड़ के जा रहे हैं कुछ अच्छे गाने, ट्यून इन रहिएगा।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। FM मुरादाबाद आप सुन रहे हैं और इस स्टेशन पर आप सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कहीं। एक बार फिर से लौट कर आ गए हम आपके दोस्त। और दोस्तों आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है, आज हम उसी डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधा बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ सकते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवाल ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है या यह वही बात है जो बार बार दोहराई गई है इसीलिए सच जैसी लगने लगी है। हमारे साथ हैं टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया है। सुनीता जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आपसे जब हमने बात की थी उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बार ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि ने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो कि टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी दखल डराती है
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी।

0: Yeah. माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। उन सब माओ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है जिनकी बच्चियाँ अभी आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं, गलत कल्पना से होती है। और आप इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं, गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, अब कुछ हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
1: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक चक्र को बिगाड़ देती है?
0: सीधा जवाब, नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
2: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा है, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
0: हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है, खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कह रहे कि पीरियड्स पर असर नहीं है।
1: यह फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं, अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है।
2: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इस सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं कि जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली है वे आज भी माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली और आज गर्व से माँ है। यह अफवाह को सीधी चुनौती देती है।
2: यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
0: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें, तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
2: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
0: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घरों तक पहुंच जाता। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बातें नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
2: घर में यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है? लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डरने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
0: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स को दी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, पर स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
1: यह बात तो सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशिया समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसीलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
2: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों?
0: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा बेहतर होती है, यह बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले, रोकथाम देर से नहीं पहले की जाए।
2: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
0: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
1: अब सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो टीकन देवी?
0: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया, जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
2: अब मुझे लग रहा है कि हमें कितनी सारी बातों को बहस, किसी ने कहा कि आधार पर सच मान लिया।
0: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बातें सीधे उस पर असर डालती हैं। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं, तो उनकी शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करे?
1: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बेनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक: HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं। तथ्य: उपलब्ध आधारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक: HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य: आधारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी माँ हैं। मिथक: अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य: समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़की के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक: मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य: मुफ्त होना इसकी कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए उपलब्ध होना है।
2: जब आप ऐसे एक एक करके बताते है ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब उथल पुथल हो जाता है।
0: इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
2: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा यह टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
0: ना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, पर टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वह पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं। डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वह पूछे क्या मैं इससे आगे चलकर माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तो कहो यह अफवाह झूठी है।
1: यह भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें यह महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपाकर नहीं, समझाकर लिया जा रहा है।
2: हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे पूछा भी जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
0: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि यह किस लिए है। यह भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
1: और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतंत्र होना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह ना हो तो भरोसा नहीं बनता।
2: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वह हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उसे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वह बोली ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
0: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता।
2: और मैं यह भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात लेकर जानी चाहिए, वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भोहे चढ़ा लेते हैं।
0: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बातें जितनी खुलकर होंगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
1: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचाने और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफा किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफा वैश्विक महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
2: यह बात मेरे मन में गहरी बैठ गई। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
0: यही तो महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देही की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है, उसी पर सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
2: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़े या बांझपन आ जाए कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी तुम्हारे पास प्रमाण क्या है।
1: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता सरकारी केंद्र यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यही है एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
0: बिल्कुल। और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदार, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
2: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है।
0: और खासकर बेटियों के मामले में हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
1: यह बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद संपूर्ण हो।
2: एक बात और मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई पूछने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
0: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
1: और यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और सामुदायिक का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चे की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सर। इसीलिए रोकथाम को महिलाओं का निजी मुद्दा समझना गलत है।
2: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
0: इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चले, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही, लाभ कई, सच में घर तक पहुँचे।
1: अब एक छोटा सा अभ्यास, मान लीजिए आपसे कहें, मैंने सुना है HPV टीका लगाने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका क्या जवाब होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने साल में पहली बार टीका लिया है और आज माँ हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। यह चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, यह बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, यह दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पाँच, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। और छह, डर को दबाइए मत, पर उसका जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
2: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले सब घबरा जाती थी।
0: और यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझाना भी है। और हम सब मिलकर आज ही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएं और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम कर अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
1: तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। फिलहाल इस प्रोग्राम से अब लेता हूँ मैं जाने की इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सेहत सही तो लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं।

0: आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किससे पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा नहीं होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे, गाँव कस्बे कम आय वाले परिवार सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षात करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दोगुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें।
1: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहाँ सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहाँ किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछे कि HPV वैक्सीन कहाँ और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो। जैसे राशन की सूची लगती है, वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वह हमेशा कहती हैं, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
0: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ करी, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो UWIN पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चौथा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। पांचवा, परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छठा, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सातवा, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। सातवा, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
2: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है। व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है। आंगन

0: में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर कभी देश गीत रहता है।
1: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
2: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
0: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
1: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
2: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
1: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
2: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और मेरा नाम आनंद है और प्रोग्राम है खेती किसानी। आज हम बात करेंगे, अब किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी किसान भाई इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या जो किसानी खेती किसानी नहीं भी करते हैं, आज उनके लिए भी बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस प्रोग्राम के जरिए। तो आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहिएगा क्योंकि आज आपको तमाम सारी जानकारियां मिलेंगी। और मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि कोई ऐसा एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में जरूर होना चाहिए जिससे हम ढेर सारी बातचीत करें, कोई तो ऐसे विशेषज्ञ होने चाहिए जिनसे हम अपने क्वेश्चन के आंसर ले सकें। हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं जो हमारे किसान भाई लगातार हमें संदेश पहुंचाते हैं। तो आज हमने आपके सवालों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही खास मेहमान को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं श्रोताओं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी गन्ना पिरायत्र 2026-27 हेतु प्रत्येक जनपद में गन्ना सर्वेक्षण 1 मई से 30 जून तक चल रहा है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमने डॉक्टर विनय कुमार सिंह को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर।
0: जी सर, मैं चाहूंगा कि हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को आप एक बारी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सर, आपके एफएम मुरादाबाद के समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा सादर प्रणाम और सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी गजरौला से हूँ और मैं बेसिकली आज किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आज चर्चा करने के लिए आपके स्टूडियो में मौजूद हूं। आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया और अपने स्टूडियो में बोलने का मौका दिया। आज का जैसे कि आपने अभी विषय में जो है चर्चा किया है कि आज का हमारा विषय क्या है, तो गन्ना सर्वेक्षण जो कि प्रत्येक वर्ष हमारे प्रदेश में और पूरे देश में हालांकि चलता है जहां जहां गन्ना उत्पादक होता है।
0: जी जी।
1: तो गन्ना सर्वेक्षण जो है क्यों जरूरी है और इसमें किसानों की क्या भूमिका है, इस विषय के ऊपर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से जो है बारे में हमारे श्रोताओं को बताया, थैंक यू सो मच। और आपने हमारे टॉपिक का भी जिक्र कर दिया इसी में, जैसे कि आपने कहा कि आज हम गन्ना सर्वेक्षण क्या है इसके विषय में तमाम सारी बातचीत करेंगे। तो श्रोता साथी जितने भी हमें सुन रहे हैं, जो भी किसान भाई हमें सुन रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए, आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया ये जो हमारा प्रोग्राम है ये 1 मई से 30 जून तक चल रहा है ना सर?
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: तो सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि गन्ना सर्वेक्षण आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे लिसनर्स को बताएं।
1: जी बिल्कुल, किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में समझना जरूरी होता
0: जी,
1: है।
0: जी
1: जी, गन्ना सर्वेक्षण एक प्रकार की प्रक्रिया होती है।
0: जी सर।
1: जिसके माध्यम से किसानों को खेत में बोए गए जितना भी क्षेत्रफल होता है उसकी किस्म क्या लगाई हुई है और फसल की स्थिति क्या है उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हर वर्ष किया जाता है। यह कार्य गन्ना विभाग और चीनी मिल दोनों के तत्वाधान में किया जाता है ताकि किसानों को सही पर्ची, समय पर पर्ची, भुगतान और अन्य सुविधाएं आदि सभी चीजें मिल सकें। ये है हमारा गन्ना सर्वेक्षण का उद्देश्य।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने इस पे जो है चर्चा करी विस्तार से। सर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि गन्ना सर्वेक्षण किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
1: जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये हमारा पॉइंट, क्योंकि सही सर्वेक्षण से किसानों का वास्तविक गन्ना क्षेत्र दर्ज होता है
0: जी,
1: जिसे उन्हें समय पर गन्ना पर्ची मिलती है और डाले गए या कह सकते हैं कि आपूर्ति किए हुए गन्ने का उचित मूल्य उनको मिलता है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। गलत सर्वेक्षण से किसान का आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
0: अच्छा सर, किसानों को सर्वेक्षण के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो आपको लगता है कि छोटी छोटी सावधानियां अक्सर किसान भाई भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, तो क्या रखनी चाहिए?
1: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाई जो है सर्वेक्षण के समय बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको करवाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि आधारशिला अगर है तो हमारा सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण अगर गलत हो जाएगा तो उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कुछ जो है सावधानियां मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहला है हमारा कि किसान भाई खेत पर स्वयं उपस्थित रहें, जैसे वो लोग क्या करते हैं कि स्वयं ना होकर के किसी को भेज देते हैं कि आप चले जाइए, जिसको उस गन्ने की किस्म, उस गन्ने की जो है कितना क्षेत्रफल है इत्यादि जो है जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में वो गलत सूचनाएं वहां पे दर्ज करा देते हैं जिसका उनको नुकसान आगे चल करके उठाना पड़ता है। तो मेरा अपील ये रहेगा कि किसान भाई खेत पर स्वयं उपस्थित रहें और दूसरा है गन्ने का सही क्षेत्रफल बताएं। हालांकि वो सर्वे अपने आप ही करते हैं, एक्चुअल जितना भी उनका एरिया आएगा वो उनको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसी जानकारी वो मांगते हैं तो क्षेत्रफल अपना सही बताएं। और तीसरा है हमारा गन्ने की सही किस्म एवं बुआई की जानकारी अवश्य दें, क्योंकि गन्ना अभी हमारा बढ़वार के समय पे है, गन्ने की जो आइडेंटिफिकेशन होती है तो उनके कई सारे चरण होते हैं, कुछ की पौध पे निर्भर करती है, कुछ की उसके गन्ने की रंग पे निर्भर करता है, कुछ उसकी गांठों से उसकी जो है पहचान होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनको पहचानना अभी इस समय पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है, तो जो भी किस्म आपने बोई हुई है तो वो सटीक और सही जानकारी उपलब्ध कराएं। और अगला पॉइंट हमारा है कि किसी भी गलती को तुरंत जो है संबंधित अधिकारी को अवश्य बताएं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अपने अधिकारी को जो वहां पे मौजूद है सर्वेक्षण के समय, तो उसको आप अवश्य बताएं। सर्वेक्षण होने के उपरांत रिकॉर्ड की जांच अवश्य करें, जितना भी रिकॉर्ड आपको स्लिप मिलता है स्लिप में एक बार चेक कर लें, अगर उसमें कोई भी आपको त्रुटि लग रही है जिसमें या संशोधन की आवश्यकता है तो उस चीज का आप जांच करें और तुरंत संबंधित अधिकारी या कार्यालय में संपर्क करके उसको संशोधित अवश्य कराएं।
0: किसानों को सर्वेक्षण के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसी पर हम बात कर रहे थे अभी। बहुत अच्छे से डॉक्टर विनय कुमार जी ने इस पे चर्चा करी। सर अगर मैं आपसे वहीं दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ूं, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि गन्ना सर्वेक्षण की पर्ची वितरण से क्या संबंध है, इसके विषय में अगर थोड़ा आप बताएं तो।
1: जी बिल्कुल, देखिए आधारशिला हमारा सर्वेक्षण होता है
0: जी,
1: गन्ना पर्ची सर्वेक्षण के आधार पर ही जारी होती है। यदि सर्वेक्षण सही होगा तो किसान को उसकी उपज के अनुसार समय पर पर्ची प्राप्त होगी। गलत सर्वेक्षण से पर्ची कम या देरी से मिल सकती है, जिससे किसान भाई को आगामी गन्ना आपूर्ति बाधित हो सकती है
0: जी। ओके, गन्ना सर्वेक्षण में किसानों की भूमिका क्या रहती है सर, क्या है मतलब सबसे ज्यादा उनकी भूमिका?
1: जी बिल्कुल, देखिए किसानों की सक्रिय भागीदारी बहुत ही आवश्यक होती है
0: जी।
1: किसान सही जानकारी देकर सर्वेक्षण टीम का सहयोग करके तथा रिकॉर्ड की पुष्टि करके पूरी प्रक्रिया को सफल बना सकते हैं। एक जागरूक और सफल गन्ना उत्पादक किसान सर्वेक्षण के दौरान गहनता से और बड़ी ही सूझबूझ से कार्य करता है, क्योंकि वह जानता है उसकी आगामी गन्ना आपूर्ति इसी सर्वेक्षण पर निर्भर करती है। तो सर्वेक्षण में किसानों की अहम और बहुत ही सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए
0: जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम विषयों पर जो है हमारे साथ बातचीत करी और आगे भी हम आपसे करते रहेंगे। एक सवाल है, आधुनिक तकनीकी से गन्ना सर्वेक्षण में क्या लाभ हो रहा है, इस विषय में थोड़ा सा बताइए हमारे किसान भाइयों को।
1: जी बिल्कुल, देखिए आधुनिकता दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती जा रही है और जैसे कि डिजिटल इंडिया हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मोटो है और सभी लोग फॉलो भी कर रहे हैं और हमारा देश अग्रसर भी है डिजिटल इंडिया की ओर।
0: जी जी,
1: आजकल क्या है कि बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, डिजिटल प्रणालियां फॉलो हो रही हैं, तो हर क्षेत्र में एक जो है एक क्रांति सी आई है जब से ये डिजिटल इंडिया चला है। तो इस गन्ना सर्वेक्षण में भी आजकल मोबाइल ऐप और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से सर्वेक्षण हो रहा है, जो कि अधिक पारदर्शी है, सुगम है और तेज है। इससे गलतियों की संभावना कम होती है तथा रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हमारा क्या है कि जैसे कि अभी जानकारी के अनुसार जैसे सभी लोग पहले क्या होता था कि पर्चियां कार्यालय में जाके पूछते थे कब आएगी और कब हमारा भुगतान आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है गन्ना विभाग ने एक ई गन्ना ऐप लॉन्च किया है, जिसकी जानकारी आप जो है ई गन्ना ऐप से उपलब्ध रहती है। इस ई गन्ना ऐप में किसान भाई अपनी कुल सर्वे जो कि उनका सर्वेक्षण हुआ है, तो कुल कितना सर्वेक्षण हुआ है इसकी भी जानकारी मिल सकती है, कितने उनके सर्वेक्षण में प्लॉट शामिल हुए हैं उसकी भी जानकारी रहती है और प्रत्येक प्लॉट का एरिया कितना है वो भी उनको पता चल जाता है। कुल पर्चियां उनकी कितनी बनी है, उनका बेसी कोटा क्या है, बेसी कोटा असल में पिछले 5 वर्षों की आपूर्ति के आधार पर बनता है, इसमें रेशियो रहता है पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड, फिर पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड और फिर पिछले 5 वर्षों का, इनमें से जो भी वैसी कोटा टोटल आपूर्ति जोड़ी जाती है, फिर उनको जितने ही भी वर्ष होते हैं जैसे 2 साल है तो 2 से डिवाइड करना, 3 साल का लिया तो 3 साल से डिवाइड करना और अगर 5 साल का लिया है तो 5 से डिवाइड करना, इनमें से जो भी जैसे मात्रा में ज्यादा होगा, जितने कुंटल उसमें ज्यादा होगा तो उसी को ही बेस मान करके उनकी पर्चियां बनाई जाती हैं। तो इसमें बेसिक कोटा की भी जानकारी मिल जाती है, कुल सप्लाई पिछले 5 वर्षों की, ये भी किसान भाई अपने आप स्वयं में ही ई गन्ना ऐप पे देख सकते हैं। तो इत्यादि जो है अनेकों प्रकार की जानकारी हमारी ई गन्ना ऐप में मिल जाती है, जिसमें उनको भुगतान, आपूर्ति और जो है सारी किस किस डेट पे निकली है, अगर उन्होंने कोई पर्ची नहीं लगा पाए, गन्ने की छिलाई किसी कारणवश नहीं हो पाई तो वो अगर उनकी मिस हो जाती है पर्ची, तो उसकी भी जानकारी उनको मिलती रहती है। तो ई गन्ना ऐप बहुत ही सुगम और आसान और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि हमारे लिए यूजफुल होता है, किसान भाइयों के लिए भी।
0: जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने इस पे जो है जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, यदि किसी किसान की फसल सर्वेक्षण में छूट जाए तो वो क्या करना चाहिए, वो क्या करे ऐसी सिचुएशन में?
1: जी बिल्कुल, देखिए अहम मुद्दा है
0: जी।
1: ऐसी स्थिति में किसान तुरंत अपनी गन्ना समिति अथवा गन्ना विभाग
0: जी
1: अथवा संबंधित चीनी मिल कार्यालय में संपर्क करें तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके संशोधन करवा सकते हैं। सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के उपरांत कृषकों को एक स्लिप, जिसको कच्चा कैलेंडर भी कह सकते हैं, ये अत्यधिक उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसमें उनको प्रत्येक जो है कह सकते हैं कि प्लॉट का जिक्र उसमें रहता है, एरिया कितना है, किस्म क्या लगाई है, तो सब कुछ उसमें रहता है। यदि किसी किसान भाई का कोई प्लॉट छूट जाता है अथवा गन्ना प्रजाति का चयन गलत हो जाता है आदि का संशोधन 15 कार्य दिवस के अंदर अपनी गन्ना समिति अथवा गन्ना विभाग में संपर्क करके उसको करा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, गन्ना सर्वेक्षण का चीनी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में थोड़ा बताएं।
1: जी बिल्कुल, देखिए गन्ना सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। सही सर्वेक्षण से चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धता का सही अनुमान लगता है कि क्योंकि उनके पास में क्षेत्रफल ज्यादा रहता है, कई सारे गांव रहते हैं, कई सारी गन्ना समितियां होती हैं, उन समितियों में कई सारे किसान होते हैं, तो क्षेत्र में कितनी गन्ने की उपलब्धता होती है इससे उनको अनुमान मिल जाता है। दूसरा चीज है गन्ने की पर्चियों का निर्धारण और पर्चियों को जारी करना यानी कि निर्गत करने की योजना वो आसानी से बना सकते हैं, जिससे मिल संचालन और उत्पादन योजना बेहतर तरीके से बनाई जा सकती है।
0: जी बहुत ही बढ़िया। श्रोताओं आप सुन रहे हैं प्रोग्राम खेती किसानी और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विनय जी मौजूद हैं स्टूडियो में और आज हम बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं गन्ने के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी गन्ना पेराई सत्र 2026-27 हेतु प्रत्येक जनपद गन्ना सर्वेक्षण 1 मई से 30 जून तक चल रहा है और इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब तमाम जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सवाल, गन्ना सर्वेक्षण में सामान्य गलतियां कौन कौन सी होती हैं, इस पर अगर हम एक नज़र डालें तो?
1: जी बिल्कुल, देखिए सावधानी ही हमारी जो है जागरूकता की ओर अग्रसर करती है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: देखिए अगर आप सावधानी से काम करेंगे तो गलतियों की संभावना नहीं रहेगी।
0: जी
1: इसमें अगर फिर भी अगर सामान्य गलतियां कौन कौन सी अक्सर किसान कर देते हैं तो उनका हम जिक्र करेंगे। जैसे पहला गलत क्षेत्रफल दर्ज हो जाना।
0: जी जी।
1: दूसरा है हमारा गलत किस्म दर्ज हो जाना या गलत किस्म उन्होंने उसमें दर्ज कर लिया है।
0: जी जी।
1: तीसरा हमारा है फसल छूट जाना, जैसे फसल का मतलब यहाँ पे है हमारा कि जैसे कोई फसल लगी हुई है और उन्होंने जो है उसको छोड़ दिया है तो वो प्लाट छूट जाता है, तो प्लाट आप ऐड करवा सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या कह सकते हैं कि फसल प्रकार, जैसे कि कोई किसान है उसके यहाँ पेड़ी है तो पेड़ी की जगह पे पौधा हो गया है, या पौधा है पौधे में भी जो है कैटेगरीज होती हैं, एक शरदकालीन होता है जिसको ऑटम प्लांटिंग कहते हैं और एक वसंतकालीन पौधा होता है जिसको हम लोग स्प्रिंग प्लांटिंग कहते हैं।
0: जी।
1: तो जैसे पौधा है किसान ने बोया हुआ है शरदकालीन, जिसकी पर्चियां जो है अमूनता चीनी मिल पहले जो है निर्गत करती है, लेकिन अगर धोखे से वो वसंतकालीन हो जाएगा तो किसानों को वो पर्ची विलंब से मिलेगी, तो इससे किसानों को दिक्कत हो सकती है और उनका जो है प्लॉट देरी से उसकी सप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या गलती होती है, जैसे किसान द्वारा जैसे सही जानकारी नहीं देना, जैसे जो भी उनसे पूछा जाता है तो वो अगर सही और सटीक जानकारी नहीं देंगे तो उसमें भी जो है गलतियां हो सकती हैं। और अगला हमारा जो है सामान्यतः गलती कौन सी करते हैं, जैसे रिकॉर्ड की जांच नहीं करना, जैसे
0: जी,
1: उनको स्लिप मिलता है, उन्होंने सर्वे करवा दिया, स्लिप लेकर के अपने घर पे रख लिया,
0: हाँ जी,
1: वो गलत है। आप स्लिप लीजिए, उसको आप पढ़िए। आप नहीं अगर पढ़ पा रहे हैं तो आपका घर में जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो आप उसके माध्यम से अपने रिकॉर्ड की जो है जांच अवश्य करें, ताकि आपका कोई प्लॉट तो नहीं छूटा। प्लॉट छूटा तो किसी उस पर्टिकुलर प्लॉट का कोई हमारा जो है क्षेत्रफल कम या ज्यादा तो नहीं हुआ, या गन्ने की प्रजाति गलत तो नहीं हुई, या गन्ने की किस्म पेड़ी अथवा पौधा या पौधे से पेड़ी ये तो नहीं हो गया, तो इत्यादि तरीके की ये गलतियां मुमता होती हैं। इनको विशेषतः किसानों को ध्यान में रख करके अपना जो है ये सर्वेक्षण कार्य पूरा कराना चाहिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हमारा विषय था गन्ना सर्वेक्षण का महत्व एवं किसानों की भूमिका, और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर विनय कुमार साहब से, और बहुत अच्छा लगा सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, जो भी किसान भाई हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या जो भी लोग सुन रहे हैं उनको तमाम जानकारियां जो आपके द्वारा दी गई हैं वो उनको जरूर काम में आएंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है आरजे आनंद और एफएम मुरादाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, प्रोग्राम है खेती किसानी। डॉक्टर साहब तमाम चर्चाएं हमने कर ली आपके साथ मिलकर गन्ने के ऊपर, अब मैं आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा जो हमारे तमाम श्रोता साथी किसान भाई आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे जाते जाते इस प्रोग्राम में।
1: जी बिल्कुल, देखिए आपने जैसे ही शुरुआत में आपने जिक्र किया था गन्ना सर्वेक्षण के ऊपर,
0: जी जी,
1: तो अपने जो है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक जनपद में जो कि हर बार हर साल होता है, ऐसे ही इस साल भी जो हमारा आगामी गन्ना पेराई सत्र है, यानी कि जो आगे आने वाला पेराई सत्र है 2026-27, इसके लिए गन्ने का सर्वेक्षण का कार्य अभी से प्रारंभ हो गया है, जो कि 1 मई से 30 जून तक होना सुनिश्चित हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे 1 मई से 30 जून तक होता है, इसमें अभी क्या है टेम्परेचर ज्यादा है, धूप तेज है, तो अमूमतः क्या है कि कृषि विभाग और ये चीनी मिल दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है, और ये धूप की वजह से ये प्रातःकाल जो है अतिशीघ्र कह सकते हैं कि जल्दी सुबह इसको जो है किया जाता है, ताकि धूप से बचा जा सके और बचना भी जरूरी है। तो देखिए ये कार्यक्रम हमारा 1 मई से 30 जून 2026 तक चलेगा
0: जी।
1: प्रत्येक समिति में यह कार्य चल रहा है, यानी कि प्रत्येक जिले में समितियां होती हैं, गन्ना समितियां, किसान भाई सभी लोग जानते होंगे, तो प्रत्येक समिति में यह कार्य चल रहा है, और प्रत्येक समिति में गन्ना पर्यवेक्षक गण लगे हुए हैं, इन काम को बहुत ही जो है लगन से कर रहे हैं इतनी धूप और इसकी वजह से। लेकिन फिर भी क्या है कि जो है गलतियां वगैरह होती रहती हैं, तो इन सभी चीजों को हम लोगों को अच्छी तरीके से करना है, और दूसरा क्या है कि अपने क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क बना के रखना है। जो भी किसान भाई हैं, क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक प्रत्येक गांव के होते हैं, उनसे संपर्क में रहना है। सभी किसान भाई गन्ना सर्वेक्षण को गंभीरता से लें। प्रत्येक गन्ना समिति में अनेक गांव होते हैं तथा प्रत्येक गांव में अनेकों किसान भी होते हैं, अतः जिस दिन आपके गांव में सर्वे का कार्य हो रहा हो तो आप सभी किसान भाई अपने प्लाट पर स्वयं उपस्थित हों, किसी और को ना भेज करके स्वयं उपस्थित हों, ताकि आप सही उनको जानकारी दें। सही सर्वेक्षण ही समय पर पर्ची, उचित भुगतान और किसान हितों की सुरक्षा का आधार होता है।
0: डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी श्रोता ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको तमाम जानकारियाँ मिली हैं आपके द्वारा, और मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और तमाम चर्चा आपने करी, इतनी खूबसूरती के साथ आपने जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतना समय हमारे साथ साझा किया उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे भी हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में आते रहें।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। सर कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है आप कहना चाह रहे हैं हमारे किसान भाइयों से?
1: देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि सही गन्ना सर्वेक्षण न केवल किसान की आय को सुरक्षित करता है
0: जी बिल्कुल,
1: बल्कि चीनी उद्योग एवं कृषि व्यवस्था को भी मजबूत बनाता है।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: इसलिए सभी किसान भाई सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण सहयोग करें एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, ताकि आपकी पर्चियों की कैलेंडरिंग सही से हो सके और आपकी आपूर्ति सुचारू रूप से चल सके। आपकी आपूर्ति ही आपकी आय का आधार होती है।
0: सर आपने ये जो लास्ट में बात बताई ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी।
1: ये जो है क्योंकि आपकी जो भी आपूर्ति रहेगी यही आपकी आय का आधार है। आपकी पर्चियां, आपका खेत, आपका गन्ना कितना भी हो, अगर समय पर पर्ची आपको नहीं मिलेगी तो आपकी आपूर्ति बाधित होगी, क्योंकि आपूर्ति अगर आपकी बाधित हो जाएगी तो आपको भुगतान भी बाधित ही मिलेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, और किसान भाइयों थैंक यू सो मच, आपने भी इसको बहुत ध्यान से सुना है, मुझे पता है आपको भी बहुत जानकारियां मिली होंगी, तो ऐसी जानकारियों से भरे प्रोग्राम्स आपके लिए आते रहेंगे। आप बस ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, जहां बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। डॉक्टर साहब आपको कैसा लगा हमारे ऑफिस में आके हमारे साथ ये संवाद करके, बातचीत करके, वार्ता करके?
1: जी बिल्कुल, देखिए आप लोगों ने हमें यहां पे बुलाया
0: जी,
1: मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह अपनी तरफ से, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से और आपके स्टूडियो की भी तरफ से समस्त श्रोतागणों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों से जुड़ने का एक अवसर हमको मिला और इस अवसर को उपलब्ध कराने के लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने यहां पे अवसर के लिए मुझे आमंत्रित किया है।
0: सर बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको रेडियो में आके, पहली बार आए?
1: जी नहीं, मैं जो है AIR
0: आकाशवाणी
1: में
0: जाते रहते हूँ
1: जी, आकाशवाणी कोटा में मैंने एक दो बार मैंने
0: प्रोग्राम्स किए
1: जी, प्रोग्राम किए हैं खेती किसानी से संबंधित।
0: हाँ,
1: आपके स्टूडियो में मैं
0: पहली बार मुरादाबाद में पहली
1: जी
0: बार।
1: जी
0: अच्छा, तो आप मुरादाबाद से हैं सर?
1: जी नहीं जी, मैं रहने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी,
0: लखीमपुर
1: जी उत्तर प्रदेश से ही।
0: ओके,
1: बट अभी मैं श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे कृषि विभाग में अभी जो कार्यरत हूँ।
0: क्या बात है सर, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा सर, और थोड़ा सा आपके बारे में जान लिया मैंने, क्योंकि वो जब हम बातचीत करते हैं तो संवाद के दौरान हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा जो है ना वो झलकती है।
1: बिल्कुल,
0: तो आपकी लैंग्वेज में वो लग रहा था मुझे कि आप थोड़ा सा उस साइड से ही बिलोंग करते हैं शायद। तो सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे आप दोबारा भी जरूर आए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हमें अवसर देंगे
0: जरूर सर। अरे जरूर सर, डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और श्रोताओं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में कुछ और नए खास मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
8: अपोजिट
7: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
9: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक बार फिर से मैं आनंद हाजिर हूँ लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम, जिसको आप सुनते हैं हमेशा मुरादाबाद 89.6 पर। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो हमारा समाज और हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं अकेला हाजिर नहीं हूँ, मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी प्यारी सी दोस्त प्राची। प्राची बहुत बहुत अगेन स्वागत है स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम में आपका स्पेशली स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, तो आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
10: धन्यवाद
9: जी। प्राची कैसा लग रहा है, पहले तू बताओ हमारे प्रोग्राम का नाम कैसा लगा तुम्हें?
10: नाम तो बहुत अच्छा, और ऐसा लगता है कि ये हमारे श्रोताओं को सोच बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा।
9: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने अपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने सारे जितने भी हमारे लिसनर हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है सोच बदलो। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में ना लोगों को सोच बदलने की बहुत जरूरत है।
10: बिल्कुल सही कहा आपने।
9: तो दोस्तों, मैं और प्राची इस प्रोग्राम में काफी सारी बातचीत करेंगे और आज का हमारा स्पेशल मुद्दा है वो ये है कि बता दें या फिर प्राची थोड़ा सा ब्रेक लें अभी, क्या लगता है आपको, ब्रेक लेना चाहिए या श्रोताओं को बताना चाहिए?
10: मुझे लगता है कि हमें हमारी श्रोताओं को बता देना चाहिए।
9: अच्छा, ताकि वो कहीं और जाए ना, है ना? बहुत बढ़िया। तो प्राची, आज हम बात करने वाले हैं अपने श्रोताओं से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। कई बार होता है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारी एप्स एंड वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां पर हमें दिखाई देता है कि भैया आप इतने पैसे लगाओ आपको उसके डबल मिल जाएंगे। बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई हैं आजकल मार्केट में, समझ ही नहीं आता ओरिजिनल कौन सी है, लोकल कौन सी है।
10: हाँ, ये तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करने की बहुत बहुत जरूरत है।
9: एब्सोल्युटली, स्पेशली इस डिजिटल टाइम में, ना?
10: हाँ, बिल्कुल, जब तो, हर किसी का रुख डिजिटल की तरफ पड़ा है।
9: करेक्ट। तो श्रोताओं, आपके ही मत जाइए, प्राची और आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आपके लिए अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद वापस आएंगे मैं और प्राची, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शहर के सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। आनंद और प्राची के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: सोच बदलो श्रो।
0: बिल्कुल, और सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: तो आज का हमारा मुद्दा है श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। अच्छा प्राची, कई बारी तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते होंगे फ्रेंड्स के थ्रू, या कुछ एड्स आ जाती होंगी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कि आप जो है ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इतने रुपए जमा करते हो तो इसका इतना मिल जाएगा आपको। इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत सारे लिंक्स आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे हमें दिखाया जाता है। ऐसा कभी तुम्हारे सामने कोई सीन हो आया हो कभी?
1: हाँ हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत आते हैं और मुझे लगता है कि सभी के फोन पे आते हैं और हमें इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कैसे काम करता है। सोशल मीडिया एड्स व्हाट्सएप से ये संपर्क करते हैं, उसके बाद हाई रिटर्न का आपको लालच देंगे। जैसे अगर आप 10,000 जमा करोगे तो आपको 1,00,000 रुपया देंगे। उसके बाद ये फेक एप्स और कुछ वेबसाइट जो है बनाते हैं जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुरुआत में आपको ये फेक पोर्टफोलियो दिखाते हैं अपना, मतलब एक प्रोफाइल बनाते हैं फेक जिसपे आपको बड़ा जेन्युइन लगेगा सारी चीजें। एंड उसके बाद ये एक बड़ा अमाउंट जैसे ही मतलब आप उनके पास डालोगे, सपोज आपने 10,000 डाला, उन्होंने बोला हम आपको 1,00,000 देंगे इसके बदले में, आप 10,000 जमा करोगे, विड्रॉल का ऑप्शन ही बंद हो जाएगा वहां से। तो इस तरह की जो चीजें ये लोग डिजाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड।
1: बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी हमारी श्रोताओं को। और ये इतना जेन्युइन अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि बहुत अपने बहुत लोगों के फीडबैक भी रखते हैं, तो जैसे देखकर जो हम होते हैं हमारे मन में ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है।
0: एग्जैक्टली श्रोताओं, इसी पर और बहुत सारी बातचीत मैं और प्राची करते रहेंगे, लेकिन आइए जरा एक खास इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाते हैं इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं सोच बदलो, सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा, और आज हम सोच बदलो प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हर चीज पे, अगर हम लगेगा कि यार डिजिटली करना है तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी आपकी थॉट प्रोसेस आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आप सोच बदलो, आपकी चीजें बदल जाएंगी, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कनेक्टेड है चीजें। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सोच बदलने का क्या सीन है, तो मैं ये भी आपके लिए यहां पर क्लियर कर देता हूं। क्या होता है ना, हमारी सोच ये हो गई है आज के समय में प्राची, कि हमें हर चीज बैठे बिठाए करनी है, हर चीज हमें अपने फोन से करनी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: हमें शॉपिंग करनी है अपने फोन से करनी है, हमें सब्जियां मंगानी है अपने फोन से मंगानी है, हमें ना हर चीज बैठे बिठाए चाहिए प्राची। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ही तो है जो हम ऑनलाइन पूरी तरीके से हम जो है निर्भर हो गए हैं। हाँ। है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बस कहने का मुद्दा सिर्फ इतना सा है मेरा और प्राची का आज इस प्रोग्राम के जरिए, कि अगर हम अपनी सोच को बदले, हमें क्यों सोचना है कि हमें एक का डबल चाहिए। भाई अगर हमें इस तरह की कोई पॉलिसी देखनी है तो हम फिजिकली अपने पैसे को सेफ और अच्छी जगह लगाएंगे ना, हम अपने आसपास में जाएंगे, बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, बहुत सारे बैंक हैं हमारे नियर बाय, हम वहां जाके कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तमाम ऑप्शन हैं। ऑनलाइन ही क्यों करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन मत करिए श्रोताओं, ऑनलाइन करिए बहुत जरूरी है, लेकिन सोच समझ के सही चीजों का इस्तेमाल करिए ना।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद।
0: तो इसी पर देखिए, हमारे पास एक और खास बातचीत है जो स्पेशली हम अभी आपको सुनवा रहे हैं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, तो मैं और प्राची लौटेंगे बस इसी देर में, जरा ये सुनिए, उसके बाद हम आपको मिलते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला, मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओं, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के, इतना मुनाफा कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं। पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह, ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है। अब तो 50,000 रुपए लगा देता हूँ। मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश

0: घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है, ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों बातों में ना आए। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें। जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें। शक हो तो नहीं कहना सीखें। ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते थे श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है।
1: तो श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आरजे राज के द्वारा जो आपको दी गई है, आई एम श्योर ये आपके काम की होगी और आपको जरूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्यों प्राची?
2: हाँ बिल्कुल।
1: और मुझे लगता है कि यही सारी चीजें हैं जो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करनी है। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो हम इन चीजों के शिकार होने से भी कहीं हद तक बच सकते हैं। सही कहा ना?
2: बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारा जो ये कार्यक्रम प्रसारित करने का जो उद्देश्य है वो भी तभी पूरा होगा।
1: एब्सोल्युटली। तो श्रोताओं, हमारा भी उद्देश्य है एक म्यूजिक प्ले करने का। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, आनंद और प्राची के साथ एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद हम पुनः लौट कर आएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और इससे पहले कुछ और खास और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद और प्राची को।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
6: ये पर्दा

0: बहुत ही खूबसूरत गीत श्रोताओं भी आपने एंजॉय किया। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आनंद और
1: प्राची के साथ।
0: क्या बात है प्राची, आज का हमारा प्रोग्राम लगभग अब समाप्ति की ओर है। आज हमने ढेर सारी बातचीत करी अपने श्रोताओं से। आज हम बात कर रहे थे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारे श्रोताओं ने काफी एंजॉय भी किया होगा और उनको काफी जानकारियां भी मिली होंगी इस प्रोग्राम के जरिए।
1: बिल्कुल किया है कि आपने बताया भी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने श्रोताओं को बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में दी।
0: एब्सोल्युटली, और हमारा मकसद ये है कि हमारे जो सामुदायिक है, हमारा जो कम्युनिटी है मुरादाबाद के, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हमें सुन रहे हैं, उनको सही और अच्छी जानकारी मिले। देखिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सही जानकारियों का होना भी बहुत जरूरी है
1: और हमारा जागरूक रहना भी जरूरी है।
0: सही कहा आपने। वो प्राची, कुछ टिप्स हैं मुझे लगता है कि जो हमें अपने श्रोताओं को बता देनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, अगर ये दिखे तो उनको रुक जाना चाहिए। तो प्राची, वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखते ही अगर ये सिम्टम्स नजर आए तो हमें रुक जाना चाहिए तुरंत, प्लीज बताओ जरा हमारे श्रोताओं को।
1: हाँ बिल्कुल, तो हमारी श्रोताओं आपके लिए ये जानकारी है कि अगर आपको ये रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं तो आपको तुरंत रुक जाने की जरूरत है। अगर वो गारंटेड प्रॉफिट या रिस्क फ्री रिटर्न की बात करते हैं तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया अच्छे से आप उसकी जांच करें।
0: बिल्कुल,
1: जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर, अगर वो कंपनी की साइड से आपको बहुत जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर आ रहा है, एक कॉल्स आ रही है एक के बाद एक और आपको लग रहा है ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी होती है वो इतना बार बार आपको
0: प्रेशराइज
1: नहीं करती है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और अगर वो व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम ग्रुप, खासकर मैं बताना चाहूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे तो उनका इतना बड़ा नेटवर्क है
0: और मोस्टली जो पीपल्स हैं, जो न्यू जनरेशन हैं, वो सारे लोग टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आई थिंक
1: इतने ज्यादा फेक प्रोफाइल है, आपको उनसे सजग रहने की जरूरत है। और हाँ, अगर वो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा भेजने को कह रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया ऐसे अगर आपको सिम्टम्स साइंस नजर आते हैं तो आप सावधान रहें। और जाते जाते मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगी जरूरी, आप ये जरूर जांच कर लें कि वो जो कंपनी है वो सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं,
0: मतलब वेरिफिकेशन उसका है या नहीं, करेक्ट तरीके से वेरीफाई है या नहीं।
1: जी
0: बिल्कुल। प्राची, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई एम रियली श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए, उनको जरूर ये इन्फॉर्मेशन काम में आएंगी और मुझे लगता है कि आनी भी चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को भी चीज ध्यान में रखनी है यार, बिकॉज हम लोग भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, नो डाउट। भले हम अपना टाइम हमारा फिक्स है बट हम यूज तो करते हैं यार।
1: हाँ, और कभी कभी तो हम लोग भी धोखा खा जाते हैं।
0: एब्सोल्युटली, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो उसके शिकार हो गए, आप ना हो, बट अगर आपको लगता है कि अगर आपके साथ कोई स्कैम हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत 1930 पे कॉल करना है, 1930 पे आप कॉल करें, ये साइबर हेल्पलाइन का नंबर है या ये टोल फ्री नंबर है, आई रिपीट नंबर 1930, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करें अगर आपने किसी को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी और आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो प्लीज अपने नजदीकी ब्रांच में जाके डेफिनेटली उनको इन्फॉर्मेशन दें कि आपने किसको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सो बस श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखिए और बाकी अपना भी ख्याल रखिए। अभी हमारा जाने का समय हो रहा है तो मैं और प्राची आपसे लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है
1: सोच बदलो।
0: जी हाँ, सोच बदलेगी तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। फिलहाल आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय, टेक केयर।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
1: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है, जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की, वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे, जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है, और दो फॉर्म लेके जाएंगे, इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोप

0: सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित तीन छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
4: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय

व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: आपने ट्यूनिंग किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और वैसे तो इस प्रोग्राम में सच बता रहा हूँ, मेरी एंट्री होना बिल्कुल पूरी तरह बैन है, निषेध है मेरा आना, लेकिन मैं जबरदस्ती घुस गया हूँ। आज प्रोग्राम का नाम है महिला मंच, इसमें खुशी और रीना आपको मिलती है। लेकिन आज मुझे बहुत सारी महिलाओं ने कहा, बेटा आप चलो हमारे साथ, आज तुम्हें नई नई जानकारियां देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जितने भी पुरुष लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है महिला मंच है तो यहाँ पुरुषों का काम नहीं है। भाई पुरुष और महिला से ही एक समाज बनता है, तो जितनी इंपॉर्टेंट पुरुष है उतनी इंपॉर्टेंट महिला भी है, और जितनी महिलाएं हैं उतनी पुरुष। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी होस्ट है रीना। हाय रीना, वेलकम। कैसा लग रहा है महिला मंच पे पुरुष मंच को खड़ा करके?
4: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बोला भी था तुम्हें कि भाई आ जाओ,
3: हाँ
4: महिला मंच में तुम भी शामिल हो जाओ, फाइनली तुम आज हो गए।
3: नहीं गाइस, मैं महिला मंच में शामिल हुआ, महिला मंडली में शामिल नहीं हुआ, इफ यू डोंट माइंड। और आज मजे की बात है कि महिला मंच में एक बहुत ही खूबसूरत महिला को हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की महिला ना किसी से कम नहीं है, क्यों रीना? आज की लड़कियां हो गई, महिलाएं होगी, जो घर में पहले हमें लगता था सिर्फ हमारी मम्मी घर तक ही सीमित है, अब वो घर से रील बना बना के भी फेमस हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, स्टोरी लगा लगा के फेमस
4: है। काम से लेकर ऑफिस तक
3: सब चीज मैनेज कर रही है हमारी मम्मी। तो अब हमारी मम्मी सिर्फ होम मेकर नहीं बची है, और इसी बात पे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मम्मी को इन्वाइट किया है, मैं तो यही कहना चाहूंगा उनको। आज महिला मंच में हमारे साथ कुमकुम भी है। हेलो, हाउ आर यू?
5: मैं बहुत ही कि मैं भी आती हूँ खुशी दी और रीना दी के साथ।
3: हाँ, मुझे मैं महिला मंच में बहुत कम आता हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है। तो आपने पूछा आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो मैं बहुत भूखा हूँ खाने का, गाइस डोंट माइंड, अभी जाके खाना खाऊंगा। और जो हमारी गेस्ट उनको वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं? वेलकम टू एफएम मुरादाबाद एंड दिस इज महिला मंच, ब्रांड न्यू शो, आपका स्वागत है।
5: मैं शैली सिंह मुरादाबाद से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस शो में आके, और जब बात होती है महिलाओं की तो मुझे एक अंदर से बहुत खुशी होती है।
3: अरे वाह, क्या बात है, और बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे लगता है शैली जी, एक महिला होने के नाते ही अपने आप में एक बहुत गर्व का मोमेंट होता है कि जब आप कुछ अच्छा करके आ रहे हो, कुछ बड़ा करके आ रहे हो, तो ये आपके लिए और भी बढ़िया होता है, क्यों रीना? जैसे कि आज जो शैली जी हमारे साथ मौजूद है, वो सिर्फ शैली नहीं है, उनके काम भी बिल्कुल सराहनीय है, बहुत अच्छे अच्छे काम करके आई है वो, तभी आज स्टूडियो में आपके बीच में हमने उनको आमंत्रित किया है। थोड़ा अपने बारे में बताएं हमारी महिलाओं को जो लोग सुन रहे हैं।
5: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल छजलैट, मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, योगा मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, योगा जिम ये सारी चीजें।
3: तो कहना कि योगा में रुचि भी है आपकी, योगा टीचर भी आप बन रही हैं?
5: रुचि मदान, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ।
3: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रिसेंटली आई थी रुचि जी वैसे हमारे स्टूडियो में, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपने बताया प्रिंसिपल भी?
5: हाँ, प्रिंसिपल RSM पब्लिक स्कूल छजलैट।
3: ओके, छजलैट में आप वर्किंग है। मैम इतने सारा काम कैसे कर लेती हो आप?
5: मैं बस कहते ना, महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं से आप नवदुर्गा में जो पूजा करते हैं

0: वो भी गंगा माँ है, तो सारी नारियों से ही हमारा जो है सजा हुआ है पूरा संसार,
1: और जिसके माध्यम से हम आते हैं वो भी नारी ही।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे लगता है कि आज जो है नारियों के ऊपर बहुत सारी बातें होने वाली है, और इस प्रोग्राम में हमने मैम को इन्वाइट किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, और मुझे लगता है महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन भी है, और इसके अलावा वो गाड़ियों में रील भी बनाती है बैठ के, वो बात तो बहुत अलग है क्योंकि वो भी उनको बहुत पसंद है, मुझे लगता है कहना चाहिए। वो इतनी एक्टिव है कि लोग गाड़ी चलाएं बट वो रील भी बना लेती है, वैसे ये बहुत रिस्की भी होता है, आप कैसे करती हो ये?
1: नहीं, अपने अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टैलेंटेड है कि वो गाड़ी चलाने के साथ साथ आप बीच बीच में आपको एक्सप्रेशन भी देते जाएं।
0: वो तो आप जबरदस्ती उनको बीच में ऐड कर लेते हो कि आओ ना,
1: ये तो शक्ति है कि आप उसको उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि नहीं, कि आपकी तरफ नहीं, मेरे को पहले एक्सप्रेशन दो, बाद में चलाओ।
0: क्या बात है, चलिए ये तो बात, ये बात की बातें, जोक सपाट है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अब महिलाओं के बारे में। जैसे शैली जी, आप बहुत सारा काम करती हैं, और ऐसे आपकी जैसी बहुत सारी तमाम महिलाएं हैं जो एजुकेटेड हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो बस सोचती हैं, कर नहीं पाती हैं, क्योंकि कहते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए एक कदम का आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, एक पॉजिटिव स्टेप लेना बहुत जरूरी है। तो आपको कैसे आया ये, और जो लोग आपको सुन रहे हैं ताकि वो उनको भी ये चीज आएगी, वो भी शुरुआत करें?
1: देखिए, आजकल की अगर हम बात करते हैं कि महिला इतनी कमजोर है, तो आज की महिला तो नहीं।
0: करेक्ट,
1: ये 90s के दौर की जब हमारी मम्मियां थीं, तब की बात है ये कि उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता था।
0: करेक्ट,
1: अपने लिए एक साड़ी लाने के लिए भी उन्हें 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं इस फंक्शन में यही पुरानी वाली पहन लेती हूँ। आजकल की लेडीज सशक्त हो चुकी हैं, वो समझ चुकी हैं अपनी प्रायोरिटीज कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। वो सेल्फ डिपेंड भी है, हाउस वाइफ भी है, और वर्किंग भी है, घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, उन्हें ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या करना है। लेकिन जो पहले की हमारी मम्मी लोग होते थे, उनके लिए उनका दायरा इतना सीमित होता था कि वो घर और बस बच्चे और उनका पति और ससुराल मायका, उनका दायरा बस यहीं तक था। वो अपनी जो फीलिंग्स होती थी ना, वो भी घर में शेयर नहीं कर पाती थी, उनके लिए भी उनको कोई नहीं मिलता था कि वो अपनी फीलिंग्स भी किसी को कभी शेयर कर पाए।
0: करेक्ट, बिल्कुल। तो मतलब ये आपने बिल्कुल सही कहा, आज की नारी जो है किसी से कम नहीं है। क्यों रीना, ये बिल्कुल बात सही कह रही है।
2: बिल्कुल सही कहा।
0: लेकिन मुझे लगता है कि हर नारी करना बहुत कुछ चाहती है, लेकिन आज का समय भी ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो इन बातों को बहुत फॉलो करती हैं, और उनके फैमिली में एक रिचुअल्स बना आया है कि भाई वो शादी के बाद कुछ नहीं करेंगे या नहीं करने देंगे, मतलब ऐसा भी होता है।
2: अभी भी बहुत ऐसी फैमिली
1: है, अभी भी, मैं ये नहीं कहती हूं, अभी भी वो फैमिलीज ऐसी है, लेकिन उनको ऊपर ये प्रेशर है कि ये हमारे संस्कार है, इन्हें ही आपको आगे
0: मेंटेन करना
1: है। लेकिन संस्कारों को भी मेंटेन करने के साथ साथ भी आप अपने आप को ग्रो अप कर सकते हो,
0: करेक्ट,
1: कॉन्फिडेंट बन सकते हो, ये नहीं बताते हैं।
0: लेकिन मुझे ऐसा लगता है शाली जी, आप जो कर रही है ना, ये एक तो मोटिवेशन है ही, और महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन भी दे रहा है ये चीज, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली भी तो स्ट्रांग बना रहा है ना।
1: फाइनेंशियल स्ट्रांग बना रहा है।
0: आने वाला टाइम देखिए आप कितना महंगा हो रहा है, आजकल कितनी सारी शॉर्टेज पड़ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट के अंदर, आपको बच्चों को भी अच्छे स्कूल देने हैं, अच्छी उनकी चीजों का भी ध्यान रखना है, तो इसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना महिलाओं को भी।
1: बिल्कुल, और सबसे ज्यादा तो मैं पुरुषों का सहयोग चाहूंगी कि वो घर में रह करके उनसे जो भी बन पड़ता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एवरी टाइम आप घर में रह के उनका घर के कामों में सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं उनको हेल्थ को लेकर के, कि आप कुछ अपने लिए, पहले तो सबसे पहले हेल्थ है हमारी, आप अगर महिला अगर घर की स्वस्थ है तो वो सबका ध्यान रख पाएगी। अगर एक दिन आपकी मम्मी, आपकी वाइफ या सिस्टर बीमार पड़ जाती है तो अस्त व्यस्त हो जाता है,
0: बिल्कुल सही कहा,
1: वो कहानी बिगड़ जाती है घर की। लेकिन सबसे पहला हमारा है कि उनको स्वस्थ रहने पे उनके टाइम से नाश्ता करें, टाइम से खाना खाएं, उनसे भी पूछें आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा। ये केवल पत्नियों का ही नहीं बन रहा है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारा दिन भी कैसा रहा, तुमने आज क्या सोचा, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये चीज है।
0: तो मतलब दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना है।
1: हाँ जी,
0: करेक्ट, बहुत अच्छा बोला आपने। और कुमकुम, तुम क्या कहना चाहते हो?
3: मैं भी यही कहना चाहूंगी, जैसे कि मैम ने भी बताया, संस्कार और रीति रिवाज के साथ जो हस्बैंड कहते हैं ना कि ये हमारे घर के संस्कार हैं, ये हमारी रीति रिवाज है, रिचुअल्स हैं, आगे नहीं करना हमारी फीमेल्स को, उस नाम पे ना उसको रोक दिया जाता है।
0: करेक्ट,
3: लेकिन हमें ना उन चीजों को वहां तक सीमित नहीं रख के उस सबके साथ साथ अपनी फीमेल को, मतलब अपने पार्टनर को आगे बढ़ाना चाहिए, कभी भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनके साथ उनको मेंटली हेल्थ भी ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ इनका मेंटल हेल्थ भी अगर ठीक है ना तो वो हैप्पी रहेंगी, और जब वो हैप्पी रहेंगी तो उनका स्वास्थ्य वैसे ही ठीक हो जाएगा।
0: वो भी बात बिल्कुल सही कही है दोस्तों, बिल्कुल। देखिए एक्चुअली ना मुझे भी ऐसा लगता है कि लेडीज के साथ साथ ना हम पुरुषों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जब तक हम चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको पुश नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता

0: की चीजें अच्छे लेवल पे जा सकती है ना। जैसे आज ही मैं राजमा चावल बनाना सीख के आया हूँ भाई, कल मेरी शादी होगी तो मेरी बीबी को कुछ तो रिलैक्स मिलेगा भाई। अगर वो अपने घर चली जाएगी तो मुझे होटल का वेट नहीं करना पड़ेगा। शैली जी, रीना, कई बार होते हैं ना, हमने खड़े खड़े जोमेटो ये वो जो भी हम करते हैं उसमें भी हमें गारंटी नहीं है कि कितना शुद्ध खाना मिल रहा है।
1: और ये बात
2: तो ये तो एक बड़ी एक सबसे बड़ा मिथ लगता है मुझे कि सिर्फ महिलाएं खाना बनाती
1: हैं। हाँ, वही
2: आप रेस्टोरेंट्स में देख लो, होटल्स में देख लो,
0: मेल खाना
2: बनाते कौन है? आप फीमेल शेफ बहुत ही कम
1: पुरुष
2: मिलेंगे नहीं।
0: तो फिर ये समाज में क्यों है कि
2: आप घर में हलवाई बुलाओगे कोई लेडीज नहीं आएगी, पुरुष ही आ रहा है।
0: हाँ,
2: ये केवल घर का ही चल रहा है कि आप ही को खाना बनाना है, आप ही को ये करना है।
3: ये तो ना हमारे कुकिंग वर्ड में ही डिफाइन कर रहा है, कुकिंग। यहाँ किंग की बात हो रही है, क्वीन की बात नहीं हो रही।
0: करेक्ट,
2: तो exactly. सही बात है, किंग आई
1: नो, वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: तो जितने भी जैन से वो किंग बन जाए, कुकिंग करने के साथ साथ कुकिंग करें।
2: मैं ये कह रही हूँ कि कुकिंग करें, लेकिन अगर आपकी वाइफ बीमार है, आपकी मदर बीमार है, तो आपको इतना आना चाहिए कि उस 3-4 दिनों में उनका ध्यान रख पाए, उन्हें जैसे वो पहली थी वैसे ही उन्हें फिर से खड़ा कर पाए, उनका सपोर्ट कर पाए। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो सुबह खाना बनाए बिल्कुल ऐसे कि आप बिल्कुल जॉब पे छोड़ दें, या देखिए जेंट्स के बस की बात नहीं है, जितना एक लेडीज संभाल लेती है ना घर बाहर दोनों सोसाइटी वगैरह सब, वो उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ संभाल नहीं पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: क्या बात है गाइस, आज महिला मंच में मैं बिल्कुल सीख के जाने वाला हूँ, बहुत सारी तैयारियां मेरे साथ हो रही है, अप्पे चप्पे खप्पे सब सीखूंगा आज मैं, आप टेंशन ना लो। रीना तो कुछ कह रही थी, टेल मी।
1: मैं ये कह रही थी, तुम्हारी बातों पे बोल रही थी, तुमने बोला कि मैंने आज ही राजमा चावल बनाने के लिए सीखा है। तो जब जैसे मैम ने बता ही दिया कि अगर घर में महिलाएं बीमार होती है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप घर में एक दूसरे का साथ दोगे तभी परिवार आगे बढ़ता है और ग्रो भी तभी करता है। और क्योंकि अब देखा जाए तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक अगर कोई पुरुष कमा रहा है ना, तो मुझे लगता है कि वो उसमें नहीं हो पाएगा कि बच्चे भी है, फैमिली को भी लेकर चलना है, इसीलिए दोनों को ग्रो करना चाहिए, सपोर्ट करिए आप महिलाओं को।
2: हो भी पाएगा तो कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाएं दबाएंगे,
1: लो वही ना, तो दबाना उस चीज को आगे करिए।
2: और ये चीज आप सोचो, पहले के टाइम में चल भी जाता था कि महिलाओं हैं बहुत सारी, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, मगर अब ज्वाइंट फैमिलीज है कहाँ, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे,
0: छोटा परिवार सुखी परिवार,
1: लेकिन खर्चा
2: वो इतना छोटा हो गया है कि अगर आपके साथ कुछ बहुत बड़ी कंडीशन आ जाती है ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको घर के काम ही नहीं आते। पहले केवल बेटी का ही फर्ज बनता था कि पापा आए हैं आपको पानी देना है, आजकल क्या है कि बेटों को भी भाई पापा आए आप पानी दीजिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: उनको आदत में डालिए,
0: छोटे छोटे काम में उनका जो है एनरोलमेंट कराइए,
2: क्योंकि बेचारे उन बॉयज को बाहर जाके बहुत परेशानी होती है, उनकी तकलीफ नहीं। आप सोचो जो जिस बच्चे ने एवरी टाइम घर में बेड पे खाना खाया है, बेड पे चाय पी है, वो हॉस्टल जा रहा है रहने के लिए, उसको अपने खुद या जॉब पे बाहर है, खुद बना के कुछ खाना है, तो वो कितना परेशानी होती है उसको, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं होती। लड़कियों को आपने कभी देखा है कि परेशानी हो रही है?
1: नहीं, क्योंकि घर पे भी उसको काम करवाया जाता है,
2: उनके लिए 5 मिनट मैगी नहीं, उनके लिए 5 मिनट में खाना भी बन जाता है।
0: नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, अब लड़के भी बहुत ज्यादा अंकल आंटी के साथ साथ सब एक्टिव हो रहे हैं,
2: सब एक्टिव हो रहे हैं आजकल के बॉयज, बहुत नहीं, आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है, वो कोऑपरेटिव आ रही है, लेकिन उनको वो कोऑपरेट करते हैं ना तो उनको फिर लोग ये कहते हैं अरे यार तुम कर रहे हो ऐसा, तुम्हारा नहीं करने का है, तो वो जो नहीं वाला शब्द है नहीं अच्छी, उनको ये बोलो कि नहीं अच्छी बात है आप सपोर्ट करते हो।
0: ये बात तो आपने सही बोली, और मुझे भी लगता है कि गाइज अब सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी और पुरुष ही नहीं महिलाएं भी, मतलब कहने का ये कि दोनों लोग साथ में चल रहे हैं और दोनों ही लोग बराबरी में काम करते हैं, कोई प्रोफेशन नहीं बचा है, कोई क्षेत्र नहीं जहाँ लड़के लड़कियां काम ना कर रहे हो, हर जगह कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये भी था आपको बुलाने का शैली जी, इस प्रोग्राम में महिलाओं को एक मोटिवेशन आप जो आपसे मिलेगी ना उसकी बात अलग होगी। तो हमने कर ली, अभी जो हमने बात करी है, खैर ये महिलाओं की और पुरुषों की बात कर ली खाने पीने की, मर्दों को भी आना चाहिए जरूरी भी है, लेकिन अगर मैं बात करूं उन महिलाओं की जो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आता भाई कहां से शुरू करना चाहिए, तो उन्हें आप क्या कह सकती हैं? आजकल तो घर से भी बहुत सारे काम कर सकती हैं
2: उन्हें महिलाएं। तो सबसे पहले तो उन्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती, उन्हें बस ये सोचना है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: करेक्ट,
2: उन्हें सिंगिंग अच्छी लगती है, उन्हें डांसिंग अच्छी, उनका शौक क्या है, उस शौक को प्रोफेशन बनाया।
0: अच्छा, आपकी बात को बीच में रोक के बोलूंगा। रिसेंटली ना एक लेडीज हमारी मुलाकात हुई, हमारे स्टूडियो में ही आई थी वो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनको बहुत अच्छा गाना आता है, उनके गाने का बहुत शौक है और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी पैकेज उनकी, गवर्नमेंट टीचर है, उनके हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे लेवल पे टीचर है, उनका बेटा मुंबई में बहुत ही बड़े स्टूडियो में प्रोड्यूसर है, मुंबई बॉलीवुड में काम करता है, मुरादाबाद की ही है वो। तो उन्होंने बताया कि उनके उनको गाने का बड़ा शौक है, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके उनका बेटा और उनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, तुम यही घर में रहो, तुम्हारी आवाज यहीं तक अच्छी है, तुम्हें ऐसा मिथ है कि तुम अच्छा गाती हो, तुम घर पे खाना वाना बनाओ, तुम्हारे लिए यही सफिशियंट है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इवन वो कहती है कि मेरा बेटा भी, मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ ना, बेटा भी बोलता है नहीं मम्मी मैं मुंबई में रहता हूँ, तुम्हारी आवाज घर की दीवारों में ठीक है, बाहर बेइज्जती हो जाएगी। तो उनको घर में डिमोटिवेट कर रहे हैं वो लोग। तो मेरा मतलब ये नहीं कि गलत चीज है, शायद उनको ऐसा लगता है, लेकिन जितना हमने आंटी मैम को देखा, उनको सुना, तो मुझे लगा नहीं, शी इज वेरी ब्रिलियंट, वो अच्छा कर सकती है। बट अगर उनको एक मौका दिया जाए, उनको एक सपोर्ट किया जाए उनके पेरेंट्स से, उनके हस्बैंड से या उनके बेटे से, तो शायद वो और अच्छा कर ले। तो बात वही आ गई है कि लेडीज करना तो चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर है कि तुम अच्छा, उनको डिमोटिवेट कर दिया जा रहा है।
2: तो उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक बार अपना सॉन्ग इंस्टा पे डालिए, जो भी आपको एक बहुत अच्छा आता है, व्यूअर्स आपके कितने आते हैं, कौन आपको लाइक करता है, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या है आपकी।
0: लेकिन कभी
3: अपने प्लेटफॉर्म को खुद जनरेट करें,
0: जनरेट तो करना है, लेकिन अब जब अलाउड ही नहीं है घर में, जब लोग उनको कह रहे हैं कि आप अच्छा गाती नहीं हो, तो
2: चलो ठीक है अलाउड नहीं है, तो जो घर के मेंबर्स है ना, चार दीवारी में ही गाना है, तो उन जो हमारे चार लोग हैं, हमारे घर के रिलेटिव, हमारे भाई हो गए, हमारी बहनें हो गई, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हो गए, व्हाट्सएप पे डालिए सिंगिंग करके, हाइड कर दीजिए सबको, फिर वो उनके व्यूअर्स क्या होते हैं आपके गाने के प्रति पता चल जाएगा।
0: ये अच्छा आपने,
2: क्योंकि साँच को आज क्या,
0: सही
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये आपने बहुत अच्छा बोला। और मुझे लगता है कि ये जो लेडीज प्रोग्राम है ना, इसके इसका मतलब यही है, इसका मीनिंग यही है कि हम लोग लोगों की सोच को बदलें, और सिर्फ महिलाओं की क्यों, जेंट्स की सोच को भी बदलना बहुत जरूरी है।
2: नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, आप घर में कीर्तन रखिए, आप अगर अच्छा गाते हैं बजाते हैं, आपको चार लोग इन्वाइट करेंगे, यार वो उनकी वाइफ बहुत अच्छा गाती है, और देखिए लोग उन्हीं को बुलाना चाहते हैं जिनमें कुछ बात है, चार लोग जो पीछे बैठने वाले होते हैं उन्हें लोग कम इन्वाइट करते हैं, आपको बजाना आ रहा है, आपको गाना आ रहा है, आपको डांस आ रहा है, तो आपको जब आपका घर में ऐसे छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो आप सोचेंगे चलो उन्हीं लोगों को ज्यादा बुलाएंगे,
3: उन्हीं लोगों का नाम सबसे पहले होगा।
0: सही कहा आपने। तो श्रोताओं, फिलहाल मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अब जो है मेरा तो जाने का समय हो रहा है, लेकिन अभी इन लोगों की बात आप सुनते रहिए, शायद आपको कुछ अच्छा सीखने को जानने को मिले। थोड़ा सा मैं बस जाने से पहले शैली मैम से और पूछना चाहूंगा, वो आज हमारे बीच में आई है तो इतना अच्छा काम करती है और इतनी फिट भी है वो, और इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने मेंटेन की हुई है, तो इसका राज थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि घर की महिला अगर स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है ना, पूरा परिवार के फिर पूरा समाज स्वस्थ है। अगर हमारे घर की नारियां कमजोर पड़ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी, थकेंगी, दिक्कतें होंगी, तो वो नहीं चला पाएंगे, और पुरुष तो इतना नहीं कर पाते भाई, सिंपल सी बात है। तो महिलाओं को आप क्या टिप्स देंगी, क्या एडवाइस देंगी, दिन की शुरुआत कैसे करें, कैसे वो खुद की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करें?
2: मैं महिलाओं के लिए बस यही बोलना चाहेंगी कि अगर आप 45 मिनट, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 2 घंटे निकालिए, 45 मिनट अगर आप पूरे दिन में नहीं निकाल पा रहे हो तो आपकी लाइफ ना बिल्कुल यूजलेस है। क्यों? क्योंकि 45 मिनट्स में वो आपकी हेल्थ इश्यूज से लेके आपकी मेंटल हेल्थ तक वो सही करेगी। जब हमारी मेंटल हेल्थ सही होती है तो हमारी फिजिकल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो उस 45 मिनट में आप प्राणायाम है वो करिए, आजकल ऑनलाइन सब अवेलेबल है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, जिम नहीं जा पा रहे हो, योगा नहीं जा पा रहे हो, सारी चीजें अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, वो आप उनको सर्च करके 15 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लो, कपाल भारती कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इतनी सारी एक्सरसाइज है वो 45 मिनट। और सबसे पहला जो दिन की शुरुआत करो एक फ्रूट से करो, चाहे आप ये नहीं है कि

0: टाइम से डिनर, टाइम से लंच, ये चीजें उनको जरूर करना चाहिए। मतलब प्रायोरिटी पे उन्हें 45 मिनट्स अपने हेल्थ को देने हैं, और दूसरी बात अगर वो टाइम से खाना वाना खाएंगे तो वो वैसे ही स्वस्थ रहेंगी। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव चीजें सुने, नेगेटिविटी अपने पास से हटाने की कोशिश करें।
1: बहुत ही अच्छा बोला आपने, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और गाइस अब हम लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत। रीना तुम्हारा क्या टेक रहेगा, तुम क्या कहना चाहोगी जाते जाते?
2: मैं यही कहना चाहूंगी महिलाओं से कि अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ है तो पूरा परिवार पूरा समाज स्वस्थ है। और जब महिलाएं आगे बढ़ती है, महिलाएं पढ़ती है, क्योंकि आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है कि अपने लड़कियों को ये नहीं चाहता हो कि तुम ना पढ़ो, क्योंकि जब महिलाएं पढ़ती है ना तो वो एक पीढ़ी को नहीं बल्कि तीन तीन पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। तो वो शिक्षित है, स्वस्थ है तो समाज भी शिक्षित है और स्वस्थ है।
1: क्या बात है कुमकुम, तुम क्या कहोगी जाते जाते?
3: मैं भी बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी महिलाएं, आपकी वाइफ, आपकी बेटियां आपका साथ दें, तो आप भी उनका उतना ही साथ दें। अगर वो थकी हारी आती हैं तो आप उनको एक गिलास पानी दें, उनसे कहें कि हाँ 2 मिनट रेस्ट करो, जो काम करना है आप आराम से करो।
1: बहुत ही
0: बढ़िया,
1: बहुत ही अच्छा मैसेज दिया सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस फिर मिलेंगी आपको रीना और खुशी, मैं लेता हूँ इस महिला मंडली से इजाजत, फिर आपको जल्दी मिलूंगा, आप ख्याल रखिए अपना। और जाते जाते थोड़ा सा फन करते हैं, एक छोटी सी शायरी है मेरे साथ आपको बोलनी है, आर यू रेडी गाइस? ठीक है चलो तो शुरू करें। तो गाइस महिला मंडली में एक थोड़ी सी फनी शायरी, माफी चाहता हूँ आप सभी को, बोला है दिल जवा है तो बेबसी कैसी, बोलो गाइस।
2: दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
1: आपको भी बोला है फिर से बोलना है, दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
4: दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
1: सफेद बालों की ऐसी की तैसी,
3: सफेद बालों की,
0: सफेद बालों,
2: फिलहाल सफेद बाल भी इनके ही है इसीलिए बोला है।
0: सबसे ज्यादा काउंट करे आएंगे तो आरजे,
1: मैं नमक के पानी से नहा लिया था किसी एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था एक ग्लास एक चुटकी नमक डाल के नहाना है आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो बालों के कार्य पूरे सिद्ध हो गए।
0: कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और टिप्स आप उनसे ले लें, हाँ। आपके बाली चले जाएं।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा,
0: रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
1: ये तो इन्होंने मेरी नानी की कहावत जोड़ दी। फिलहाल तो मैं लेता हूँ जाने की अनुमति, और आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो
4: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: बाय बाय
4: बाय।

0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर मैं आरजे राज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, यूं तो हम हर रोज अपने जीवन से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं, पर हमारी आज की बातचीत थोड़ी ज्यादा खास है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी किसी किताब की तरह कुछ पन्ने पलटते हैं और फिर शुरू होती है एक नई कहानी। हमारे वो सभी सपने सच हो जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसे ही एक युवक के सपनों की दास्तान मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज के कार्यक्रम में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ जानने के लिए कि कैसे उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संचालित CM युवा उद्यमी विकास योजना ने वाराणसी के चोबेपुर के सतीश के सभी सपनों को साकार कर दिया।
1: फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि कैसे हीरो रातों रात अमीर हो जाता है और उसका देखा हर एक सपना हकीकत बन जाता है, पर वास्तविक दुनिया में ऐसी बातें महज एक कल्पना है।
0: वाराणसी के एक डिग्री कॉलेज से इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद सतीश के सारे दोस्तों का लक्ष्य दिल्ली बम्बई में ऊँचे औहदे की नौकरी पाना था, पर हमारे सतीश की अभिलाषा कुछ और ही थी।
1: मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ और मेरे लिए अपने माता पिता और गांव को छोड़कर जाना तर्कसंगत फैसला नहीं होता। बाबूजी ने मेरे लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा किया था और अब मेरी बारी थी कि मैं अपने अभिभावकों के बुढ़ापे की लाठी बनूं।
0: सतीश का मन लगातार अपने और परिवार के भविष्य को लेकर बोझिल रहता था।
1: मेरी रातों की नींद बस इन्हीं ख्यालों को सोच सोच कर उड़ सी गई थी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सपनों को पूरा करने के लिए अपनों का साथ छोड़ना पड़े या उनसे कहीं बहुत दूर जाना पड़े।
0: दोस्तों, सतीश जैसी दुविधा हमारे देश के हजारों युवाओं के मन में होती है, जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर संसाधनों की कमी के चलते उनके सपने बस उनकी कल्पना में ही रह जाते हैं।
1: महीनों बीत गए थे अपने शहर में इंटरव्यू देते देते, मेहनत के हिसाब से कहीं पर भी पैकेज नहीं जमा। फिर एक दिन सुबह अखबार खोला तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में पता चला।
0: और दोस्तों, यही है सतीश की कहानी का वो पन्ना जिसने पूरी दास्तान बदल कर रख दी। इससे पहले कि सतीश आपको आगे की कहानी बताए, मैं आपको बताता हूँ कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना आखिर है क्या। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है जिससे वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
1: जैसे ही मैंने इसका इश्तेहार को देखा तो फटाफट से मोबाइल पर इसके बारे में मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अप्लाई करने के लिए कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है और आवेदनकर्ता को किसी सरकारी ट्रेनिंग योजना से प्रशिक्षण लिया होना चाहिए या मान्यता प्राप्त संस्था से स्किल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।
0: श्रोताओं, इस योजना की औपचारिक शुरुआत 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
1: मैंने जब अपने फ्रेंड सर्कल में देखा तो मेरे जैसे दो बैचमेट्स रवि और निर्भय थे जो मेरे ही जैसे समस्या से जूझ रहे थे। मैंने उन्हें भी इस योजना के बारे में बताया और हम सभी ने साथ में ही हमारी दुविधा का हल निकालने की ठान ली थी। सबसे पहले हम इस योजना से संबंधित बैंक गए और वहाँ के कर्मचारियों ने हमें लोन मिलने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।
0: साथियों, हमारे देश के सर्वाधिक युवाओं वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CM युवा की मिशन रोड से शुरुआत की गई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उत्पाद सेवा संबंधित उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना, प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।
1: जितनी जानकारी मैंने प्राप्त की थी उसके हिसाब से मुझे योजना को लेकर काफी कॉन्फिडेंट फील हो रहा था, पर मेरे साथियों के मन में थोड़ा डाउट था, कहीं हमारी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा, पर डॉक्यूमेंट को लेकर सभी का ये संकोच जल्दी ही क्लियर भी हो गया। जब हमने हमारी उम्र के एक नौजवान को बैंक में मिठाई बांटते देखा, उससे बात हुई तो पता चला कि वो भी युवा उद्यमी विकास योजना के जरिए अपना बिजनेस चला रहा है और जोरों शोरों से व्यवसाय चलाने के बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी भी तय कर दी है। फिर क्या, हमने हमारे भी सपनों को अपनी आँखों के सामने सच होते हमें भी दिख रहे थे।
0: अब सतीश और उसके दोस्तों की गाड़ी तो चल पड़ी, पर आप सभी के लिए योजना के चरणों के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। साथियों, इस योजना के पहले चरण में 5 लाख तक की परियोजना हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज तथा गारंटी मुक्त ऋण मिलता है और दूसरे चरण के लिए पहले चरण में लिए गए मूलधन पैनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होता है। साथियों, सतीश की इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए हम सुनते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी का ये मुख्य संदेश।
2: कुमार उपायुक्त उद्योग मुरादाबाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 10 लाख युवा उद्यमी बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की जो प्रमुख एलिजिबिलिटी है वो है कि कोई भी युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो और न्यूनतम 8वीं पास हो और 21 से 40 साल का अगर वो युवा आयु है उसकी, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन उस पर मिलता है, जिस पर युवा को कोई भी ब्याज अगले 4 वर्ष तक नहीं देनी है। ऊपर से उसको 10% उसको सब्सिडी उसको मिलेगी। अब तक जनपद मुरादाबाद में इस वित्तीय वर्ष में 25 से 26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत 2230 युवाओं का ऋण स्वीकृत हो चुका है, जिसमें कि 2000 युवाओं को ऋण प्राप्त भी हो चुका है। तो इस योजना के अंतर्गत कोई भी युवा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटी अपना कार्य शुरू करना चाहता है तो हमारी इस योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री इंटरेस्ट फ्री बिना किसी गारंटी के बिना किसी ब्याज के ये ऋण प्राप्त करके अपना व्यवसाय अपना उद्योग स्थापित कर सकता है, जिस पे उसको 10% जो ऋण है उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% उसको सब्सिडी के रूप में भी मिलेगा। महिलाओं के लिए और SC ST के लिए जो परियोजना लागत का जो ओन कंट्रीब्यूशन होता है स्वयं का अंशदान होता है वो सिर्फ 10% उनको लगाना होगा, सामान्य वर्ग के लिए 15% उसको लगाना होगा। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद के लोगों से युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि रोजगार सीकर न बन के जॉब गिवर के बारे में सोचें और अपना स्वयं का व्यवसाय उद्योग इस योजना के अंतर्गत लाभ लेकर अपना उद्योग स्थापित करें।
0: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था तो मन में सिर्फ नौकरी करना यही विचार आता था। मेरा खुद का बिजनेस होगा और मैं अपने साथ दूसरों को भी नौकरी देने में सक्षम बन पाऊंगा, ऐसा मैंने और मेरे परिवार वालों ने कभी नहीं सोचा था।
1: साथियों, इस योजना के तमाम फायदे हैं पर कुछ लाजमी शर्तें भी हैं, जैसे डिजिटल लेन देन के सापेक्ष रूप 1 प्रति ट्रांजेक्शन तथा अधिकतम 2,000 रूपए प्रति वर्ष के अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी दे होता है। योजना के अंतर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत सभी वित्तीय संस्थान ऋण वितरण हेतु पात्र है। तंबाकू उत्पादक जैसे गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट पेय पदार्थ, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग 40 माइक्रोन से कम तथा भारत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होते हैं। योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होता है। जिला स्तर पर जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अधिक जानकारी के लिए आप cmyuva.org.in विजिट कर सकते हैं।
0: जब हम सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम एक कंप्यूटर और डिवाइस सर्विस सेंटर खोलना है तो बिना देरी के हम अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पहुंचे और वहां जाकर हमें पता चला कि आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। अप्लाई करने के लिए MSME पोर्टल को लिंक पर ऑनलाइन आवेदन किया कि पोर्टल पर लिंक आवेदन किया जाता है। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के उपरांत आवेदनों को बैंक में भेजा जाता है जहां समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति एवं वितरण की व्यवस्था की जाती है। साथ ही बैंकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मार्जिनी मनी, ब्याज उत्पादन तथा CGTMSE प्रतिपूर्ति प्राप्त किए जाने की व्यवस्था भी होती है। आज मेरी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिन्हें महज वादे ही नहीं किए बल्कि धरातल पर कोशिशों को साकार भी किया। आज ये उन्हीं की देन है कि मैं और मेरे साथी काम करने वाले पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने और अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। सचमुच लीडर हो तो ऐसा, योगी जी इसी दूरदर्शी सोच के लिए उन्हें मेरा सैल्यूट है।
1: दोस्तों, वाराणसी के चौबेपुर निवासी सतीश और उनके बिजनेस पार्टनर्स रवि, निर्भय और उन सभी के परिवार वालों को आज महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। आज वो आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं और अपने शहर में रहकर अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम भी हैं।
0: मेरे लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी ही असली फ्रीडम है और हम सभी युवाओं के लिए यही बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी है। ये नया यूपी है जहां अब युवा रोजगार के लिए भटकेगा नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद तय करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और युवाओं के हित में सोचने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारा धन्यवाद। और साथ ही रेडियो के माध्यम से मैं अन्य लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा कि खूब सपने देखिए, क्योंकि आपके सपने और लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश आपके साथ है।
1: साथियों, बदलते और प्रगति की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश की और भी कहानियाँ हम लेकर आएंगे आपके पसंदीदा प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में। साथ ही अगर आप चाहें तो अपनी कहानियाँ हमारे माध्यम से जनता तक पहुँचा सकते हैं। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूँ आपका दोस्त आरजराज, जल्दी ही मिलूंगा ऐसी और बहुत ही खूबसूरत कहानियों के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर UKG तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, AI, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। और आज भी साथ अखिल जी भी हैं। देखिए, जब ये आते हैं तो बाहर आ जाते हैं और इनके बिना कार्यक्रम ना अधूरा लगने लगता है। अब आदत सी हो गई है इनकी, हम लोगों को, आपको भी हो गई है ना। हम जानते हैं एवरी डे, आप भी मालूम कर रहे हैं कि अखिल सर आज क्यों नहीं आए हैं, और आज ये आ गए हैं। आज हमने इनको बुला ही लिया है स्टूडियो में। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम आना तो चाहते हैं लेकिन काम की वजह से नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, सभी को मैनेज करना होता है। तो अखिल सर से बातचीत करते हैं अभी। अखिल सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार खुशी, कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइएगा। आज
1: मुझे लग रहा है आपने जो है ठंडा ठंडा गिलास पी लिया है पानी का। कल आप कह रही थी आपको बहुत गर्मी लग रही है।
0: नहीं, मैंने ठंडा पानी तो नहीं पिया है, बिना ठंडे पानी के ही मेरी हालत खस्ता हो गई है।
1: कचौड़ी खस्ते वाली।
0: हाँ, और ठंडा पानी पीते तो पता नहीं क्या होता, शायद आवाज़ भी ना निकलती। और अखिल जी बताइएगा, बाहर का मौसम कैसा है?
1: बाहर का मौसम वैसा ही है जैसा कल था, अभी कुछ ऐसा कोई इतना खास चेंजेस नहीं है, मगर हाँ पहले से थोड़ी सी राहत है।
0: अभी इवनिंग में तो नाइट में मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: जी तो हमारे साथ कौन जुड़े हैं अखिल जी, जरा बताइएगा।
1: पता करते हैं कौन है हमारे साथ।
0: हाँ बिल्कुल, पता करते हैं।
1: हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश सर, अपना नाम बताइए आप। दौलत सिंह जी, क्या बात है। आजकल दौलत सिंह जी की, आजकल दौलत की बहुत जरूरत है सभी को। सब बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुरादाबाद से?
2: मुरादाबाद से बोल रहे हैं, मंडी चौक से।
1: मंडी चौक से
2: जी।
1: क्या बात है, कैसे है मंडी चौक में? इस समय गर्मी कैसी चल रही है?
2: हालात
1: खराब है। क्या काम करते हैं दौलत सिंह जी आप?
2: हलवाई का काम करते हैं।
1: आप हलवाई का, क्या क्या बनाते हैं?
2: और
1: क्या बात है, क्या बात है, इतना मत बताओ दौलत सिंह जी, भूख लगी रहेगी। बस बस भर गया सब, सब एक एक किलो पैक करके रखवा देना भाई। और बताइए क्या सुनना चाहेंगे आज? मतलब मुरादाबाद के बाजार में बैठ के आप बरेली का झुमका देखना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया दौलत सिंह जी, बहुत बढ़िया। और बताइए कुछ, और अपने हमारे श्रोताओं को बताइए क्या करना चाहिए गर्मी में और क्या नहीं खाना चाहिए गर्मी में। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए हमारे श्रोताओं को भी बताइए।
2: गर्मी में जो है ठंडी ठंडी चीजें खानी चाहिए।
1: बिल्कुल सही है।
2: पानी पीने के बाद आपको पानी पियो।
1: सभी हमारे जितने भी मंडी चौक के आसपास जो भी सब सुन रहे हैं या आसपास थोड़ा मानपुर और इधर भी हैं, तो वो लोग हमारे दौलत सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। आज जरा उन्होंने रसगुल्ले जो बनाए हैं सब चेक करके बताएं कैसे हैं। ठीक है दौलत, बहुत अच्छा लगा दौलत सिंह जी आपसे जुड़ के, बहुत ही अच्छा लगा। अभी हम आपकी फरमाइश का गाना प्ले करते हैं। नमस्कार दौलत सिंह जी।
0: तो अखिल जी, मीठी मीठी मिठाइयां, आप ठंडी ठंडी मिठाइयां खा रहे हैं?
1: मुझे तो ना सच में दौलत सिंह से बात करके ना मुझे तो खुद ही भूख लगी आई। मैंने कहा यार आज सच में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा। मैंने कह दिया उनसे एक एक किलो पैक कर देंगे, जाएंगे शाम को ले लेंगे उनसे।
0: बिल्कुल, मन तो मेरा भी है कुछ मीठा खाने का, लेकिन अभी तो फिलहाल हमारा शो चल रहा है दोस्तों। और लेकिन हाँ, मिठाई नहीं खा सकते लेकिन मीठी बातें तो कर सकते हैं ना।
1: बिल्कुल सही बात।
0: तो अभी प्यारा सा मीठा सा गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप भी हमें कॉल लगाइए। अखिल जी आप नंबर बताइएगा।
1: 9837896896।
0: बहुत ही अच्छा। और ये जब मुस्कुरा कर नंबर बताते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों। आपने नहीं देखा है ना, हम एक दिन वीडियो ज़रूर शूट करेंगे, और चाहे तो आप हम लोग लाइव भी आएंगे कभी। और जब आप इनका स्टाइल देखिएगा, बहुत ही यूनिक है। अभी फ़िलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करेंगे आपसे।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
8: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
9: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
8: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
9: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
8: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
10: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और मैंने जैसे कहा कि एवरी डे की तरह आज भी मेरे साथ अखिल सर हैं यहाँ पर। और ये इनके जब भी मेरे पास होते हैं ना, तो इनके पास बहुत सारी खुराफाती पता नहीं कहाँ से आती रहती है, माइंड में चलती रहती है, कुछ ना कुछ खुराफाती ही करते रहते हैं। मतलब शांति से नहीं बैठते हैं। मैं तो चुलबुली हूँ, लेकिन ये भी चुलबुले हैं।
1: ऐसा मतलब ये ना, तो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है।
0: नहीं, आप नटखट तो हैं हमेशा। जब भी देखती हूँ मैं लैपटॉप में, पता नहीं क्या सर्च करते रहते हैं। आई डोंट नो,
1: वो लैपटॉप पे सर्च नहीं चल रहे होते, लैपटॉप पे काम चल रहे होते हैं। हमारे भी तो काम होते हैं, नहीं होते हैं कुछ?
0: हाँ बिल्कुल होते हैं सर।
1: अब जैसे झुमका गिर गया,
0: हाँ
1: आज की तारीख में अगर झुमका बरेली में गिर गया तो तुम कैसे ढूंढोगी?
0: मैं झुमकी चौराहे पर जाऊंगी
1: और वहां तुम्हारा झुमका रखा हुआ मिल जाएगा। और जो झुमका उन्होंने नगर निगम वालों ने इतना बड़ा लगा रखा है, वो तुम लेके चली आओगी, है ना?
0: हाँ, इरादा तो मेरा यही है।
1: बस बस बस, ऐसी लोगों से हमें बचाना है बरेली को, जो उस झुमके को अपना ना समझे। और जब भी बरेली का नाम आता है तो बरेली में ऑटोमेटिकली जो है ना, ये झुमका जो वर्ड है ऐसा जुड़ गया है कि अगर बरेली तो अरे यार झुमका वाला शहर है।
0: हाँ,
1: ऐसा फेमस हो गया इस गाने
0: exactly. और ये गाना कितना प्यारा था ना, आपको पता है? ये फिल्म आई थी, मैं आपको बताती हूँ, 1966 में। और इस खूबसूरत गीत को गाया था आशा भोसले जी ने, और मूवी का नाम था मेरा सैया। बहुत ही खूबसूरत सी मूवी। और पता है आपको,
1: मेरा साया,
0: मैं वहाँ पर ना एक बड़ी राजस्थान गई थी, तो उन्होंने कंफर्म किया कि आप कहाँ से। मैंने कहा मैं मुरादाबाद से हूँ, और उन्होंने बोला मुरादाबाद के पास और क्या। मैंने बोला बरेली, तो उन्होंने यही गाना गुनगुनाया। मतलब इस गाने से इतना कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है कि लोग मुरादा अपने बरेली शहर को भी जानते हैं। अब हमने बरेली को बहुत प्रमोट कर दिया, फिर मुरादाबाद में वापस आते हैं
1: और अपने नए लिसनर से सुनते हैं, देखते हैं वो कहाँ से जुड़ गए हमारे।
0: हाँ बिल्कुल, बात करते हैं। चलिए,
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो
1: सर, क्या नाम है आपका और कहां से बोल रहे हैं आप?
2: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील जिला विदिशा मध्य प्रदेश एमपी से।
1: विदिशा से बोल रहे हैं आप?
2: जी।
1: क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है मध्य प्रदेश में। हारून साहब
2: जी, हम तो फोन लगाते रहते हैं आज दिन में आधा दिन में।
1: अच्छा
2: जी,
1: और कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप हारून साहब?
2: और आपके इधर गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: गर्मी तो बहुत पड़ रही है यहाँ पे, आपको आके चेक करना पड़ेगा। आपकी तरफ विदिशा में क्या इस समय फेमस है?
2: भाई गर्मी तो भाई अच्छी खासी पड़ रही है। कबीरा मार्ग है सब फेमस।
1: क्या है?
2: कबीरा मार्ग।
1: अच्छा अच्छा, चलिए अब आप बताइए, आपको आप कभी आए हैं मुरादाबाद?
2: जी कभी नहीं।
1: अभी नहीं आए तो अभी कभी तो आइए, मुरादाबाद एफएम सुनते हैं आप किसी बहाने, तो मुरादाबाद घूम के जाइए।
2: जी जी,
1: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप हमारे एफएम पे?
2: आप जी को सुनवाते हैं ना,
1: दोस्ती करे नहीं।
2: हाँ दोस्ती हो जाती है।
1: क्या बात है, क्या बात है साहब, ये तो हमने मैंने आज तक सुना था, प्यार कभी करे नहीं, प्यार ऑटोमेटिकली हो जाता है। दोस्ती भी ऐसी चीज है सीरियसली, ये करते नहीं है, और दोस्ती हो जाती है तो ऐसी हो जाती है कि आप उसे छुड़ा नहीं सकते। ये तो, आप किसे गाना डेडिकेट करना चाहेंगे?
2: जी सब मुरादाबाद है, पुरुषोत्तम कुमार है, आपको है, मुरादाबाद को सबके लिए।
1: धन्यवाद धन्यवाद हारून साहब, और आपकी फरमाइश जल्दी ही पूरी करते हैं।
0: इन्होंने कहा कि आज हमारे घर रिश्तेदार आए हैं, और जब रिश्तेदार घर पर आते हैं तो खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, क्यों? ऐसा क्या रीज़न है जो हम रिश्तेदारों के सामने बात नहीं कर सकते हैं, बताइए
1: रीज़न क्या है? मतलब होता क्या है,
0: जब गेस्ट आते हैं
1: तो, जब गेस्ट आते हैं एक तो आते ही वो बहुत टाइम के बाद हैं, तो जब
0: है?
1: आप बहुत टाइम के बाद कभी अपने गेस्ट से मिलते भी हैं तो आप उन्हीं के साथ उन्हीं की बातों में लग जाते हैं।
0: हाँ ये तो।
1: और जब इन्होंने देखो कितना अच्छा मौका है, गेस्ट भी आए हुए हैं, उनके लिए भी एक गाना हो गया और सबके लिए एक वो हो गया।
0: अच्छा अखिल सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आपके घर गेस्ट आए हैं, गेस्ट आते हैं, और मैं आपके बचपन की बात कर रही हूँ, तो आपके जो रिलेशन वाले आते थे वो आपको पैसे देके जाते थे?
1: अच्छा,
0: तो आप उन पैसों का क्या करते थे?
1: वो
0: फैमिली को दिया करते थे?
1: मैं बहुत ही सीधा साधा बच्चा हूँ, मैं तो मम्मी को पकड़ा देता था।
0: अच्छा, और इतने सीधे तो
1: मैं उसमें से एक आध रुपया बचा लेता था, और ये बता देता, वीडियो गेम खेलते थे हम बचपन में, वो पार्लर वाले जिसमें एक रुपये का सिक्का डालो तो टेकन थ्री और टेकन टू गेम नाम होता था, तो वो हम जाके वो खेलते थे पार्लर पे वीडियो गेम्स। अब तो सब वीडियो गेम पार्लर विलुप्त से हो गए हैं इस समय, क्योंकि मोबाइल ने और उन्होंने PS4 इन सब ने इतनी उनकी जगह ले ली है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वैसे हो गई। मगर जो आनंद वहाँ पे जाके वेट करने का, जब कोई और गेम खेल रहा है जब तक उसका गेम देखते रहो, वहाँ से वो सीखने का कि यार ये कैसे मार रहा है, ये कैसे इसने बटन के कैसे यूज किए। उसके बाद जब अपनी चांस आए ना, अब वही हम मारने की कोशिश करो, लगता नहीं था। तो वही उसमें भी एक प्रो होना, उसी में होना एक बहुत बड़ा टाइम लगता है,
0: लेकिन बहुत मस्ती वाला था।
1: हाँ, बहुत वो टाइम पीरियड मस्त था। अच्छा है।
0: देखिए इतने शरीफ बच्चे देखे हैं आपने कि सारे पैसे गेस्ट देकर जा रहे हैं, मम्मा को दे दिए। मैंने तो ऐसा नहीं किया एक्चुअली ना, मेरी जब घर पे बुआ जी आती थी या फिर कोई भी रिलेशन वाले आते थे तो वो मम्मी को पैसे देके जाते थे। मेरे ब्रदर को तो नहीं देते थे, कहते थे कि लड़कियों को पैसों का हक होता है, लड़कों को नहीं मिलते हैं। तो मेरे भाई मेरे को छोटा वाला मेरे पीछे लग जाता था, कहता दीदी प्लीज़ दे दो ना, 10 रुपये दे दो ना, प्लीज़ दे दो। तो ज़बरदस्ती मेरे पीछे लग जाता था और जो मैं चीज़ लेकर आती थी वो मेरे साथ खाता था मिलकर। लेकिन लड़कियों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं ना?
1: अब ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर हाँ लड़कियों को मिलते हैं पैसे भी, प्यार दोनों।
0: लड़कियाँ पहले क्या कहती है, नहीं नहीं नहीं बुआ जी मैं नहीं लूंगी, नहीं आप रख लीजिए ना, क्यों दे रहे हैं
1: लड़कियाँ तो एक शौक में खुश
0: है। लेकिन पता है मन में होता है कि यार दे दो। वो सारी चीजें होती हैं। चलिए दोस्त आपने भी ये खुराफाती की है ना? हाँ मैं समझ रही हूँ आप हंस रहे हैं।
1: तो वो पैसा किसे मना है?
0: हाँ बिल्कुल सबको पैसा प्यारा है यार। चलो अभी गाना सुनते हैं, दोस्ती करती नहीं हो जाती है। और मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो आप फोन हमें लगाएंगे, तभी तो दोस्ती आगे बढ़ेगी ना दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना है, हमें कॉल लगाने है। नंबर अखिल जी आप प्लीज बताइएगा।
1: 9837896896।
0: हाँ जी 98-378-96-896। पता नहीं कैसे एनर्जी आ जाती है, आई डोंट नो। मैं सोच रही थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट अभी लग रहा है कि हाँ।
1: नहीं नहीं बहुत एनर्जी है।
0: चलिए दोस्तों ये एनर्जी तो हमारे श्रोताओं का प्यार है, इतना प्यार करते हैं हमारे दोस्त।
1: चलिए अभी एंजॉय करते हैं, दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती।
0: और हमने आपसे दोस्ती कर ली, अब आप भी दोस्ती निभाओ।
1: हमारी तो दोस्ती हो गई है सारे लिसनर से।
0: अरे क्या बात है, मेरे स्मार्ट बॉय। हाँ चलो एवरीवन ये गाना सुनते हैं, लौट कर आते हैं।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए, यहाँ पर वक्त हुआ है 3:40 और हमने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी आरजू से। एंड इस गीत को गाया था कुमार सानू, जीत नारायण और साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़। म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक जी और लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। तो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अखिल सर कौन जुड़े हैं हमारे साथ, ज़रा बताइएगा।
1: हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
2: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हैं? कहाँ से सर? हाँ हाँ, चौहान साहब बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
2: है

0: आपकी अभी अभी शादी हुई है? अच्छा, आपके बेटे की?
1: जी।
0: तो कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आप पूरे परिवार को? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। तो कब कब हुई है सर शादी?
1: शादी अभी हुई है सर, 4 साल।
0: क्या बात है सर, अभी तो बिल्कुल शादी वाला माहौल ही चल रहा होगा सर। घर पे सब मेहमान वेहमान होंगे या धीरे धीरे जा रहे हैं? सही है सही है सही है सर। और आप मुरादाबाद में किधर रहते हैं? एकता कॉलोनी? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। चलिए आपकी फरमाइश को पूरी करते हैं। और एक गा हाँ जी चलिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका मैसेज खुशी जी तो सुन ही रही हैं, खुशी जी पे तो पहुंच ही गया, और आपका बाकी का ये मैसेज आनंद जी पे और रीना जी पे जरूर
1: पहुंचाऊंगा।
0: धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। आए हो मेरी जिंदगी में, क्या गाना है ये। ऐसा गाना है कि आप जो है ना, जैसे सुनेंगे तो थोड़े से बोल तो खुद ही गुनगुनाने चालू कर देंगे।
2: और जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं राइट नाउ, उनको क्या कहना चाहेंगे आप अखिल सर, जो अभी राइट नाउ ड्राइव कर रहे हैं?
0: मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ये गाने में भी लोग आमिर खान साहब ड्राइव कर रहे थे, तो आप भी जो है ना ड्राइव बहुत ही संभाल के करिए।
2: हाँ जी,
0: भले ही आप आमिर खान नहीं है, मगर जो भी
2: हर इंसान अपने आप में हीरो है, तो है ना, कोई किसी से कम नहीं है।
0: बेल्ट जरूर लगाइए,
2: सीट बेल्ट जरूर पहनिए
0: आपके लिए,
2: बिल्कुल जी। और हाँ, इधर उधर नजरें घुमाने की जगह आप सामने नजरें रखिएगा, ठीक है?
0: इधर उधर भी करिए, कुछ पता नहीं है इधर से उधर से कोई आ जाए।
2: अच्छा ठीक है, चारों तरफ देखना है।
0: चारों तरफ
2: ठीक है दोस्तों, चलिए चारों तरफ निगाहें रखिए और ये प्यारा सा गाना सुनते जाइए।

0: असंतीन के सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे हैं होंगे, ये तो हम उम्मीद करते ही हैं। और मुस्कुरा भी रहे हैं इस वक्त, मैं जानती हूँ, जैसे अखिल सर मुस्कुराते रहते हैं स्टूडियो में जब भी।
1: स्वागत है, सभी का स्वागत है।
0: हाँ, अगेन आप सभी का वेलकम है FM मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है, क्या नाम है बताइए अखिल सर?
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश, इतना सोच करके बोला, आप पूरे दिन तो हेलो हेलो चिल्लाते रहते हैं।
1: जब ये पास में टुनटुना होता है ना, तो इसका सबसे पहला शब्द जो है वो हेलो हेलो याद है।
0: हाँ बिल्कुल। तो अखिल सर आप कुछ कह रहे थे आंखों के बारे में।
1: मैं ही कह रहा था कि जब भी आप कभी बाहर निकले,
0: हाँ,
1: तो चश्मे जरूर पहन के निकले।
0: अच्छा, वो
1: दो
0: क्यों?
1: चीज की उससे सेफ्टी होती है।
0: बताइए।
1: तो इतनी धूप है,
0: हाँ,
1: तो एकदम आंखों पे ना तेज रोशनी नहीं पड़ेगी।
0: ठीक है। सेकंड,
1: आप किसको देख रहे हो किसको नहीं देख रहे हो आप ही को पता है, किसी और को नहीं पता।
0: हाँ ये भी बेस्ट है। लाइक और थर्ड?
1: नहीं थर्ड तो है नहीं, बस दो ही मैंने आपको बताया।
0: अरे थर्ड क्यों नहीं है, इतना ब्यूटीफुल लगते हैं गूगल्स लगाकर, सुंदर दिखते हैं ना, चाहे लड़के हो तो हैंडसम लगते हैं।
1: वो तो चश्मा तो कोई भी एकदम आपकी एकदम चेहरे की रौनक बढ़ा देता है।
0: हाँ बिल्कुल। तो ये अखियों की बातें आपने की है, बताइएगा कोई स्पेशल रीजन है?
1: अखियों की बातें इसलिए की है क्योंकि एक हमारे श्रोता है, लिसनर है, उनका भी कॉल डिस्कनेक्ट।
0: हरिओम जी,
1: हरिओम शर्मा जी हैं, जिन्होंने अपनी अखियों से ही अपनी धर्म पत्नी को एक गाना डेडिकेट किया है, डिम्पल जी को।
0: हाँ।
1: अखियों के झरोके से।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक है।
1: मैं तो सभी श्रोताओं से कहूंगा एक एक गाना तो यार अपने वालों को डेडिकेट कर दिया जाए। तो बेहिचक आप फोन मिलाए 9837896896 पे।
0: ओके,
1: एक गाना तो डेडिकेट कर ही दो यार।
0: बिल्कुल, अखिल जी ने इतने प्यार से बोला है, अब तो कर दो, अब कंजूसी मत करना, ठीक है? हाँ, अभी आप कॉल लगा रहे हो ना, चलो लगाओ, अभी गाना सुनते हैं, हम लौट कर आते हैं बस इस प्यारे से गाने के इस बार।

0: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा एक गीत आपने सुना। आँखियों की झरोखियों से मैंने देखा जो सांवरे तुम बड़े पास नजर आए। और सच में जब हम किसी को दिल से याद करते हैं ना आंखें बंद कर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे वो हमारे नज़दीक हैं। अब चाहे आपके दोस्त हों, फैमिली मेम्बर्स हों, या फिर आपका रेडियो जो आपके पास इस समय रखा है आपकी नज़रों के सामने। अखिल सर कह रहे हैं कि अभी हमारे साथ कोई कॉलर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अखिल जी, कौन कनेक्ट हुई हैं हमारे साथ?
1: हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं शमा जी। हेलो फरमाइश, कैसी हैं शमा जी आप? कहाँ से, कौन से, किस जगह से बोल रही हैं आप?
0: हेलो शमा,
1: शमा जी आप भूल गई हैं क्या कॉल करके? आप कहाँ से बोल रहे हैं?

0: नहीं है, किस जगह से?
1: मैं कठुआ से बात कर रही हूँ, रामपुर से।
0: रामपुर से बोल रही हैं, कैसा है वहाँ पे मौसम?
1: मौसम बहुत अच्छा है सर।
0: एकदम बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं।
1: नहीं, गर्म मौसम है।
0: अच्छा, तो आप ठंडा पानी पी रही हैं? क्या करती हैं शमा जी आप? शमा जी आपका नेटवर्क गायब हो रहा है। शमा जी आप क्या करती हैं? तो हमारे श्रोताओं को कुछ सुनाइए ना, हमारे श्रोताओं को कुछ सुनाइए, कुछ भी सुनाइए। आपको
2: कोई, कोई शायरी सुनाइए। आप इतनी प्यारी प्यारी शायरियाँ करती हैं शमा।
1: मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। जैसे कि कल बकरा ईद है, तो मैं खासकर बकरा ईद पे दो लाइन कहना चाहूंगी।
0: क्यों नहीं, बहुत बढ़िया।
1: सर कहते हैं कि जब जब मेरे खुदा की मेहरबानी होगी, जब जब मेरे खुदा की मेहरबानी होगी, हमें इब्राहिम की सुन्नत निभानी होगी। अकार मुझको भी मिल जाए शहीदी का मर्तबा, फिर ईद वो कितनी सुहानी होगी।
0: क्या बात है, क्या बात है। आपको और पूरे परिवार को बकरा ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और हमारी तरफ से भी मुरादाबाद की तरफ से सभी श्रोताओं को ईद की मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और दुआ है रखने के हमारे देश में अमन और सुकून रहे और भाईचारा रहे और आपस में मिलजुल कर हम ईद मनाएं।
0: क्या बात कही, ये तो बहुत ही आपने पते की बात बोली है और बहुत ही अच्छी बात बोली है। तो ये गाना आप सभी को डेडिकेट करना चाहेंगी शमा जी?
1: मैं सारे श्रोताओं को और आपको सर ईद पे कोई भी नगमा चला सकते हैं, मैं सारे श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूंगी।
0: धन्यवाद शमा जी, धन्यवाद। आपसे जल्दी
1: ज्यादा से ज्यादा दो लाइने और कहना चाहूंगी।
0: दो लाइने या चार लाइने? ये दो लाइने, आप दो लाइने बोल के चार लाइने बोल देती हो आप शमा जी। हाँ, अंदाज अपना अपना, अच्छी मूवी थी। आप बताइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतनी सुरीली आवाज और इतनी अच्छी शायरी, मजा आ गया। बहुत ही अच्छा लगा शमा जी, और आपकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो बकर ईद की, और जल्दी ही आशा करते हैं सबसे मुलाकात होगी। क्या आवाज थी खुशी।
2: हाँ, आवाज़ तो बहुत प्यारी है शमा जी की, और उन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है। कहा है कि मैम गाना ये वाला प्ले करिएगा, ईद मुबारक हो।
0: बहुत बढ़िया, तो सभी को आज पूरे मुरादाबाद
2: एडवांस में शुभकामनाएं, ईद की बहुत बहुत मुबारक है आपको। और दोस्तों ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे। अगर आप भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमें तुरंत कॉल लगाइएगा। आप नंबर है 9837898986।

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
6: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
7: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह, घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूँ कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
6: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।
8: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
9: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और कार्यक्रम चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप हमें कॉल कर अपने फेवरेट गाने सुन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप इस ब्यूटीफुल शो में। और मैं कहती हूँ कि देखिए, बिल्कुल भी ना स्किप मत करें कार्यक्रम, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना आपको अलग अलग तरह के गीत संगीत सुनने को मिलते हैं। कभी ऐसे गाने जो हमें हमारी पुरानी यादों में ले जाते हैं, और कुछ ऐसे सॉन्ग भी जो हमें लाइक सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और कुछ ऐसे ट्रैक जो दिल को सुकून दे जाते हैं, और कुछ ऐसे भी गाने जो हमें थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस कार्यक्रम में ना आप भी पार्टिसिपेट करो। उसके लिए आपको बहुत इजी काम करना है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है दोस्तों। अभी आप जो फ़ोन चला रहे हैं ना, हाँ, जो आप अभी फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इसको स्क्रॉल करना बंद करें और आप हमें कॉल करें, नंबर 9837896 और अभी वक्त हुआ है, मैं आपको समय भी बता देती हूँ साथियों। वक्त हुआ है 4:14 और मैं आपके साथ आपकी खुशी। तो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से और जानेंगे कि उनकी क्या फरमाइश है आज यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? शेर सिंह जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: हम बढ़िया।
0: हाँ जी हम भी अच्छे हैं, दुआएं हैं आपकी। आप बताइएगा कैसा मौसम है आपके यहाँ का?
1: बढ़िया मौसम है, निकल
0: ली। अच्छा, धूप बहुत ज्यादा है?
1: हाँ।
0: ओके, तो बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं शेर जी?
1: गाना है दिल पे चलाई छुड़ियां।
0: किसने चलाई है?
1: किसने से गाना बढ़िया लगता है।
0: अच्छा, ये गाना आपको पसंद है? चलिए तो ये खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं। शुक्रिया शेर सिंह जी कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सोनू निगम जी की आवाज में खूबसूरत सा गाना, दिल पे चलाएं छुरियां। हाँ, छुरियां तब चलती हैं दिल पर, पता है कब? जब हम लाइक कॉल लगाते हैं और बहुत नंबर बिजी आता है, तो कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगता है ना कि ओहो नंबर इतना बिजी क्यों आ रहा है। मैं आपसे कहती हूँ कि आप कंटिन्यू ट्राई करेंगे ना, तो शायद नेक्स्ट कॉलर आप ही मेरी शो की बन जाएं। कुछ भी हो सकता है एवरीवन, बस आप ना अपना मेहनत कंटिन्यू करते रहो, कॉल लगाते रहो और हम आपका कॉल रिसीव करेंगे। अभी फिलहाल ये खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और अभी आपने बहुत प्यारा सा गीत एंजॉय किया। जी हाँ, सोनू निगम जी की आवाज़ में। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी आपको भी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं रिजवान जी आप?
1: बहुत अच्छे मैम, आप बताओ आप कैसे हो?
0: हाँ जी, हम भी अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: वैसे अगर कोई पूछता है तो हम बस कह तो देते हैं हम अच्छे हैं। अच्छे तो नहीं है, आपकी तबियत खराब है।
0: अच्छा,
1: पता चला था मुझे।
0: हाँ जी, स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, बट कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए जल्दी से। दवाई तो लिए है अभी, और जब आप सब ही के साथ कनेक्ट होते हैं ना सर, तो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है। कुछ देर पहले 2 बजे के टाइम लग नहीं रहा था कि मैं शो कर पाऊंगी, इतनी वीकनेस, लाइक ऐसा लग रहा था कि कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। लेकिन जैसे ही 3 बजे, पता नहीं क्या हुआ, आवाज़ भी निकल रही है और बातें भी हो रही हैं।
1: अपनी पसंद का काम हम जब करते हैं ना मैम, तो ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है।
0: हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है सर, एग्जैक्टली एंड 101% आपने सही बोला है। जिस काम से हमें प्यार होता है ना, फिर उस काम के लिए ना हमें लाइक कोई भी बहाना नहीं चाहिए होता है, उसमें हम कर ही लेते हैं हर हालत में।
1: जी मैम।
0: जी तो आप बताइएगा, सब खैरियत से हैं आपके यहाँ पर?
1: हाँ सब अच्छे हैं मैम, बहुत ज्यादा बस गर्मी हो रही है, फिर बचे हुए हैं कूलर के सामने लेटे हैं।
0: मेरा भी यही हाल होता है, जब हम घर पर होते हैं तो कूलर के सामने ही होते हैं। हाँ जी, तो आप बताइएगा सर, कल ईद है, आपको बहुत बहुत मुबारक है एडवांस में।
1: जी आपको भी मैम, सारे सुनने वाले दोस्तों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद।
0: जी आपकी क्या फरमाइश है बताइएगा।
1: कौन है शब्बीर कुमार साहब की आवाज में, उसको है दिले बर्बाद कहाँ ले जा।
0: अच्छा, और ये
1: है प्यार क्या है प्यार करेंगे।
0: ओके, और ये खूबसूरत से गीत किन के लिए सुनना चाहते हैं?
1: मैम घर के लोग हैं, मिसेस नाजिया खान, बेटा आरिफ रजा खान, बेटी फायजा नाज।
0: तो चलिए सुनवाते हैं खूबसूरत से गीत, और शुक्रिया आप सुबह में भी एक्टिव होते हैं, फटाफट से अपना मैसेज पहुंचा देते हैं।
1: जी मैम, मैं कार्यक्रम सुबह तो शाम तक सुनते ही रहता हूँ।
0: जी शुक्रिया सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपकी पसंद का।
1: जी धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं टैलेंट ट्रैक प्यार किया है प्यार करेंगे, और इस गीत के बाद हम लौट कर आते हैं। आप कहीं मचाई खुशी आपसे कहते हैं कि आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं। एवरीवन अभी आपके पास मौका है, और इस चांस को मिस मत कीजिए, वरना बहुत कुछ मिस कर देंगे आप। मैं आपसे कहती हूँ कि अभी कॉल लगाओ, नंबर है 9837898986। मैं लौट कर आती हूँ इस खूबसूरत सी गाने के इस पार।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
0: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
0: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
5: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना। इस गाने के लिए एक फरमाइश, एक हमारे लिसनर्स का कॉल आया था एंड आई डोंट नो कैसे उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। तो मैंने कहा चलिए, कॉल डिस्कनेक्ट भले ही हो गया हो लेकिन गाना हम उनका सुनवा देते हैं। और ये गीत बहुत ही प्यारा था एंड कुमार सानू जी की आवाज़ में। अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: हेलो।
0: हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपको?
1: आ रही मैम
0: जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: प्रभात सैनी, मुरादाबाद।
0: जी जी जी, बताइएगा कैसे हैं सर आप?
1: बढ़िया मैम, आपकी दुआएं।
0: जी जी बिल्कुल, दुआएं तो हम सबके लिए करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप बताइएगा क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: आज हमारे गाने की फरमाइश है, बेखुदी में सनम बैठ गए वो कदम, आ गए पासम।
0: ठीक है सर, ये गाना आपको सुनवाते हैं, शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: कुछ नाम लेने चाहते हैं मैम?
0: हाँ जी हाँ जी, बताइएगा।
1: हमारे पिताजी हैं कुमार सिंह।
0: हाँ जी।
1: हमारी लड़की है रिया, हमारा भतीजा है आरफ
0: जी।
1: और कुछ थोड़ा सा शेर सुनाना चाहते हैं मैम?
0: हाँ हाँ बिल्कुल सुनाइएगा।
1: कोई दिल तोड़ के हंसता है, कोई दिल तोड़ के हंसता है, कोई हंस के दिल तोड़ता है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: हमको तो अपना बना के इस रास्ते पे छोड़ता है। ऐसा था पटाखा वो, हमको तो बम बना के फोड़ता।
0: अरे वाह, क्या बात है। आपकी शायरी बहुत अच्छी थी और आपने कॉल किया उसके लिए धन्यवाद आपका सर। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। तो श्रोताओं, आप भी कॉल लगाओ, अभी वक्त आपके पास 20 मिनट्स हैं, तो बिना किसी देरी के आप मुझे कॉल लगा सकते हैं।

0: टूट गए।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
7: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
8: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
9: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: तो बनाएंगे आज हम क्या बनाने वाले हैं एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज शाम को प्रसाद में क्या बनाएं। तो रीना जी क्या बनाने वाली हैं आज, आप बताइए जरा हमारे सभी श्रोताओं को।
1: देखी जाएगी शाम को
0: अच्छा अभी शाम को डिसाइड करेंगे, लाइक अभी शाम नहीं हुई है इनके लिए, समझ रहे हैं आप श्रोताओं।
1: शाम तो हो गई है, 5 बजते ही शाम हो जाती है, पर लगती नहीं है बाहर दोपहर।
0: अरे यार मत पूछो, मैं जब स्टूडियो से घर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 4 ही बजे हैं, लगता नहीं है कि शाम हो गई है, इतनी गर्मी रहती है बाहर। और दोस्तों शो का नाम हेलो फरमाइश है, मैं खुशी आपके साथ, और आज हम दोनों ने डिसाइड किया है मिलकर कि शाम को हम बनाने वाले हैं क्या, ड्राई फ्रूट्स की खीर। और रीना जी कुछ स्पेशल बनाने वाली हैं, वो क्या है दोस्तों वो तो कल मैं आपको बताऊंगी, आज नहीं, क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइज रखना, थोड़ा सा सस्पेंस बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है, है ना। तो हम क्या बनाने वाले हैं, देखो मैंने तो बता दिया मैं बनाने वाली ड्राई फ्रूट्स की खीर, और जिसको भी खाना है वो बता दीजिएगा मुझे आ सकते हैं आप। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश
2: हेलो।
0: हाँ जी मैम,
2: जय श्री राम राधे राधे।
0: जय श्री राम राधे राधे, कैसी हैं आप। नीतू जी इतने दिनों से कहाँ थी आप, हाँ हमें आपसे बहुत सारे गिले हैं, आप इतने दिन बाद क्यों हमसे मिले हैं।
2: अच्छा
0: जाने का मन भी नहीं कर रहा है, इतनी गर्मी है कहीं जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। हम तो ठीक है मैम, आप बताइएगा आपके परिवार में सब ठीक है। हाँ जी ऑल गुड, सब बढ़िया है, मजे में है। आप बताइएगा आज आप इतने इतने हाँ मैम दवाई तो लिए, देखो ना आवाज कैसी हो गई है मेरी, अच्छी नहीं लग रही है मुझे, मुझे जुकाम हो गया है तो आवाज भी बदल गई है, साथ नहीं दे रही है अभी, कह रही है कि मुझे भी रेस्ट चाहिए होता है। खुशी इतना बोलती हो आप, इस बहाने से थोड़ा सा आराम मिल जाएगा मुझे,
2: गर्मी में
0: जुकाम। हाँ सर्दी गर्म का असर हो गया मैम, बिल्कुल सही कहा आपने,
2: exactly
0: right.
2: होता
0: है। हाँ बिल्कुल सेम वही हुआ जो आपने मुझे कहा है अभी, कि गले में दर्द स्टार्टिंग में यही हुआ मेरे को, पर जुकाम हो गया है, सर में दर्द हो रहा है, अभी पूरी बॉडी भी गर्म हो रही है, अब मैं जाऊंगी दोबारा से दवाई लेने।
2: बिल्कुल ध्यान रखो
0: अपना। जी मैम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अब आपने कहा है ना अब और ज्यादा रखेंगे।
2: बिल्कुल आप हमसे बोलते रहते हो ना कि ना मैं ये करो गर्मी के लिए, ये करो वो करो, ये हम सुनते रहते हैं और करते भी रहते हैं।
0: मैम बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। एक सर हाँ मैम अभी मुझे याद आया, मैं दोपहर में दवाई लेने के लिए गई थी डॉक्टर की शॉप पर, तो एक अंकल मेरे को मिले जो रेडियो सुनते हैं सर, तो उन्होंने बोला कि आप सबको सबका स्वास्थ्य ठीक रखती हैं, लेकिन आज आपके स्वास्थ्य को क्या हुआ मैम। तो मैंने कहा सर मैं इंसान हूँ, मेरे को भी हो जाता है। एक्चुअली अभी हम पहाड़ों पर घूमने के लिए गए थे मैम, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, मैं वहाँ पर मैंने गर्मी में स्नान कर लिया, तो इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। उसी का असर है जी मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहती हैं।
2: गाना है
0: ओ हो, अब तो हमने संभाल के रख लिया है आपका दिल, अब नहीं देंगे हम।
2: बिल्कुल
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारा दिल आपके लिए है और आपका दिल हमारे लिए है, तो
2: हम ले चुके हैं आपका दिल।
0: अच्छा ले लिया है आपने, ओहो तभी मैं बोलूं। अच्छा तभी नीतू जी की हमें इतनी याद आती है, अब समझ में आया मुझे, थैंक यू जी। मैम नहीं नहीं नहीं आपका जो अंदाज है ना, जय श्री राम मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम मिस भी करते हैं आपको। जी थैंक यू सो मच मैम, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा अपना। ऐसा ही होना चाहिए, जिस चीज से हमें प्यार हो जाता है ना मैम, फिर हम रह नहीं पाते उसके बिना। और रेडियो से आप इतना प्यार करती हैं, जब सुबह आपकी आंखें खुलती हैं तो आप पहले रेडियो ही ऑन करती हैं, है ना। हाँ, सुबह सुबह भजन से शुरुआत आपकी होती है, कैसा लगता है आपको, अच्छा लगता है ना। तो चलिए अभी खूबसूरत से गीत आपको सुनवाते हैं, आपने कॉल किया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, ये तो नीतू जी थी, बहुत स्वीट लिसनर हमारे और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती हैं, और मैं अभी अपनी बातों को यहीं पर विराम देती हूँ। आपसे मेरी मुलाकात होगी कल सुबह 10 से 12, तब तक के लिए श्रोताओं रखिएगा अपना ख्याल और अपनों का भी, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और खुशी अपना आपसे कहती है कि इस गर्मी में कुछ ठंडा बनाकर पीजिए, खाइए एंड अपनी फैमिली को भी खिलाइए, क्योंकि अभी समर सीजन है, छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, तो कुछ स्पेशल तो होना चाहिए, क्यों दोस्तों। शाम में, सुबह में तो इतना लाइक सब बिजी होते हैं, लेकिन शाम का समय ऐसा होता है जब सब लोग साथ होते हैं, तो कुछ स्पेशल बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए हर पल को, क्योंकि हर पल बहुत खूबसूरत है हमारा, और जब हर पल खूबसूरत होता है तो ज़िंदगी भी ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो ही जाती है। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।

0: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, ऑपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
9: कॉल 8826213131।
10: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
11: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
12: नमस्कार मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ मुरादाबाद, और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अखिल, और मेरे साथ है प्राची। प्राची कैसे हो आप?
13: मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिसनर्स भी बढ़िया होंगे।
12: आज ये शो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पर डायरेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है।
13: हाँ अखिल, जैसे कुछ लोग जिम ज्वाइन तो करते हैं पर सिर्फ सेल्फी के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं।
12: बिल्कुल सही बात, और कुछ लोग करियर चूज करते हैं सिर्फ चाचा जी के कहने पर अपने।
14: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें, जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह, घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारी गण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
15: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात में। एक और खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। आपने ट्यूनिंग किया है आपके शहर का पहला अमेजिंग रेडियो स्टेशन, जो गाने नहीं बजाता है, आपके लिए काम की बातें भी लेकर आता है। और आज जो ये पूरे फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। सो डोंट फॉरगेट, पूरा सुनिएगा, बिकॉज आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है बड़े कमाल के शख्स मौजूद है। तो सर का जो है, आइए जरा आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ श्री प्रदीप कुमार सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ मुरादाबाद से मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू FM मुरादाबाद। कैसे हैं आप?
16: अच्छे हैं
15: जी। सर आप अच्छे हैं, आप बहुत फैंटास्टिक हैं। आपको कैसे लग रहा है स्टूडियो में आके, पहले ये बताइए।
16: बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें सबसे बड़ी खुशी है
15: जी
16: कि हमारी बातें आम जन तक बहुत ही आसानी से
15: रेडियो के माध्यम से
16: पहुँचा सकते हैं, जो कि शायद आज के परिवेश में बहुत ही जरूरी है।
15: क्या बात है सर। मेरा जो सबसे मेरा क्वेश्चन आपसे होगा वो हीट वेव के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो हीट वेव आपदा बेसिकली क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वाले जो लिसनर्स हैं उनको बताइए।
16: देखिए ऐसा है कि हीट वेव आपदा जो है
15: जी,
16: ये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा की श्रेणी में आता है। हमारे पास बेसिकली कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं, केंद्र सरकार के तहत होती हैं, उनको हम प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होती हैं, और जो स्थानीय परिस्थितियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा होती है उसमें जो राहत है वो राज्य सरकार के एसटीआरएफ फंड से रिलीज किया जाता है। तो ये हीट वेव भी जो है स्थानीय आपदा के तहत आता है और इसमें जिला प्रशासन समन्वित रूप से कार्रवाई करता है और उसके हिसाब से हम कार्य योजना बना के उस पर काम करते हैं।
15: वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर मैं अगर बात करूं इसी में, एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आपदा के समय जिला प्रशासन कैसे काम करता है, जरा ये बताइए।
16: इसके लिए ये है कि एक डीएम एक्ट 2005 है, उसके तहत डीडीएमए का गठन किया गया है जिला में, जिसके अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय होते हैं और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी हैं वो सदस्य होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी सदस्य होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी जी सदस्य होते हैं, इसके साथ एक वरिष्ठ एक्शन जो होंगे वो सदस्य होते हैं, और इस तरह से जब कोई भी आपदा आती है तो उस पे पूरे जिला प्रशासन को इंटीग्रेटेड रूप से काम करना होता है।
15: अच्छा ओके सर। सर जैसे हीट वेव एक बहुत ही गंभीर विषय है, जैसे अभी आपने बताया भी, ऐसे में बहुत सारे अग्निकांड भी हम सुनते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो ये जो अग्निकांड होते हैं जैसे कहीं पे आग लग जाना एकदम से, ये आपदाई होती है सर, तो ऐसे में इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए सर।
16: क्या आपदा के बेसिकली हम अगर बात करें एक समन्वित रूप से
15: जी,
16: तो हम लोग तीन स्टेप पे इस पे काम करते हैं। एक होता है कि आपदा के पहले, एक होता है आपदा के दौरान और एक होता है आपदा के बाद। ये तीन तरह की कार्रवाइयां होती हैं। तो जब आपदा के पहले होता है उसको हम लोग प्रिपेयर्स फेज बोलते हैं।
15: right.
16: और उसमें क्या होता है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जैसे अभी आपने कहा हीट वेव का सीजन अभी अप्रैल शुरू हो रहा है,
15: 100%.
16: लेकिन जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हम लोगों ने इसकी तैयारी फरवरी से ही शुरू कर दी। तो फरवरी में सर के निर्देश पे, सर की अध्यक्षता में जिला स्तर पे एक बैठक की गई जिसमें सभी जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय सारे अधिकारी वहाँ पे सर के निर्देशन में मीटिंग होती है, उनको कार्रवाई के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित कर दिया जाता है कि कौन किस जिम्मेदारी को किस तरह से तैयारी करके निभाएगा। अब जैसे आपने अग्निकांड की बात की, तो ये बेसिकली जैसे जो हमारी फायर सर्विस होती है उनको सेंसिटाइज किया जाता है, वो उनका जो एक्शन है वो ये होता है कि अगर कहीं अग्निकांड की घटना हो रही है तो पहले तो जिला प्रशासन ये प्रयास करता है कि प्रचार प्रसार से हम लोगों को जागरूक करें कि अग्निकांड की घटनाएं हो ही ना जिससे कि लॉस हो। तो एक तो हमारी पहले इसलिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जैसे आज भी हम हैं यहाँ पे, कि अग्निकांड से लोग कैसे बचें, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे जागरूकता के विषय होते हैं कि भाई हम छोटी छोटी सावधानी, जैसे हम आपको बताएं कि जैसे मोस्टली आप सुनते होंगे कि जो अग्निकांड की घटनाएं होती है वो शॉर्ट सर्किट से होती है, शॉर्ट सर्किट से, जैसे कि कहीं ट्रांसफार्मर में दिक्कत है उसकी वजह से आग लग गई, कहीं हमारे वायर जो है घरेलू वायर ढीले हैं वहां से आग लग गई, तो और कुछ आजकल देखे जा रहे हैं सिलेंडर की लापरवाही, पुराने सिलेंडर हैं उनकी डेट नहीं देखी गई, वो ब्लास्ट हुआ उससे घटनाएं हो जा रही।
15: बिल्कुल।
16: तो इसके लिए एक ड्राइव होता है कि लोग जागरूक रहें और फायर सर्विस रेगुलर बेस पे जागरूकता अभियान इसके लिए चलाते रहते हैं कि लोग जागरूक रहें, अग्निकांड से बचाव हो, अगर अग्निकांड की घटना हो रही है तो तत्काल आप उनके जो टोल फ्री नंबर है उस पे आप सूचना दे सकते हैं, और उससे ये रहता है कि हम लोगों का ये निर्देश रहता है कि जितनी जल्दी हमारी फायर की गाड़ियां वहां घटना स्थल पे पहुंचेंगी उतनी जल्दी हम आग को काबू पा लेंगे। इसके साथ में हम लोग ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी, जैसे अग्नि मित्र जो है उसको भी ये माना जाता है कि समुदाय हमारा प्रथम रिस्पॉन्डर होता है, तो अग्नि मित्र हैं, आपदा मित्र हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं
15: जी।
16: तो ये जो नजदीकी जहां भी ऐसी घटना हो रही तो उन लोगों को भी ये सेंसिटाइज किया जाता है कि आप मौके पे पहुंच करके और आग को बुझाने का काम करें। तो ये एक पूरा सिस्टम मिलके काम करता है पब्लिक के साथ।
15: सर अभी आपने जैसे इस पूरी जानकारी में टोल फ्री नंबर का भी जिक्र किया, जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, तो वो नंबर अगर किसी को डायल करना है तो वो कौन से नंबर होते हैं?
16: जैसे हमारा आपदा का ये 1077 1077 है, जो जिला आपदा कंट्रोल रूम है, कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में, वहाँ का नंबर है। कोई भी आदमी 24 आवर कभी भी अगर कॉल करेगा तो वहाँ पे कॉल तुरंत पिक होगी और संबंधित विभाग को उसको तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी। जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा।
15: बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर और काफी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, आपदाओं की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने अग्निकांड का जिक्र किया, वहीं से अगर मैं बात करूं किसानों के लिए, तो किसानों की फसल जो है वो अपनी फसल को कैसे सेफ रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि कहने के उनके लिए भी बहुत लॉस वाली बात हो जाती है अगर हम अग्निकांड की बात कर रहे हैं तो। यहाँ
16: देखिए इस विषय में एक छोटा सा बहुत सारा जो देखा गया है, एक सबसे ज्यादा विषय ये आ रहा है कि अक्सर करके जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उस ज्यादातर देखा जाता है कि किसान जब फसल बो रहे होते हैं तो ट्रांसफार्मर के आसपास भी वो फसल लगाए हुए होते हैं। तो इसमें एक सावधानी का ये लेवल बहुत जरूरी होता है कि कम से कम हम 5 से 10 मीटर के दायरे में कोई फसल वहाँ पे ना रखें, क्योंकि है क्या, आप मान लीजिए कि आपने 10 बीघा गेहूं लगा रखा है और आपने 5 मीटर के दायरे को छोड़ रखा है, तो आपने 10 बीघा गेहूं को जोखिम से बचा रखा है, पहली चीज। तो ये तो हमारे किसानों के लिए सुझाव रहेगा कि वो कम से कम जहां भी इस तरह का ट्रांसफार्मर है तो वहां के 4-5 मीटर के दायरे में कम से कम फसल को ना रखें, उस एरिया को खाली छोड़ दें। और बिजली विभाग के लिए निर्देश जाता है जिला प्रशासन से कि आप जो ट्रांसफार्मर है और उसकी पोजीशनिंग जो है उसका मेंटेनेंस सही रखें, तार ढीले ना रहें, उसके फ्यूज सही रखें। पब्लिक के लिए रहता है खेतों में हो या घर में हो, अक्सर करके हम देखते हैं कि अपने सांस औकत पे और अपनी जरूरतों पे हम ज्यादा व्यय कर लेते हैं, लेकिन जहां इस तरह की बात आती है तो वहां पे जैसे जो घर की वायरिंग है उसको सिस्टमेटिक वे में अच्छे तार डाले जाएं, उसको प्रॉपर चेक कराते रहें, ढीले तार ना रखे जाएं, कटिया बचाने लगाने से बचें, जगह जगह खुले तार हम लोग लगा लेते हैं और जैसे तैसे काम चलाते हैं, ये कभी कभी हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है।
15: बिल्कुल बिल्कुल, और अक्सर हम वही चीज अवॉइड कर देते हैं
16: जी।
15: सो दोस्तों आपको ये चीजें बहुत ध्यान से सुननी है और बहुत काम की चीजें। सर अगर मैं बात करूं वहीं जो लोग पशुपालन करते हैं तो ऐसे में पशुओं का बचाव कैसे कर सकते हैं वो लोग?
16: देखिए पशुओं की बात अगर की जाए तो ये माना जाता है कि पशु जो है वो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं उनके एसेट्स भी होते हैं और वो उससे जुड़े भी होते हैं।
15: करेक्ट।
16: तो जैसे ही हमारा मानव जीवन इस हीट वेव की गर्मी से, भयंकर लू से प्रभावित होता है, वैसे पशु भी इससे अछूते नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें बदलते परिवेश में ये ध्यान रखना होगा कि पशुओं को जहां तहां छुट्टा ऐसे ना छोड़े, बल्कि वो आज के समय में आपकी एसेट्स हैं, आप उनको वैसे ही ध्यान रखें जैसे इंसानों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि उनको बंद जगह में जैसे टीन सेट वगैरह है या टाट के बोरे वगैरह से कवर कर ले एरिया को, पानी वगैरह का छींटा मारे, 1-2 बार उनको नहलाते रहें, और खास करके जो सुबह का 10 से 4 बजे का समय उस दौरान पशुओं को बिल्कुल भी बाहर न रखें। और अगर आपको लगता है कि पशु ने खाना छोड़ दिया है, चारा राल वगैरह गिर रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा छूने से पता लग सकता है, तो आप नजदीकी जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशु चिकित्सा केंद्र नजदीकी हैं, वहाँ पे आप संपर्क करके उनको वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।
15: बहुत बढ़िया। अच्छा सर जैसे आम पब्लिक आपको सुन रही है, आम जनता, अगर वो कोई आपकी टीम से कनेक्ट होना चाहे या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या कोई अगर इस तरह की आपदाएं उनके आसपास उन्हें देखने को मिलती है तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अभी आपने एक तो नंबर भी बताया, मुझे याद है अभी हेल्पलाइन नंबर आपने बताया, इसके अलावा वो और कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
16: देखिए आपदा के लिए अगर हम बात करें तो हमारे जो तहसील में नोडल होते हैं
15: जी जी,
16: ये संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय जो होते हैं वो वहाँ संबंधित तहसील के नोडल होते हैं आपदा के मामले में, चाहे हीट वेव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे फसल क्षति हो, जो भी हो, तो उसके वो नोडल होते हैं, साथ में तहसीलदार महोदय भी होते हैं। तो ये लोग कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो आप वहाँ पे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसके हिसाब से वहाँ पे तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
15: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर हम छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं जो पेरेंट्स को रखनी चाहिए ध्यान में?
16: देखिए सबसे पहले तो एक बात मैं यही कहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा कि खाने पीने के मामले में ध्यान रखना होगा हमें। हम अक्सर करके जो हमारा फास्ट फूड का ये सिस्टम आजकल जो चल रहा संस्कृति, इससे तो हमें निजात पाना चाहिए। साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी खाना दीजिए वो ताजा दीजिए और लिक्विड डाइट की मात्रा बढ़ा दी जाए बच्चों में। साथ में हम ये देखते हैं कि अक्सर करके देख लेते हैं कि वो जैसे ज्यादा जो नुकसानदायक चीजें हैं उसमें बच्चों का भी इंटरेस्ट रहता है, तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। और ये देखते रहें कि अगर टेम्परेचर उनका ज्यादा है, बच्चों का बुखार ज्यादा है, तो आप जिस तरह से उनको स्कूल भेजते हैं, साथ में आप हेल्थ केयर सेंटर भी तत्काल दिखा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें, डॉक्टर की सलाह से जो है इलाज करें। हाँ, ये है कि अगर वोमिटिंग जैसी शिकायत है और अगर उसको लूज मोशन हो रहा है तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाएं। और साथ में ये है कि अगर आप उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले रहा है, तो रूरल एरियाज में अक्सर देखा गया है कि आदमी उसको बहुत कैजुअल ले लेता है, नॉर्मल ले लेता है, और ये जो ये आपकी जो झाड़ फूंक है या बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों में, कोई बोलता है कि दांत निकल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, या और सारे बहुत सारे कारण होते हैं, लोग मान के उसको अवॉइड करते हैं। तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो चूंकि एक्टिव भी रहते हैं, तो ऐसे में एक समय तक बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब हेल्थ अंदर से इशू का होता है तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए तत्काल उनको कम से कम, अगर हम बात करें कि उनको वोमिटिंग हो रही है या लूज मोशन हो रहा है, तो कम से कम चीनी, नमक और पानी जो कि हर जगह उपलब्ध है, साफ पानी गुनगुना कर लें, फिर ठंडा कर लें उसको, और उसमें थोड़ा चीनी नमक डाल के जरूर पिलाते रहें थोड़ा थोड़ा, और जहां नजदीकी हॉस्पिटल है वहां दिखा लें।
15: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आपदा के समय में जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है, अगर मैं आपसे जानना चाहूं।
16: देखिए, मैंने जागरूकता के स्तर पे तो आपको बता ही दिया, अब इसके साथ कार्रवाई के स्तर पे अगर हम बात करें, हीट वेव की जैसे स्थिति होती है उसके पहले ही हम लोग क्या करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पानी। तो पानी के आपूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी तहसीलों में और खास करके नगर निगम एरिया में प्याऊ सेंटर होते हैं, जिनको आप जैसे परमानेंट कुछ लगाए गए हैं जिसको वाटर कूलर, ठंडा पानी की आपूर्ति हो सके। अभी वर्तमान में अगर बात करें हमारे, तो मुरादाबाद में 53 जो है वो परमानेंट वाटर कूलर लगे हुए हैं, उनका मेंटेनेंस भी हम लोग करा लेते हैं, कुछ कुछ खराब हो जाते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया भी चल रही मेंटेनेंस कराने की। साथ में अस्थाई प्याऊ सेल्टर भी हम लोग लगाते हैं, जिससे कि पानी की आपूर्ति, और इसके साथ साथ नगर निगम के द्वारा जो है टैंकर्स जो पानी के होते हैं उससे भी सप्लाई की जाती है, जगह जगह पानी की आपूर्ति की जाती है, और जलकल विभाग, जल निगम ये भी आपूर्ति सुनिश्चित कराता रहता है। इसके लिए निर्देश है कि पानी की आपूर्ति कहीं भी बाधित ना हो। साथ में ये होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो अस्थाई सेल्टर की बात की जाती है, जैसे आपके मजदूर वर्ग हैं, ये ठेला वाले हैं, साथ में जो आपके ये ई रिक्शा वाले हैं, तो कहीं कहीं जगह में आप देखते होंगे कि अगर हरे पेड़ नहीं है, छावदार वृक्ष नहीं है, बहुत खुला, बहुत बड़ा चौराहा, हीट आइलैंड जिसको बोलते हैं, खुली जगह है, जाम लग गया है, तो वहां पे क्या है कि आसपास कोई ऐसा हम अस्थाई सेल्टर भी बनाते हैं टेंट तंबू से, जहां कूलर वगैरह की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, फर्स्ट एड किट होती है, डॉक्टर्स की टीम होती है, इसका भी योजना में शामिल किया जाता है, एम्बुलेंस वगैरह की, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है या किसी को वैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम वहां पे वो आराम कर ले और को मेडिकेशन दिया जा सके। तो ये भी कार्रवाई हमारे स्तर से होती है, और तहसीलों को भी निर्देश दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में खास करके आपने देखा होगा कि तालाब वगैरह बहुत सारे सूख जाते हैं गर्मी में, तो उसको रिचार्ज करने के लिए पानी वैकल्पिक साधनों से उसमें पानी भर दिया जाता है कि पशुओं को भी पानी पीने, मतलब पानी की उपलब्धता रहे। तो ये भी कार्रवाइयां वहां पे पैरेलल चलती रहती है। हां, एक चीज और हमारा कहना है कि आपदा में आप सावधान रहें और जागरूक रहें। साथ में ये है कि अगर आपदा से नुकसान होता है, जैसे हम बात करें जनहानि की, तो जनहानि में सरकार राह देने का कि उसका जो परिवार है वो हम उस किसी के जीवन को वापस तो नहीं ला सकते हैं, अगर किसी की जनहानि हो गई, आपदा से किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन सरकार का प्रावधान है कि 4 लाख रुपए की हम आर्थिक सहायता उसको देते हैं। लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि लोग एक नियम होता है पोस्टमार्टम कराने का, तभी हमको कॉज ऑफ डेथ पता लगता कि किस कारण से डेथ हुई है, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, प्रावधान है। अब उसमें लोग थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं उस समय और अक्सर करके पोस्टमार्टम नहीं कराते, तो ऐसे में उनको राहत देने की कोशिश करते हुए हम चाहते हैं कि तुरंत राहत दे दे, लेकिन जब इस प्रक्रिया से वो लिख के देते थे कि नहीं नहीं मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा, मुझे सहायता नहीं चाहिए, तो ऐसे में जिला प्रशासन बहुत कोशिश करता, काउंसलिंग करता, लेकिन फिर ऐसे में हम नहीं दे पाते तो हमें कष्ट होता है। साथ में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई घायल हुआ है, कोई कहीं भर्ती हुआ है, तो उसका भी प्रावधान है, अगर 7 दिन से अधिक कोई किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है तो हम उसको 16,000 रुपए तक का राशि देते हैं के इलाज में जो व्यय होता है, और अगर 7 दिन से कम रहा है तो उसको 5400 रुपए की सहायता दी जाती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो भर्ती हो, प्रॉपर प्रक्रिया में तहसील में सूचना दे, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन इन चीजों की जागरूकता लोगों तक होनी चाहिए,
15: बिल्कुल,
16: और उसके लिए प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
15: बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी। जी आप आए, आपने तमाम जानकारियां दी हमारे सुनने वालों को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जाते जाते मैं बस कुछ और सवाल है जो आपसे पूछना चाहूंगा। पहले तो यही, जो महिलाएं किचन में खाना बनाती हैं उन्हें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अचानक से अग्निकांड में जो है कई सारी गाड़ियों को भी हम देखते हैं, अचानक से गाड़ियों में आग लग जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हम देखते हैं, तो उसके में आपका क्या कहना है?
16: देखिए इसमें दो चीजें मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि सावधानी ही बचाव है।
15: बिल्कुल।
16: और हम आपको इस विषय में थोड़ा सा बहुत ही स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम मॉड्यूलर किचन बना लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने किचन में भी जाके देखें कि क्या वहाँ फायर डिस्टिंग्विशर है, तो शायद लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो छोटे फायर डिस्टिंग्विशर जो किचन में रखे जा सकते हैं, या दो बकेट पानी या बालू की बाल्टी, ये सब रखी जा सकती है। तो जो, और अक्सर करके देखिए कि बहुत सारे वैसे ज्वलनशील सामान जो किचन में रहते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, तो इन सब चीजों पे हमके जागरूक होने की जरूरत है कि कम से कम अपने किचन को जैसे हम मॉडिफाई करके रखते हैं, तो साथ में सेफ्टी मेजर्स भी रखें। फायर डिस्टिंग्विशर के छोटे आते हैं उसमें, जो सेफ्टी की आप तुरंत उनसे आग को काबू कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ में ये है कि मॉक ड्रिल कराई जाती है, उसमें प्रैक्टिस करें, और पानी की बाल्टी वगैरह रखें गर्मी के दिनों में खास करके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी माताओं बहनों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपा करके आप खाने का जो बनाने का टाइम है वो चेंज कर लें। सुबह 8 बजे से पहले खाना बना लें, और शाम को 4 बजे या 5 बजे के बाद, शाम में देर रात को खाना बनाएं, दोपहर में खाना ना बनाएं। इसके साथ एक चीज और, ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि हम लापरवाही करते हैं, जो आग वगैरह है कहीं भी चलते हुए छोड़ देते हैं, और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम उसका भी ध्यान रखें, जो भी आग है उसको बुझा दे ठीक से, जिससे कि कोई भी वैसी घटना ना हो।
15: जी सर, बहुत अच्छा लगा आपने तमाम जानकारी दी।
16: और मैं दूसरी बात, जहाँ तक गाड़ियों का है, तो गाड़ी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि एक तो दो तीन चीजें इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप गाड़ियों में भी जैसे वायरिंग वगैरह होती है, गाड़ी का इंजन होता है, प्रॉपर सर्विस कराइए, वायरिंग मेंटेन रखिए। और एक छोटे से उसमें भी ये एसओपी है कि आप छोटा डिस्टिंग्विशर आता है उसको आप गाड़ियों में, फायर डिस्टिंग्विशर रहने से उसको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है, उसकी मॉडल भी कराई जाती है, तो वो कम से कम ये रहेगा कि आग लगती है जब तक आप इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं कैसे आग को बुझाएं, तब तक वो बड़ा स्वरूप कर लेती है। एक आमजन को हम और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आम पब्लिक को भी, कि आप अक्सर करके देखते होंगे बहुत लोग इस तरह से नासमझी करते हैं, हालांकि ये मना भी है, कि आप कोई भी ज्वलनशील जैसे चाहे ये पेट्रोल वगैरह है, ये कभी भी गर्मी के दिनों में इसको डिब्बे में लेने की कोशिश ना करें, ना या डिब्बे में ले करके ना जाएं, क्योंकि ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि कब ये जानलेवा बन जाए। गाड़ी में कभी भी डिब्बे में आप पेट्रोल लेके उस तरह का ज्वलनशील सामान लेके ना चलें, कृपा करके बचाएं। और गर्मी के दिनों में बच्चों को गाड़ियों में बंद करके ना छोड़ें, ये मेरी अपील है, बच्चों को लेके सेंसिटाइज रहें। घर में कहीं अगर आग है, कहीं खाना बन रहा है, तो आसपास छोटे बच्चों को ना छोड़ें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये सब ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जबकि बच्चों में गाड़ी में बच्चे को बंद कर दिया गया, गर्मी का दिन है, वो सफोकेशन से उसको जो है दिक्कत हो गई। तो ये सब थोड़े थोड़े ऐसे उपाय हैं कि हम बचाव कर सकते हैं, और इनका ध्यान रखना चाहिए, और हम सबकी जिम्मेदारी। साथ में एक बहुत बड़ी अपील मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा, जो कि सरकारी अभी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, कि दो चीजें देखने को मिली हैं, कि जैसे ग्रामीण इलाकों में जो चूंकि वेजिटेशन ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है, तो वहां पे गर्मी का इफेक्ट कम देखते हैं, लेकिन शहरी इलाके में क्या होता है, चूंकि बिल्डिंगें बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं, तो एयर का जो वेंटिलेशन है वो उस प्रॉपर हो नहीं पाता है, साथ में हमारे ग्रीन कवर भी कम है, तो ऐसे में हमको ये सोचना होगा, ऑक्सीजन भी हमारे लिए जरूरी है, तो अगर हम सब इसको जिम्मेदारी को समझें, तो हमारा घर भी अच्छा होगा, कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला अपने परिवार के गार्जियन से आपस में एक दूसरे से, जैसे बहुत सारे होते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं और हम जो है आपके शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट की बात करते हैं, हम चाहेंगे कि बच्चे ये गिफ्ट मांगे अपने पेरेंट्स से कि हमको 10 गमले घर पे पेड़ के लगाने हैं, महिलाएं अपने हस्बैंड से मांगे कि 10 पेड़ घर में लगाने हैं, जो आप छत पे सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन जनरेशन तो होगा ही, और साथ में क्या है कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा फेयर होगा, अच्छा होगा और मेंटेन होगा। अब आप समझिए, अगर 1 लाख घर मुरादाबाद शहर में मैं मान लूं हाउस होल्ड, तो अगर 10 पौधा हर घर लगाए अपनी जिम्मेदारी समझ के, तो 10 लाख पौधे को वो देख भी सकते हैं, उसका प्रॉपर केयर कर सकते हैं और ऑक्सीजन जनरेशन का आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज और देखी गई है कि जो छत होती है, छत आप भी जानते हैं कि जितना काला होता है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है।
15: करेक्ट।
16: तो और व्हाइट शर्ट पहनने के लिए, लूज कपड़े पहनने के लिए भी हम लोग जागरूक करते हैं कि लोग लूज कपड़े पहने, व्हाइट शर्ट पहने, तो क्या है कि एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती, वापस चली जाती एनवायरमेंट में। तो अगर छतों को, छत के ऊपर सिरे को व्हाइट करने के लिए रूफ टॉप हम लोग बोलते हैं, कि आप पूरे घर को बहुत पेंट कराते हो, और होता क्या है कि अगर छत को आप व्हाइट करा दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आप अपने घर का टेम्परेचर 2 से 4 अंश सेल्सियस तक कम कर सकते। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर 4000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट आपकी छत है और उसके टेम्परेचर को हम 2 से 4 अंश सेल्सियस कम कर देंगे, तो उसका एक परिणाम ये भी होगा कि आपको एसी कम चलानी पड़ेगी, ये भी हो सकता है, और घर का टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। तो ये मेरी अपील है कि रूफ टॉप के तहत लोग अपनी छत के ऊपरी वाले सिरे को भी व्हाइट पेंट से ये पेंट कराएं। हालांकि सरकारी भवनों को पेंट कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के द्वारा निर्देश चले गए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, और 10.5 लाख स्क्वायर फीट छत हम लोगों ने चिन्हित की सरकारी भवनों की, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग के हैं, ब्लॉक्स के हैं, फायर सर्विस के, थानों के हैं, और जो सरकारी भवन है उनके हैं, जिसपे हमने अभी लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट छतें हमारी व्हाइट रूफ टॉप हो गई हैं, जिससे कि हम इस जो हमारी गर्मी है इसको रिफ्लेक्ट करके वापस कर सकें, एनवायरमेंट को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें।
15: सर बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला, इतना महत्वपूर्ण समय हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, और सबसे अच्छी बात आपने जो गमलों का एडवाइस दिया ना, ये बड़ा अल्टीमेट था, बड़ा यूनिक था, और साथ में आपने बताया कि छत को हम कैसे व्हाइट पेंट करा के गर्मी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब एसी कम चलेगी तो बिल भी कम आएंगे, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो जाते जाते तमाम लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई एक मैसेज, कोई एक संदेश?
16: संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के साथ पूरी जिला प्रशासन टीम आपके सेहत स्वास्थ्य को लेके बहुत ही संवेदनशील हैं, और सरकार स्पष्ट निर्देश है कि लोगों को जागरूक करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए, उनसे अनुरोध करिए। तो जिला प्रशासन की तरफ से, सर की तरफ से आप सबसे पुनः यह अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गर्मी के दिनों में दोपहर में घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकले, और बहुत सारे जो उपायों पे बात की गई इसका ध्यान रखें, आपकी सेहत ही हमारी संपत्ति है। धन्यवाद।
15: थैंक यू सर। आप सुन रहे थे FM मुरादाबाद 89.6 विद RJ आनंद। फिर मिलते हैं किसी और नए कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, रेडियो की सुई बिल्कुल घुमाइएगा नहीं। स्टेडियम
10: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
11: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
15: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
15: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
11: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। और समय की बात करूँ तो देखिए समय हो चुका है, यानी कि 5:29 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, यानी कि आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है ढेर सारी बातें करने के लिए। यानी कि शाम के 7 बजे तक आप सभी के साथ हम कनेक्ट रहेंगे श्रोताओं। सो आप अभी ट्रैफिक में हैं, ऑफिस से निकल चुके हैं तो अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की बोतल भी अपने साथ रखिए, क्योंकि पानी की बोतल अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें घर जाते समय, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि ऑफिस से हर कोई निकला हुआ होता है और इस टाइम आपको ट्रैफिक जाम मिल ही सकता है। चाहे कितना कोशिश करिए कि बस हम जल्दी चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हम जितना सोचते हैं कि जल्दी चले जाएंगे उतना ही हम लेट पहुंचते हैं। तो बस इसमें ये होता है कि अपना बस पेशेंस लेवल ना बना के रखना होता है, उसके बाद आप आसानी से अपने घर जा सकते हैं। याद रखिए, हॉर्न के साथ साथ धैर्य भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने सफ़र की तरफ निकलिए कूल मूड के साथ, क्योंकि आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है और सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए जी, फाइनली एक बहुत ही प्यारा गाना, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद। We'll be right back.

0: बहन के सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। इवनिंग मस्ती शो में आज रीना के साथ अब कनेक्ट है। समय की बात करूँ तो 5:35 हो चुके हैं और एक बहुत ही ज़रूरी खास अपडेट आप सभी के लिए, जो कि हमें ना लगता है कि अब ये चीज़ बन गई है तो बस हर सुविधा है वो आसान हो चुकी है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन क्या दिक्कत परेशानी आने वाली मैं बताती हूँ आपको। यानी कि आजकल हम सबके पास आयुष्मान कार्ड तो है ना, लेकिन क्या हमें इसके नियम से पता, यानी कि इसके बारे में सही नियम पता है? कई लोग सोचते हैं कि कार्ड बन गया है मतलब हर इलाज बिल्कुल फ्री होगा, लेकिन ऐसा पूरी तरह सच नहीं है। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज तभी मिलता है जब मरीज अस्पताल में भर्ती यानी एडमिट हो या वही ओडी फीस, सामान्य ब्लड टेस्ट, एक्सरे, दवाइयाँ या कुछ खास इलाज का खर्चा आपको खुद उठाना पड़ता है। और जो मतलब जो एडमिट होते हैं काफ़ी दिन तक, उनको यानी कि फ्री जो पैसे आएंगे वो कट जाते हैं, बाकी तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा जी। और सबसे ज़रूरी बात यह है, कार्ड सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में मान्यता होता है जो सरकार के पैनल में

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं शो में। समय की बात करूं तो 5:45 हो चुके हैं और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर। जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि कल है बकरीद। तो अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं और लंबे समय से ताजमहल देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए ये शानदार मौका है। अब आप ये शानदार मौका कैसे, अरे बताती हूँ। बकरीद के खास मौके पर अगर आगरा के ताजमहल आप जाना चाहते हैं, तो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पर्यटकों के लिए, यानी कि जो भी घूमने जाएंगे उनके लिए फ्री एंट्री है। कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इस दौरान आप दुनिया के खूबसूरत निशानी का दीदार कर सकते हैं, ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। चाहे आप भारतीय हो चाहे विदेशी हो, एनीवे कोई भी जा सकते हैं, उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। हालांकि मुख्य मकबरे में प्रवेश के लिए अतिरिक्त टिकट्स पहले से ही लागू हैं, यानी कि उसके लिए आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अदरवाइज आपको फ्री एंट्री मिलने वाली है। आप आराम से घूम सकते हैं, रील बना सकते हैं, फोटोज खींच सकते हैं। आजकल का तो ट्रेंड है भैया, कहीं भी जाओ घूमने के लिए बस रील बना लो कि हम यहाँ पर घूमने आए हैं, और साथ ही साथ हम अपडेट भी कर देते हैं कि आज मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। तो ये आप सभी के लिए बहुत प्यारा मौका है। रील बनाना चाह रहे, सोच रहे थे पहले से यार ताजमहल चलते हैं, वहाँ रील बना कर लाते हैं, तो आपको कल का जो 28 तारीख है आप एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि फ्री एंट्री मिल रही है। तो आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, बच्चों के साथ घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ताजमहल ये सुबह यादगार बना सकती है आप सभी के लिए। तो ध्यान रहे, भीड़ ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए समय से पहले पहुँच कर एंजॉय करिए। और यूँ ही सुनते रहिए आर्जेरीना को एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर। जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए जी, फिलहाल पहला गाना बहुत प्यारा है, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

क्या बात है जी, बुमरो बुमरो शाम रंग बुमरो। यानी कि बताओ तो गाइस, यानी कि शाम इतना हॉट वेदर हो चुका है ना कि भाई क्या ही कह सकते हैं। यानी कि सुबह हो या शाम, बस दिल से एक ही आवाज आती है, हाय ये गर्मी क्या करके मानेगी। आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 5:53 हो चुके हैं और अब हम बात करते हैं, थोड़ा वेदर की तरफ चलते हैं, वेदर के बारे में बात कर लेते हैं गाइज, क्योंकि वेदर के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस गर्मी से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर ये गर्मी ऐसे ही हमसे बदला लेती रहेगी। यानी कि उत्तर भारत इन दिनों में भीषण गर्मी के चपेट में है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के कई या राज्यों में लू का कहर बरस रहा है। दिन का तापमान यानी कि 43+ यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। रातें भी गर्म हो रही है। सच बताओ, रात में अगर कमरे में जाओ सोने के लिए तो मन नहीं करता भैया कमरे में सोने के लिए, बस ऐसा मन करता है कि चलो यार छत पर सो जाते हैं, थोड़ी सी राहत तो मिल ही जाएगी। लेकिन बात यह है कि आप घर से बाहर समय, जब आपको ज्यादा काम हो तभी बाहर निकले, अदरवाइज बाहर ना जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि 29 मई को तापमान में यानी कि 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई जा रही है। यानी कि दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के फिलहाल भयंकर गर्मी पर पड़ रही है। और साथ ही साथ ये जताया जा रहा है कि 29 मई को टेम्परेचर गिर सकती है, वो इसलिए क्योंकि उस दिन बताया जा रहा है कि बारिश, आंधी, तूफान आने की संभावना जताई जा रही है। तो मुझे लगता है कि उस दिन का इंतजार क्यों करना है, सूर्य भगवान जी अपनी बहन वर्षा को भेज दीजिए, बहुत नीड है हमें उनकी, हम उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब वो धरती पर आए और हरा भरा धरती कर कर जाए, जो कि पेड़ पौधे भी सूखते जा रहे, चाहे कितना ही पानी डालो लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि भैया क्या ही कर सकते हैं। इसीलिए बस थोड़ी आप रहम करिए हमारे ऊपर, जल्दी बरस जाइए। चलिए जी, फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। अगला गाना भी बहुत ही शानदार है श्रोताओं, सो इस गाने को एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।

0: डोंगरी की एक बरसाती में रहने वाला।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जेंटीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 6:02 हो चुके हैं। अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं और बहुत सी चीज़ें हैं ना जिसके लिए आपको बार बार चक्कर लगाना पड़ जाता है, यार बैंक का काम ये नहीं हुआ, यार कार्ड बनवाने गए थे वो नहीं बना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गए थे वो नहीं बना है, लेकिन अब वो आसान हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि भैया पता लगे तो बस अर्जेंटीना के साथ कनेक्ट हुए, बहुत ही प्यारा गाना, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे।
1: मैं नहीं दे रहा, मैं क्यों नहीं जाऊं थारे गांव में।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आज की बात करूँ तो 6:05 हो चुके हैं और गर्मी इतनी ज्यादा है ना कि बस इंसान सोच रहा है कि कैसे तैसे करके इस गर्मी से हमें राहत मिले। सोचिए, अगर हम जो कपड़े लेते हैं उसमें एसी लगाओ तो कितना मजा आएगा ना। इमेजिन करके देखिए, फिर आप आराम से बाहर घूम सकते हैं जब कपड़ों में एसी लग जाए। ओए होए, तो भैया पूछिए मत, कितना मजा आएगा। फिर तो हम ये कहते रहेंगे, हाँ यार धूप हो या कुछ भी हो, बाहर चलते हैं ना घूमने के लिए। लेकिन साथ ही साथ आप सभी के बीच एक कड़क अपडेट, जो कि ये कहा जा रहा है यूपी में जल्द ही जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र और घर जमीन से जुड़े दस्तावेज के काम एक ही दिन में पूरे हो जाएंगे। नगर विकास मंत्री एके शर्मा के अनुसार, यानी कि प्रदेश के सभी नगर निगम में वन डे यानी कि एक दिन में ही आपका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, धरती से जुड़ी कोई भी दस्तावेज है वो एक ही दिन में बनाया जाएगा। उसके लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द शुरू कर देंगे कि आपको इस गर्मी में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए श्रोताओं, आगे क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। और ये मुझे लगता है कि अगर ये शुरू हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हम आपने देखा होगा कि कितनी बार चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, बार बार जाते हैं कि भैया ये, हम जब भी जाते बोलते हैं सर्वर डाउन है, अच्छा अभी ये पर फोन फिल नहीं हो सकता, कल आइएगा, परसों आइएगा, यही करते करते ना 10 दिन तो हमारे निकल ही जाते हैं। और जो ये एक दिन वन डे वाला होने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक दिन के लिए इंसान समय निकाल सकता है। जो जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, उनके लिए थोड़ी राहत मिल सकती है कि एक दिन के अंदर ही अपना वो सारा काम कर सकते हैं। पूरा दिन लग सकता है लेकिन एक दिन में हो जाएगा आपका काम, ये कहा जा रहा है। चलिए जी, और भी ढेर सारी बातें करेंगे, बस आप यूं ही आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल एक हरियाणवी गाना एंजॉय करिए।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जेंटीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो 6:16 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। पचाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। देखिए, इस गर्मियों में ना हम यही कहते हैं कि है यानी कि हमारे सेहत के लिए गाजर और कुकुम्बर यानी कि खीरा बहुत अच्छी चीज़ होती है, यानी कि हेल्थ के लिए। और गर्मियों में सबसे ज़्यादा सैलेड वगैरह खाया जाता है, फ्रूट्स जो भरपूर पानी उसमें पानी वाला फल खाया जाता है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि जो आपको फल सब्जियां यानी कि तरोताज़ा फ्रेश दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ताज़ा ही हो। बल्कि अगर मैं बात करूं इनफैक्ट खीरे की, तो ज़रूरी नहीं कि जो खीरा आपको ताज़ा दिख रहा है वो सच में ही ताज़ा है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि खीरे में भी मिलावट आ रही है, यानी कि इंजेक्शन दिया जा रहा है खीरों को भी। कि आज तक तो मैंने बस यही सुना था कि इंसान को इंजेक्शन लगता है भैया, लेकिन अब सब्जियों को भी इंजेक्शन लगाया जा रहा है ताकि वो फ्रेश रहे और ऐसा लगे कि बस अभी तो हम खेत से तोड़ कर लाए इसको फ्रेशनेस के लिए। तो देखिए, अब हेल्थ के साथ भी खिड़वाड़, यानी कि अब जो केमिकल के जो वैसे हर खेत में खाद वगैरह तो डाला ही जाता है ताकि फसल जल्दी हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ अब इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए ज़रा आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो सोच समझ कर खरीदिए। खीरा खरीदने का बहुत सिंपल सा, देसी खीरा जो भी आप ले रहे हैं, जो ज़्यादा चिकना आपको खीरा दिख रहा है उसको बिल्कुल ना ले, अवॉइड करें उस खीरे को, और तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि जो बिना केमिकल वाले खीरे होते हैं ना, उनकी जो कलर होता है उसका वो अलग ही होता है। जो केमिकल वाले होते हैं उसकी चमक धमक इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपनी तरफ आकर्षित करती है हमें, और हमें लगता है कि भैया ये तो फ्रेश है, हम इसी को खरीद लेते हैं। लेकिन हर फ्रेश सब्जी आपको फ्रेश नहीं है वो, बल्कि केमिकल मिलावट है, उसमें इंजेक्शन दिया गया है। तो जब भी आप मार्केट जाए तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि देखिए महंगाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन अपने हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो इनफैक्ट ये कहती हूँ कि आपके घर के बाहर थोड़ा बहुत जगह है, ज़मीन मतलब जो बची हुई है, गमलों में बल्कि आप बेल लगाइए। क्योंकि अब तो देखा जा रहा है हर घर के आगे गमलों में पेड़ लगाए जाते हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ें आप अपने घर में भी उगा सकते हैं, जो कि आपके लिए भी हेल्दी रहे और जो खाद वगैरह है इनसे भी आप बच पाए। क्योंकि जो खाद वाले सब्जियां होती है उसकी टेस्ट अलग होती है, जो बिना खाद वाली सब्जियां होती है वो उनकी टेस्ट अलग ही होती है, घिया तोरी लौकी। ये तो ऐसा है कि हम अपने घर में भी उगा सकते हैं इनको। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हेल्दी है तभी आप कोई और काम कर पाएंगे और यूँ ही अर्जेंटीना को सुन पाएंगे। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और भी ढेर सारी बातें करेंगे, बस यूँ ही अर्जेंटीना के साथ आप कनेक्ट रहिए। चलिए जी, फिलहाल हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है इस गर्मी में बचने के लिए, और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा गाना, बहुत ही प्यारा, सो इस गाने को एंजॉय करिए। जबकि चिट्ठी उठी भेजते हैं ना, तो ये गाना मोस्टली बहुत फैंटास्टिक वाला है।

0: कर लेना।
1: क्या बात है जी, बस यही रात की कॉलिंग है जो रातों की नींद उड़ा चुकी है, हैं जी। और फिर हम यही कहते हैं कि भैया आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं, यानी कि हम पूरी पूरी रात जब फोन चलाएंगे तो हालत तो यही होगी ना गाइस। आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है और सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर। जाते रहे, गुनगुनाते रहे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, चलिए उनकी बात सुनते हैं। यानी कि गर्मी में हम अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, खुद को डिहाइड्रेट रखें, बाहर निकलते समय पानी साथ रखें, ज़रूरतमंद लोगों के लिए यानी कि पानी की जो बोतलें हैं आप उनको ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करें। क्योंकि देखिए 10-20 रुपए का बोतल आता है, अगर आप गर्मी के दिन में आप चाहते हैं कि भैया हमें पुण्य कमाना है तो बस बर्गर पिज्जा ऑफिस पहुँचा दीजिएगा। मतलब कि जो इंसान बाहर है, काम कर रहे हैं, ठेले पर है, आप उनको पानी की बोतल, सिकंजी, लस्सी आप उनको दे सकते हैं ताकि उनको भी राहत मिले गर्मी से और वो आपको ब्लेसिंग बहुत सारा दे। साथ ही साथ बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखें, खासकर उनको, क्योंकि इस गर्मी में हीट, उनको सबसे ज़्यादा हीट के चपेट में वो आ जाते हैं। क्योंकि जो देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे एनर्जी बॉडी से कम होती जाती है, इसीलिए हमें बुज़ुर्गों का और बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का ध्यान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बस उनके खेलने, उनको खेलने घूमने से मतलब होता है। उनको नहीं पता कि हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो उनका भी ध्यान रखना हमारा फ़र्ज है और बच्चे का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पक्षियों और जानवरों के लिए भी अपने छत पर, बालकनी में पानी रखें, उनके लिए दाना रखें ताकि बेजुबान पक्षी यानी कि मांग तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उनको उसको दिखा कि हाँ भाई यहाँ पर पानी है टब में तो हम इस पानी को पी सकते हैं, साथ ही साथ उनके लिए दाना डालें ताकि वो अपने पेट को भर सके। और गर्मी में आप जितनी मदद कर सकते हैं तो उतनी मदद करिए, छाछ पानी, नींबू पानी ज़रूर दीजिए। और हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि अपने घर के बाहर जैसे आप बाल्टी जो भी सिकंजी पानी बनाए और जो बाहर से आ रहे हैं उनको पानी ज़रूर पिलाइए, क्योंकि इस गर्मी में कुछ मतलब खाना पूछे ना पूछे इंसान से, लेकिन पानी ज़रूर पूछिए, क्योंकि प्यासा कौवा कहाँ आता है, पानी के पास ही आता है। तो इसीलिए इस गर्मी में हर किसी को भैया टाइम टाइम पर पानी बहुत चाहिए। और आप चाहते हैं कि भैया हमारे फेस पे जो पिंपल्स हो चुके हैं उससे भी राहत मिले तो पानी पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना पानी पियेंगे आपकी बॉडी से गंदगी उतनी ही बाहर जाएगी। चलिए फिलहाल मैसेज आए हैं, उन मैसेज को भी शामिल करते हैं। हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं विक्की सागर जी मुरादाबाद से। अगले मैसेज की बात करें तो ये हमारे साथ अनुरुद्ध जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि ये लाइन पर मुरादाबाद से हैं और इनका कहना है कि मज़ा आ रहा है आज शो सुनकर, बहुत सारी अपडेट हमें सुनने को मिल रही है, क्या बात है जी। पिंटू जी का मैसेज आता है मुरादाबाद से और इनका कहना है कि मज़ा आ गया हरियाणवी गाने सुनकर, क्या बात है जी। चलिए फिलहाल एक और हरियाणवी गाना आपको सुनाते हैं, और लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया आर्जरीना के साथ। और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और इवनिंग मस्ती शो में है और समय की बात करूँ तो 6:36 हो चुके हैं श्रोताओं। और जो कल का मैच न सच बताऊँ बड़ा ही लाजवाब था, अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि कल जो मैच था यानी कि बेंगलोर वर्सेज गुजरात के बीच, जहाँ बेंगलोर ने यानी कि बाजी मार ली है, फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन आज का जो मैच है वो भी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जिस टीम को मैं सपोर्ट करती हूं आज उस टीम ये टीम

ना भूले। और ये मैच कहाँ होने वाला है जी? चंडीगढ़ में ये मैच होने वाला है। मैच तो आज देखना बनता है, क्योंकि आज का मैच भी बड़ा ही फैंटास्टिक होने वाला है, यानी कि एलिमिनेटर मैच होने वाला है। जो भी टीम हारती है वो सीधा बाहर, और जो टीम जीतती है वो यानी कि क्वालिफायर टू में पहुंच जाएगी, यानी कि फाइनल मैच में पहुंच जाएगी। आज का मैच देखना बिल्कुल ना भूले। और एक और प्यारा सा गाना, और उसके बाद आप सभी के लिए हम लेकर आएंगे कड़क सवाल। आखिरकार आज का कड़क सवाल क्या होने वाला है, श्रोताओं देखते ही।

वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और इसी बीच में लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए कड़क सवाल। हाँ जी, कड़क सवाल भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान है, जो कि आपको सोचना तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा श्रोताओ, क्योंकि बिना सोचे समझे भी आप आंसर दे सकते हैं। और ये दो पेड़ ऐसे हैं जिसके फ्रूट्स हम अक्सर मजे लेकर खाते हैं, बच्चे हो या बड़े हो, और शेक भी बनाकर पीते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार ये कौन सा पेड़ है जो आपको बताना है जी। यानी कि ऐसे कौन से दो पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है, सोचना पड़ेगा। यानी कि मैं आपको पहले बता दूँ, फ्रूट्स के पेड़ होते हैं ये, सो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होएगा। यानी कि फ्रूट्स के पेड़ है, दो ऐसे कौन से पेड़ है जिसमें लकड़ी बिल्कुल भी नहीं होती है। हमें व्हाट्सअप करना है आपको, नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है। ये वंस अगेन एक बार और आप सभी के साथ रिपीट करती हूँ, ऐसे कौन से दो पेड़ हैं जिसमें लकड़ी नहीं होती है, सोचिए और फटाफट मैसेज करिए। फिलहाल अगला गाना भी बहुत ही प्यारा है।

0: Rolex. सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जेंटीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 6:50 हो चुके हैं गाइस। और अभी गर्मी का जो प्रचंड है वो बहुत ही भयंकर वाला है। यानी कि टेम्परेचर की बात करूँ तो 2 दिन यानी कि कल के मुकाबले आज के टेम्परेचर की बात करूँ तो 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। यानी कि गर्मी कहने को बस 6:51 हो चुके हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। यानी कि भाई समझ नहीं आ रहा कि जाए तो जाए इंसान कहाँ, लेकिन यही कहा जा रहा है। यानी कि डेट बढ़ा दी गई है, 29 मई से 5 जून तक यानी कि राहत मिलने वाली है। कई कई जगह बारिश की संभावना जताई जा रही है और कई कई जगह ये बताया जा रहा है कि 2 जून तक यानी कि गर्मी का जो तांडव है बहुत तेज होने वाला है। यानी कि टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। तो ऐसे में अपना ध्यान रखिए और हमें यानी कि आज के कड़क सवाल का आंसर पहुंचाते रहिए। तो चलिए यानी कि आज के जो कड़क सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यानी कि ऐसे कौन से 2 पेड़ हैं जिसमें लकड़ी नहीं होती है। यानी कि सबसे मैं आपको बता दूं, फ्रूट्स के ही पेड़ है वो। आपने कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सा पेड़ है, फ्रूट्स का पेड़ है। ऐसे 2 पेड़ का नाम बताने हैं जिसमें लकड़ी नहीं होती है। और कहाँ पहुँचाने जी, क्योंकि अगली बारी आपके मैसेज की है। नंबर है 9837896896, यानी कि व्हाट्सएप करना है आपने। चलिए फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए और उसके बाद आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़िए।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। कृष्णा यानी कि कविता कृष्णा मूर्ति जी की आवाज़ में और उदित नारायण जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गाना। यानी कि देखिए, ज़िंदगी में ना कुछ भी हो जाए लेकिन हमें एक मुस्कान के साथ, प्यारी सी स्माइल के साथ, किसी के साथ आप बात कर रहे हैं तो एक मुस्कान के साथ बात करिए। क्या पता उसकी ज़िंदगी में टेंशन चल रही हो और आपको वो देखकर मुस्कुरा जाए, तो इससे बड़ी बातें क्या ही हो सकती है। और देखिए, ज़िंदगी में ना चलते चलते किसी को ना कॉम्प्लीमेंट दे देना चाहिए कि वाओ, यू आर ब्यूटिफुल, या बहुत अच्छी लग रही है। सच में हमें बोल देना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आती है और अगला इंसान भी बड़ा खुश हो जाता है। सोचिए कि अगला इंसान आपकी वजह से वो खुश हो रहा है, आपके उसके चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान आ रही है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए ज़िंदगी में। चलिए श्रोताओं, यानी कि आज का जो कड़क सवाल मैंने आप सभी से यही पूछा था, यानी कि दो फ्रूट्स के नाम बताने थे जिस पेड़ में यानी कि लकड़ी नहीं होती है। तो चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। सो

0: संजू जी का कहना है कि हाय दी, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी। और आप परसों कहीं का मेला देखने गई थी क्या? ओ, या फिर हम सबको खुश रखने के लिए ड्यूटी पर ही रह मतलब थी आप? नहीं नहीं जी। और इनका कहना है कि मैंने तो अपने गांगन का मेला देखा था। अच्छा जी, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे आसपास हमारे पड़ोस में ही मेला लगा हुआ है, यानी कि लाइन पर मुरादाबाद रामलीला ग्राउंड में मेला लगा हुआ है, तो मैं वहीं चली जाती हूँ कभी कभी घूमने के लिए। और इनका कहना है कि ये फल का नाम बताती है, यानी कि पेड़ का नाम बताती हैं, केला और पपीता, जिस इसमें इन पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। क्या बात है जी। अगले मैसेज की तरफ बढ़े तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, ये इनका कहना है कि पपाया और बनाना। और ये हमारे साथ एस के मोदी जी इनका नाम है, और ये मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। क्या बात है जी, मुझे लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझे मैसेज किया है, वो माई गॉड। चलिए जी, फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। कैसे हो जी? बहुत अच्छी है जी। और इनका कहना है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर होता है पपीता एंड दूसरा है केला। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं कमल सिंह फ्रॉम बुद्धि बिहार मुरादाबाद से। चलिए जी, अगले मैसेज की बात करूं तो विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि केला और पपीता। ओए होए, क्या बात है जी। मोनिका जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनके कहना है कि मैं रामलीला ग्राउंड के पास से हूँ मैडम जी। और आपको मैं मतलब कभी कभी आप सुबह वॉक करने भी आती है तो मैं आपको देखती हूँ, लेकिन मैं आपको आपसे बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि आप उस टाइम ना वॉक करती रहती है, रनिंग करती रहती है, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों डिस्टर्ब करना है। और दो दिन तो आप शाम को भी आई टहलने के लिए, तभी भी मैंने आपको देखा था, तो अच्छा लगा आपको देख कर। और आपका शो भी सुन रही हूँ, जो कि आपने पूछा है उसका सवाल, मतलब जो आपने कड़क क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होता है, यानी कि पपाया और अंगूर। क्या बात है जी, वाओ, वेल डन। अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ सुजाता जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि बनाना और पपाया। क्या बात है जी, लेकिन सच बताऊँ तो सबसे पहले राइट आंसर आया है हमारे पास। संजू जी आज विनर होती हैं, तो देखिए संजू जी, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस गर्मी में आप अपने घर पर नींबू पानी बनाकर पी लीजिए, क्योंकि रीना को बहुत पसंद है। देखिए, जो चीज़ मुझे पसंद होती है मैं वही चीज़ आपको बोलती हूँ कि अगर आप मेरे शो के विनर बनते हैं तो आप ये चीज़ ले सकते हैं। चलिए जी, इसी के साथ मैं लेती हूँ, बाकी आप सभी ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज किए थे, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया कि आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं। अगले मैसेज की बात करें तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, यानी कि एक जस्ट अभी मैसेज आया है, 7:02 हो चुके हैं श्रोताओं। नरेंद्र सिंह फ्रॉम मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि वी विश यू ऑल आरजे फॉर कम्युनिटी रेडियो मुरादाबाद। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उनका आंसर भी देते हैं, कि इनका कहना है कि पपाया एंड बनाना। क्या बात है जी, वेल डन, बहुत अच्छी बात है सर कि आपने पपाया और बनाना बताया है। इन दो पेड़ में और अंगूर का पेड़ भी है साथ में, जिसके अंदर लकड़ियां नहीं होती हैं। चलिए जी, इसी के साथ बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और यूं ही अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए, रोक मचाते रहिए, क्योंकि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, बस अपने जज्बे को हमें और अपने हौसले को बुलंद रखना चाहिए। अभी के लिए बाय, मिलते हैं रात के 9 बजे, करेंगे हेलो मुरादाबाद शो। अगर आपको गाना सुनना है तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, हमारा नंबर है 9823789689। चलिए जी, बाय।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: हेलो जी, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और आज का जो ये सेशन है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ जो ऐसी एक्सपर्ट जिनको सुनके ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। शी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी बिकॉज ये इतने अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन करती है और साथ ही साथ हमारे आसपास के लोगों को भी मेंटेन करके रखती है भाई साहब, क्योंकि किसी की स्माइल अच्छी बनाती है, किसी की स्किन अच्छी बनाती है, किसी के बालों को अच्छा बनाती है। एंड मतलब शी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। एंड किनकी बात कर रहा हूं मैं, उनकी आवाज आप सुनेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, सीरियसली बता रहा हूं। वेरी वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी एंड इनके बारे में मैं क्या बोलूं यार, मुझे लगता है कि मुझे नहीं अब इनको बोलना चाहिए। सो डॉक्टर दिशा जग्गी मेरे साथ मौजूद है। हेलो मैम।

0: की आवाज से मेरी वो नहीं अटेंशन नहीं हटती है.
1: मैम थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू फॉर द बिग कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम सो हैप्पी एंड स्पेशली नाइस टॉकिंग टू यू. मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भी आपका देखता रहता हूँ और आज आपसे बात कर रहा हूँ. आई एम सुपर हैप्पी.
0: My pleasure.
1: थैंक यू सो मच. अच्छा मैम आज तमाम लोग आपको सुन रहे हैं हमारे रेडियो स्टेशन के थ्रू, थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज बताइए हमारी ऑडियंस को.
0: हाँ जी, मैंने अपना एस्थेटिक मेडिसिन एंड एंटी एजिंग मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी लंदन से किया है. अलॉन्ग विद दैट

0: Instagram, you can find me.
1: That's very amazing, wonderful introduction, ma'am. Seriously. So, ma'am, शुरू करते हैं आज का सिलसिला. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा आपसे. मैम, आजकल ना इंस्टाग्राम का जमाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको भी पता है. तो इंस्टाग्राम पे जैसे हम इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, हजारों रील्स हमारे पास आ जाते हैं. स्पेशली आप ये वाला फॉर्मूला आजमा लो, आप ये वाली रेमेडीज फॉलो करो, चाहे स्किन से रिलेटेड हो या बालों से रिलेटेड हो. और कई बार लोग वो इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो कितना ज्यादा हमारे लिए सही होता है और कितना ज्यादा रॉन्ग होता है. आजकल ऑडियंस को पता नहीं है, वो कुछ भी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं.
0: सो देखो, आई विल नॉट से कि ऑल होम रेमेडीज आर रॉन्ग. मैं एक जनरलाइज चीज नहीं बोल सकती, या एक जो होम रेमेडी है वो सबको सूट करेगी, मैं वो भी नहीं बोल सकती. सो सी, डिफरेंट, अगर आपकी ड्राई स्किन है, सो यू नो समथिंग लाइक अ मसूर की दाल, बेसन विल हेल्प यू आउट टू रिड्यूस योर ऑयल सिक्रीशंस एंड थिंग्स लाइक दैट, कि हल्दी लगा लिया. एंड देन जो ड्राई स्किन टाइप्स हैं, उन्होंने अगर कर्ड के साथ में कुछ लगा लिया, कर्ड के साथ मिक्स करके, सो दैट विल ऑब्वियसली हेल्प देम आउट. बट अगेन, हर किसी की स्किन सेंसिटिव होती है. अगर सेंसिटिव स्किन है तो उनको हनी और इवन एलोवेरा से एलर्जी हो सकती है. आई हैव सीन ब्राइड्स जो आती हैं, हल्दी लगाया रात को या नेक्स्ट डे शादी है एंड पूरा फेस बर्न हो गया, क्योंकि पहले के जमाने में जो हल्दी थी और आज के जमाने में जो हल्दी मिल रही है, द थिंग्स हैव चेंज्ड. तो अब उतनी क्लीन सामान हमें मार्केट में नहीं मिल रहा, अंटिल अनलेस आपका खुद का कोई फार्म है या जहाँ से आप सामान लेकर आ रहे हो, पिसवा रहे हो, तो एक अलग चीज होती है. बट अगर नहीं है, सो इट इज बेटर आप वहाँ उस चीज पे स्टिक करें जहाँ पे आपको पता है कि थिंग्स विल नॉट रिएक्ट टू योर स्किन.
1: दैट्स वेरी नाइस मैम. अच्छा मैम, आजकल आपको पता है ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर दूसरे इंसान को हेयर प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है. और आई थिंक इसका रीजन में मुझे लगता है कि आजकल का लाइफस्टाइल भी है, बिकॉज इतने लोग इतना बिजी हो गए हैं अपनी लाइफस्टाइल में, लोग उनको पता ही नहीं है कि हमें खुद के लिए भी समय निकालना है, अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आपको. मैम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: सी नाउ, स्किन का जो हेयर के इश्यूज है, एज यू स्पेसिफिकली मेंशनिंग, तो बाल सिर्फ हमारा, देखो पहले जो जनरेशन था जिसको ये अफेक्ट करता था, वो जनरली 40-45 प्लस था.
1: करेक्ट.
0: जैसे अगर जिनको गंजापन आ रहा है तो क्या हो गया था, एक बहुत एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी था कि ठीक है गंजापन है कोई बात नहीं, अब तो उम्र हो गई. अब क्या है, पीपल इन देयर 20s आर हैविंग हेयर फॉल, पीपल इन देयर 30s आर हैविंग हेयर फॉल, जिनकी शादी नहीं हुई है, दे आर स्टार्ट फिनिशिंग कॉलेज, बॉयज गर्ल्स, और उनको मैसिव हेयर फॉल है. और ये सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एक इसमें रीजन होता है, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12 एंड आयरन प्रोफाइल, जिसको हम बोलते हैं सीरम फेरेटिन और TIBC, दैट इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, और थायराइड. ये तीन चार टेस्ट आप अगर अपने करा लेते हैं, तो आपको अपने स्टेटस, स्किन के अंदर का या बॉडी के अंदर का स्टेटस पता चलता है कि डेफिशिएंसीज किसकी. अगर ये सारी चीजें आपकी ठीक है सपोज, देन हार्मोनल रीजन एक और होता है,

0: होगा, दे विल बी एम शेप पैटर्न, एक एम शेप का पैटर्न फॉलो करेगा आगे से स्कैल्प पीछे, मतलब फोरहेड और सर के बीच में एक डिफरेंशिएशन जो होता है वो हेयरलाइन खत्म होती जाएगी, बोलते हैं रिसीडिंग हेयरलाइन.
1: ऑलराइट
0: राइट. सो वो हार्मोनल पैटर्न है. सो किस वजह से हो रहा है हमें वो पैटर्न फाइंड आउट करना होता है. न्यूट्रिशनल बेस्ड है, हार्मोनल बेस्ड है, एंड कई बार होता है हमारे गट में इश्यूज होते हैं कि हम दवा तो खा रहे हैं मगर बॉडी अब्सॉर्ब ही नहीं कर रही है उसको.
1: करेक्ट करेक्ट.
0: तो वो एक और इश्यू होता है. सो वो यू हैव टू, मैं उसका एक वो नहीं बता सकती कि रामबाण है ये कर लो हो जाएगा. आपको हमेशा एक एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, कंसल्ट डॉक्टर, सो दैट यू नो आप क्या कर रहे हैं.
1: एग्जैक्टली. बहुत ही अच्छा आपने बताया मैम. एंड आई थिंक मैम एक और चीज जो आजकल हम देख रहे हैं, मैं यूथ में इनफैक्ट हर किसी में ये प्रॉब्लम आ जाती है, लोग खुद से कुछ भी यूज कर लेते हैं. जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पिंपल स्किन एक्ने की अगर मैं बात करूँ, एक एक्ने एंड पिंपल ये बहुत ज्यादा स्किन में आजकल बढ़ता जा रहा है लोगों को मैं देख रहा हूँ. इवन मेरी कजन सिस्टर है उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बट वो क्या करती है कभी भी कोई भी क्रीम उसने मेडिकल स्टोर से ले लिया, कुछ भी लगा लिया, जबकि एक्ने एंड पिंपल इट्स नॉट वेरी इजी प्रॉब्लम. आई थिंक ये बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकती है एंड मेरे से बेटर तो ऑफकोर्स आप ही जानते हैं. तो मतलब किस सिचुएशन में हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए? जैसे मैंने अपनी सिस्टर का एग्जाम्पल दिया, मैं कजन सिस्टर वो कुछ भी लगा लेती है, तो क्या ये करना चाहिए अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है?
0: वही वही सबके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर लो, कपड़ों के साथ कर लो, मगर स्किन के साथ मत करो. स्किन में एक बार पिंपल्स आ गए तो खड्डे हो जाएंगे या स्कार्स हो जाएंगे या कहीं पिगमेंटेशन हो गया. जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं माय क्लिनिकल प्रैक्टिस कि मैम बेटनोवेट लगा रहे थे, किसी ने स्किन लाइटनिंग क्रीम दी, स्किन गोरी हो जाएगी. अब उसके क्या होता है, उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं. अब स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, दे आर गोइंग टू गिव यू इंस्टेंट रिजल्ट देगा वो, मगर साथ में स्किन को डैमेज कर देगा. आपका स्किन का जो बैरियर है ऊपर वाला उसको उड़ा देगा. साथ में बालों, फेस पे बाल आने लग जाएंगे, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी धूप से. सो दीज आर द साइड, सम साइड इफेक्ट्स. और साथ में क्या होता है, फिर ऐसी स्किन पे काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि आपने स्किन का बैरियर डिसरप्ट कर दिया है बाय यूजिंग समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड देन उसके बाद जब मैं कोई माइल्ड मॉइस्चराइजर या क्लिंजर कुछ भी देती हूँ तो वो जल्दी काम ही नहीं करता है. सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो स्पेशली एक्ने के लिए यू शुड नॉट डू एनीथिंग ऑन योर ओन. अगर पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, आज की तारीख में इफ यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर आप ऑनलाइन दिखा लो एंड दे विल बी पीपल टू हेल्प यू. एंड ऑल्सो एक्ने में आपकी डायटरी हैबिट्स प्ले अ वेरी मेजर रोल. अगर आप मीठा खा रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो दैट हैज टू बी कट डाउन.
1: ऑल राइट, बिल्कुल सीखा. अच्छा एक और चीज मैम, आजकल जैसे आपने भी देखा होगा, इवन तो देख ही रहे, आजकल सभी देख रहे हैं कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का चल रहा है आजकल, लोग ये करा रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा क्रेज भी है, बहुत ज्यादा ट्रेंड भी बन गया है और काफी बढ़ भी रहा है ये, बट एक्चुअली क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है?
0: परमानेंट इफ यू आर लुकिंग एट कि जिंदगी भर वो बाल रहेंगे, नो दैट
1: डजंट हैपन.
0: सो द हेयर जो आपके पीछे डोनर एरिया से निकाले जाते हैं, फ्रंटली उनको ट्रांसप्लांट या लगा दिया जाता है स्लिट्स बनाते. अब उनकी जो लाइफ स्पैन है, जनरली अगर आप उनका अच्छा केयर करते हैं तो समवेयर अराउंड 8 to 10 years वो रहते हैं. एंड उसमें भी ऐसा नहीं है, वो देखिए हमने बीज लगाया है, अगर बीज लगा के तो उसमें खाद नहीं डालेंगे देन ऑल्सो देयर आर चांसेस दे कैन फॉल ऑफ अर्ली. सो आपको उसकी भी थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है. साल में एक या दो सेशन मेंटेनेंस के आपने लेने रहते हैं जीएफसी या पीआरपी के, एंड व्हाटएवर मेडिकेशन आपका डॉक्टर ने बताया है वो आपको ऑन एंड ऑफ लेना रहता है.
1: ऑल राइट, वेरी नाइस. अच्छा मैम अगर मैं आपसे वही एक आम इंसान के बारे में बात करूँ, सपोज दैट कोई इंसान है जो सुबह से शाम तक बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, बट शाम को एटलीस्ट हर किसी के पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो खुद के लिए टाइम निकाल सकता है और वो इस बात से डिनाई भी नहीं कर सकता इनफैक्ट. सो मुझे लगता है कि अगर मैं एक आम आदमी की बात करूँ, लाइफ स्टाइल बहुत बिजी है, बट वो दो तीन चीजें ऐसी क्या कर सकता है जिससे उसकी स्किन भी हेल्दी रहे, उसके बाल भी हेल्दी रहे और उसकी पर्सनैलिटी भी शाइन करे, कॉन्फिडेंट बढ़े, अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहें पर्सनालिटी को?
0: फर्स्ट ऑफ ऑल विच आई पर्सनली रेन, देखिए नथिंग कैन रीप अ गुड फिट पर्सनालिटी, दैट इज इंसान जो कि हेल्दी है और फिट है. दैट इज योर वर्कआउट, एक्सरसाइज. जैसे आप मुंह में खाना डाल रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंट आपका शरीर हिलाना है. सो प्लीज मूव योर बॉडी, क्योंकि द मोमेंट आप अगर फिट हैं और अगर आप एक कमरे में वॉक इन करते हैं, द कॉन्फिडेंस यू होल्ड, नो बोटॉक्स, नो फिलर, नो लाइपोसक्शन कुछ आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता जो कॉन्फिडेंस आपकी एक फिट बॉडी आपको दे सकती है. सेकेंडली योर वॉट एवर आप मुंह में डाल रहे हैं, देखिए आज की तारीख में एज आई यू सेड इंस्टाग्राम आप खोलो, ओवर नॉलेज है, ठीक है. तो आपको पता है कि आपके कौन से इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड है और आपको पता है कौन से नॉन इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड है, मतलब कि प्रोसेस्ड सबको पता है खराब है, सबको पता है मैदा खाना नहीं है, सबको पता है कि पैकेट से निकला हुआ खाना हेल्दी नहीं है. वी ऑल नो दिस कि हरी सब्जी खाइए, फ्रूट्स खाइए, जो हम लोग क्लास वन से पढ़ रहे हैं, बट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. शाम को वो समोसे आए, हाँ भाई लाओ लेकर खाते हैं. तो दैट इज हाउ इंडिया की वर्ल्ड की सबसे हाइएस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन बन चुके हैं.
1: Exactly.
0: Disgraceful and a shameful thing.
1: Absolutely.
0: So nothing to be proud of. And secondly, yeah, nutrition. As in, आप अपने मुंह में जो भी डाल रहे हैं, please देखिए उसके nutritional value क्या है.
1: Value क्या है? Correct.
0: Yeah. And thirdly, I would say just using the bare minimum which suits you. Like आपको सब नहीं लगा लेना है कि मैं सब देखा सब कर लिया. Basic use करने सामान use करिए to look after yourself, which is a basic part of grooming. जैसे एक sunscreen हो गया medicated. एक मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर, एक मेडिकेटेड फेस वॉश. ये तीन चीजें अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, ज्यादा नहीं कहूंगी बट 60-70% योर लाइफ विल बी अंडर कंट्रोल.
1: That's very amazing, ma'am. बहुत ही wonderful तरीके से आपने explain कर दिया and very very quickly आपने बता दिया. मतलब unbelievable, incredible, ma'am. Lovely talking to you, ma'am. एक question, this is my personal question. So I want to ask you कि जैसे आजकल ना बालों में dandruff की problem बहुत हो रही है, और कई लोगों को लगता है कि hair fall अगर हो रहा है, dandruff हो रहा है, तो हम अगर daily shampoo करेंगे तो ये काम हो जाएगा.
0: Okay, so dandruff generally जो होता है हमारा excess में sebum या oil secretion होने के कारण होता है. और एक तरह की फंगस होती है जिसका नाम होता है मैलेसीजिया. ये फंगस सीबम या ऑयल पे थ्राइव करती है. उसका खाना है सीबम. तो और कुछ खाने हैं, कुछ फूड्स हैं जैसे कि डेरी, दूध, चाय, कॉफी, शुगर. इन चीजों से हमारा टेस्टोस्टेरोन या डीएचटी की मात्रा बढ़ती है.
1: Alright.
0: और जिन चीजों से डीएचटी बढ़ेगा उनसे आपका सीबम सिक्रीशन या ऑयल सिक्रीशन बढ़ेगा स्कैल्प में, फेस पे.
1: Okay.
0: तो जब वो होता है तो आप फंगस को खाना दे रहे हैं कि आओ बेटा खाओ खाना. तो इसलिए उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी डाइट में, उससे फर्क पड़ेगा. दूसरी चीज, ऑल्टरनेट डे बाल धोना चाहिए. हम लोग जितनी धूल मिट्टी में रह रहे हैं, आपके स्कैल्प में गन दो दिन बाद अगर हल्का फुल्का भी ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, सो व्हेन यू आर गोइंग आउट तो उस पे धूल मिट्टी बैठ जाती है. सो स्कैल्प इज डर्टी, तो उसको क्लीन करना है. गंदा स्कैल्प रखेंगे हेयर फॉल ज्यादा होगा. ऑल्सो जो लोग हेयर फॉल गो थ्रू कर रहे होते हैं वो हेयर वॉश ही नहीं करते चार चार दिन, सात सात दिन, क्योंकि मैम मैं बाल छूता हूँ तो और बाल झड़ता है भाई. फिर ऐसा क्या हो, ऐसे हेयर फॉल बढ़ जाता है. सो केटाकोनाजोल बेस्ड मेडिकेटेड शैम्पू 2% केटाकोनाजोल आप यूज कर सकते हैं. ऑल्टरनेट डे हेड वॉश करना चाहिए विथ ल्यूकवॉर्म और कोल्ड वाटर. गर्म पानी मत यूज करिए.
1: ओके, ऑलराइट. मतलब इससे हम काफी हद तक फिर हम बच भी पाएंगे. इनफैक्ट
0: इससे काफी बच सकते हैं. इससे ये इवन अगर आपको डैंड्रफ नहीं है, केटाकोनाजोल बेस्ड शैम्पू अगर वंस अ वीक आप यूज करते हो फॉर योर स्कैल्प, जो भी बिल्डअप हो जाता है हम लोग की स्कैल्प में वो भी क्लीन करता है.
1: करेक्ट. ओके, सी मैम, अच्छा एक और चीज, ये तो हमने ये तो नेचुरल प्रोसेस की बात हमने कर ही ली. अगर मैं बात करूँ डाइट की, थोड़ा सा अगर आप इसकी तरफ अगर हम बढ़ना चाहें, आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है कि नेचुरल डाइट बॉडी में डालना बहुत जरूरी है. जैसे आजकल खीरा है, तरबूज, खरबूज, इन सब चीजों का कितना असर पड़ता है हमारी स्किन पे, हमारे बालों पर.
0: सी, नेचर इज अ ब्यूटीफुल थिंग. आप देखेंगे जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, नेचर की सब्जियां और फल चेंज हो जाते हैं. आप वाटरमेलन खा लीजिए, आप हाइड्रेट हो जाएंगे, आप फुल हो जाएंगे.
1: करेक्ट.
0: ठीक है, आपका हाइड्रेशन पार्ट, फाइबर पार्ट आपको फ्रूट से बहुत अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि पता है कि भूख कम हो जाती है व्हेन इट कम्स टू समर्स. एंड आपको थोड़ा सा प्रोटीन का अपना इनटेक का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग की इंडियन डाइट में ज्यादा प्रोटीन कभी भी था ही नहीं. सो हम लोग को प्रोटीन की मात्रा हमेशा खाने में रखनी है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे बाल और स्किन बना प्रोटीन से है. तो आप अगर वेजिटेरियन है तो सत्तू को अपने डाइट में इंप्लीमेंट करिए मॉर्निंग इवनिंग. सत्तू का पाउडर आता है. देखिए नॉन वेजिटेरियन के पास बहुत सोर्सेज है. वेजिटेरियन के ऊपर मैं बात करूंगी ज्यादा.
1: करेक्ट.
0: जैसे कि आपकी दाल हो गई, दाल आप खाइए. ठीक है, बहुत अच्छा सोर्स नहीं है प्रोटीन का, बट कुछ तो मिलेगा.
1: करेक्ट.
0: सेकेंडली छोले हो गए, सफेद छोले, काले चने, योर कड़ी जो दही के अंदर पेस्ट पे बनी हो, और योर राजमा, लोबिया. तो अलग अलग दिन एक एक चीज इनमें से जरूर लीजिए. देन सोयाबीन की वड़ी, तो ये अपने खाने में डाइट में हर रोज बनाइए. एंड इवनिंग्स के टाइम अगर आप एग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एटलीस्ट दो अंडा खा सकते हैं, 2-3 एग वाइट्स. और इसके साथ अगर आप फ्रूट्स ले हो, ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हो इन योर एवरीडे डाइट, खीरा, ककड़ी, योर वाटरमेलन, मस्क मेलन इन योर फ्रूट्स, जो बेरीज आती हैं जो वाइटमिन सी रिच होती है, आंवला अगर डाल सकते हैं आप हर चीज में, किसी भी फॉर्म में, जूस में ले लीजिए, मुरब्बा ले लीजिए, अचार ले लीजिए, कुछ भी, एक पूरा आंवला खाइए. सो आपका स्किन ऑटोमेटिकली अंदर से क्लीन होके ग्लो करेगा.
1: That's very nice, ma'am. That's very ladies and gentlemen, boys and girls, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर दशा सिर्फ लोगों का इलाज नहीं करती है बल्कि in fact वो एक inspiring, जिसे कहते हैं ना inspiring वाली feelings अंदर से आना, inspire होना, वो एक amazing lady है. मैम इतना सारा कैसे आप manage करते हो, मतलब खुद की life के लिए भी productivity और मतलब सबके लिए इतना सारा कुछ करना, मतलब unbelievable. कैसे मतलब इतना energetic रहा, अभी भी आप इतना energy sound कर रहे हो.
0: I am already working in the clinic. I have one patient already lying down, two people waiting outside.
1: Oh my God.
0: But the point is this, that see, मैं सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, I practice what I preach. मैं जितनी कहानी सुना रही हूँ चार लोगों को, मैं अपने ऊपर भी पर्सनली वो यूज कर रही हूँ. That is why I know how it works. मुझे पता है उसका क्या रिजल्ट है और वो कैसे काम करता है.
1: That's very nice, ma'am. And I think मुझे लगता है कि हर एक women कुछ special कर सकती है अगर वो कुछ अच्छा ठान ले तो करने का.
0: True, आज की तारीख में women, men, they're all doing the same.
1: 100%.
0: So, ऐसा कोई वो specific कब है नहीं रहेगा.
1: True. अच्छा मैम मैं एक चीज के बारे में जानना चाहूंगा, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ. मैंने जब मैंने कल आपसे बात करी थी तो आपने एक स्माइल के बारे में बात करी थी कि घूमी हुई स्माइल ठीक करना एंड जिनकी चिन शेप में नहीं होती है वो इंप्रूव करना, फेस का वॉल्यूम वापस लाना, वो सब कुछ कैसे मतलब थोड़ा सा उसके विषय में अगर मैं जानना चाहूँ तो
0: बेसिकली दैट इज अ पार्ट ऑफ फेशियल एस्थेटिक्स ओनली जो मेरी एक्सपर्टीज है. तो जैसे किसी के गम्स दिख रहे होते हैं स्माइल करते समय, उसको हम गम्स को नीचे ला सकते हैं, हल्का सा बोटॉक्स ट्रीटमेंट या बॉटुलिनम टॉक्सिन को डाल के आपके लिप्स नीचे आ जाते हैं. इट इज अ 2 मिनट्स प्रोसीजर, हार्डली कॉस्ट यू 3,000 to 4,000 rupees एंड आपके लिप्स जो गम्स दिखते हैं हंसते हुए वो चले जाते हैं. आपकी चिन कई बार होती है पीछे है, आपकी फेशियल प्रोफाइल में अगर आप साइड प्रोफाइल देख रहे हैं तो चिन थोड़ी सी पीछे आ रही है तो फोटोज में अच्छा नहीं लगता है या आपकी कॉन्फिडेंस लेवल पे अच्छा नहीं लगता है. सो वी डू समथिंग कॉल्ड एज अ डर्मल फिलर. इमीडिएटली यू सी रिजल्ट्स विद इट एंड वो आपको अगले एक साल तक लास्ट करता है एक सेशन आपका. एंड सिमिलरली ऐसी और चीजें होती है जैसे आप स्माइल कर रहे हैं तो नाक आपकी फ्लेयर हो रही है तो हम हल्का सा स्प्रे बॉटुलिनम टॉक्सिन देते हैं और आपकी नोज को पतला कर देते हैं. इट लुक्स लाइक कि आपने सर्जरी कराई है बट सर्जरी नहीं होती है, 5 मिनट का काम होता है जिसको हम नेजल फ्लेयरिंग का बोटॉक्स बोलते हैं.
1: दीज
0: आर सम ट्वीक ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन को और फेस को काफी एस्थेटिक बना सकता है.
1: That's very nice, ma'am. कितनी सारी चीजें आजकल आ गई, लोग सिर्फ AI पे ही निर्भर रह गए. भाई AI से आगे भी दुनिया आ गई. आई नो AI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है हमारे आसपास जो कि हमें पता ही नहीं है. इनफैक्ट
0: ट्रू ट्रू ट्रू
1: या वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर दशा मैम, अपना टाइम आपने हमारे लिसनर्स को दिया. थैंक यू सो मच एंड लवली टॉकिंग टू यू. एंड सच बताऊं तो मुझे तो आपसे बहुत सारी बात करनी थी लेकिन कैसे 20 मिनट हो गए, अनबिलीवेबल.
0: सीरियसली थैंक यू सो मच. आई नो हम लोगों को 10 मिनट बात करनी थी, वी आर ऑलरेडी डन 20 मिनट्स. थैंक यू सो मच आनंद, आई लव
1: सेम हियर मैम, सेम हियर. थैंक यू फॉर योर प्रिविलेज टाइम.
0: थैंक यू.
1: जाते जाते कोई एक मैसेज जो आप कन्वे करना चाहती हैं तमाम ऑडियंस आपकी आवाज सुन रही है रेडियो पर.
0: जस्ट बी फिट एंड बी योर ऑसम सेल्फ, दैट्स ऑल आई वांट टू से टू एवरीवन.
1: दैट्स वेरी नाइस मैम, वंडरफुल मैसेज.
0: आप मुझे सुन रहे हैं RJ आनंद के साथ ऑन FM मुरादाबाद एंड आई एम डॉक्टर दिशा जग्गी एंड यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ डॉक्टर दिशा जग्गी.
1: लवली टॉकिंग टू यू मैम, थैंक यू सो मच. बाय बाय मैम.
0: थैंक यू. बाय बाय.
1: नाइस डे मैम. थैंक यू.
0: बाय-बाय.
1: गाइस आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6. फिर मिलेंगे किसी
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद.
3: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है.
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं.
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री.
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद.
6: टास्क के अनुरूप है प्रक्रिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता. कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था. और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम. पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश. नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 29 मई से लू से राहत की संभावना जताई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 29 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतरराज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
7: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स है उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
6: सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य एआई, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास एसआईआर कराने का अधिकार है।
8: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एसआईआर कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
6: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें संचालित करने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
9: 15 जून से जेयर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 30 रुपए होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह यूपी रोडवेज निगम से एमओयू की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
6: कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कई जगहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की 2023 की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस की तरफ से लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि खुले में जानवरों की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में गश्त करके शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। श्रावस्ती में संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 71 सेक्टर में बांट दिया गया है। अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अयोध्या रेंज के DIG सोमेन वर्मा ने बताया कि पर्व को लेकर संबंधित लोगों और समितियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
10: हमारी जो भी संबंधित जनपद हैं, वहाँ पे हर जगह पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, जहाँ पे DM और SP स्वयं रहे हैं। इसके बाद भी हर स्थान पे जहाँ पे कुर्बानी होती है, नमाज अदा होगी, वहाँ पे भी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट, उसको संवाद के माध्यम से, नोटिस के माध्यम सबको बता दिया गया है।
6: वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि शासन और जिला प्रशासन के आदेशों को का पालन करें। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महले ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है।
11: हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जो कि जहां पर की पहले से इजाजत है।
6: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
12: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
13: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
14: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
15: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
14: अरे वाह।
15: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
14: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभागों के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। सुश्री गुप्ता ने नागरिकों से भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच सावधानी बरतने की अपील की। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने शाहबाद डेयरी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परवेश साहिब सिंह ने राजौरी गार्डन में अंबेडकर चौपाल और हरिजन चौपाल के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सभी विभागों के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान दिल्ली सरकार के बजट में घोषित जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट की प्रत्येक घोषणा को पारदर्शिता, जवाबदेही और तय समय सीमा के साथ प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंच सके। बैठक में मॉनसून की तैयारियों को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जलभराव की समस्या को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में पेयजल, शौचालय और पुताई की व्यवस्था, पौधरोपण अभियान, जल संरक्षण और सौर ऊर्जा संबंधी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से मेट्रो मंडे और वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था का गंभीरता से पालन करने की अपील की, जिससे ईंधन की बचत और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिकों से भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच सावधानी बरतने की अपील की है। श्रीमती गुप्ता ने लोगों से भरपूर पानी पीने, शरीर को हाइड्रेटेड रखने और तेज धूप से बचने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने लोगों से पशु पक्षियों का भी ख्याल रखने की अपील करते हुए कहा कि घर, छत, बालकनी, दुकान और आसपास उनके लिए पानी तथा छांव की व्यवस्था जरूर करें। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
3: इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की, वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे, जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है, और 2 फॉर्म लेके जाएंगे, इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
2: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रनाथ सिंह ने आज शाहबाद डेयरी के सी ब्लॉक सुनहरी चौक और लाला स्कूल रोड क्षेत्र में सड़क तथा नाला निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये विकास कार्य मुख्यमंत्री विकास निधि के अंतर्गत किए जा रहे हैं ताकि क्षेत्र में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: श्री सिंह ने बताया कि शाहबाद डेयरी क्षेत्र में लंबे समय से खराब सड़कों, जलभराव और जल निकासी की समस्याओं को दूर करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शाहबाद में कोई भी ऐसी ब्लॉक नहीं छोड़ा जाएगा जहां पीने के पानी की समस्या बनी रहे। श्री सिंह ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अब तक पेयजल पाइपलाइन नहीं पहुंची है, वहां नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। श्री सिंह ने अधिकारियों को सड़क निर्माण की समय सीमा पहले से तय करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यदि कोई सड़क लंबे समय तक अधूरी या खुदी हुई पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
6: वैसे तो इसी साल लगभग साबा डेयरी का 90% काम पूरा हो जाएगा। दूसरा भवाना से लेकर साबा तक की नई ड्रेन, जिससे कि हमारे भी गलियारों में नालियां भरी रहती है, नाले साफ नहीं होते क्योंकि बाहर पानी नहीं निकल पाता, तो बड़ा नाला, जिसके कारण से भविष्य के अंदर पूरे साबा डेयरी के अंदर कभी भी नालों में पानी नहीं दिखाई देगा, ऐसी व्यवस्था भी। एक छोटा हॉस्पिटल बनाने की भी बात, लाल बिल्डिंग को इसी वर्ष तुड़वा कर नई बिल्डिंग बनाने का काम भी हम शुरू कर देंगे।
5: श्री सिंह ने जानकारी दी कि बवाना से शाहबाद डेयरी तक आदर्श ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की दिशा में भी काम चल रहा है, जिससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। आजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
2: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परवेश साहिब सिंह ने आज राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में अंबेडकर चौपाल और हरिजन चौपाल के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान श्री परवेश साहिब सिंह ने बताया कि राजौरी गार्डन विधानसभा में लगभग 1,33,00,000 रूपये की लागत से अंबेडकर चौपाल का निर्माण कराया जाएगा, वहीं हरिजन चौपाल का काम 1,08,00,000 रूपये की लागत से हो रहा है। इसके साथ ही लगभग 1,42,00,000 रूपये की लागत से एनडब्ल्यू चौक, खयाला स्थित शमशान घाट की मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्य भी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं ग्राम विकास, सामाजिक सहभागिता और बेहतर जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
7: प्रधानमंत्री जी की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए कोई भी काम ये हमारा नहीं छूटेगा। ये ऐसा भवन होना चाहिए और यहाँ पे अपने कार्यक्रमों के अलावा भी आदमी सुस्ता सके, बैठ सके, बात कर सके। और जितने भी यहाँ पे भवन बनेंगे, चौपाल बनेगी, कम्युनिटी सेंटर बनेंगे, सारे एयर कंडीशन। क्या है कि पानी कम आ रहा है, कहीं से भी लाना पड़े मैं आपके लिए पानी लेके आऊंगा।
2: श्री सिरसा ने कहा कि चौपालों के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सामुदायिक सुविधाएं मिलेंगी और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए व्यवस्थित स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि खयाला गांव में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से नई पेयजल पाइपलाइन, बड़ी सीवर लाइन और सड़कों के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार उन सड़कों और सर्विस लेन का भी पुनर्निर्माण कर रही है जिन पर पिछले 20 से 25 वर्षों में काम नहीं हुआ था।
8: जो सड़कें आज तक आपने बनती नहीं देखी थी, चाहे हनुमान मंदिर के सामने सूरज की लाइन डालनी हो या पश्चिम बिहार की तरफ जो नाले की तरफ सड़क निकलती है, ये कभी बनी नहीं थी। हमने आकर पिछली बार भी उसके काम शुरू किए। अब गांव के अंदर सारे नाले की बड़ी सड़कें, नाले डालने का, सारे गांव के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज डालने का काम चल रहा है और इसी तरह पीने की पानी और सीवेज की लाइनें डालने का काम चल रहा है। हमारे इलाके के अंदर जितनी चौपाले हैं और जितने कम्युनिटी सेंटर हैं सबको अपग्रेड करने का काम चल रहा है।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में कई मेट्रो स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदलने की घोषणा की है। रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन अब डॉ बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन कहलाएगा, वहीं रोहिणी ईस्ट का नाम रोहिणी मेट्रो स्टेशन और द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम द्वारका ककरोला होगा। इसके अलावा बेगमपुर रोहिणी में बन रहे नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम अटल खेल परिसर रखा जाएगा, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। साथ ही ब्रिटानिया चौक का नाम अश्विनी चोपड़ा चौक किया जाएगा। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नमो रेल 10 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। इससे पहले भी 8 अतिरिक्त फेरे शुरू किए गए थे, जिससे अब कुल 18 अतिरिक्त फेरे संचालित होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के अनुसार नई व्यवस्था के अंतर्गत सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक 10 अतिरिक्त फेरे और शाम 5 बजे से 8:30 बजे तक 8 अतिरिक्त फेरे संचालित किए जाएंगे। NCRTC ने कहा कि इससे यात्रियों का प्रतीक्षा समय कम होगा और सीटों की उपलब्धता बेहतर होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब तक 7,72,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें करीब 2,90,000 कार्ड वय वंदना योजना के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
9: इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को 10 लाख रुपए तक की नगद रहित स्वास्थ्य कवरेज मिल रहा है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख और दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त 5 लाख रुपए की राशि शामिल है। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों और पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सेवा कवरेज का लाभ मिल रहा है। दिल्ली सरकार के अनुसार इसके तहत अब तक 46,900 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। उपचार में अब तक 86,22,00,000 रुपए से अधिक के क्लेम का निपटारा हुआ है। योजना के तहत राजधानी के 233 अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिनमें 181 निजी और 52 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने हीटवेव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। लोकनायक अस्पताल में लू से प्रभावित मरीजों के लिए 14 विशेष बिस्तर और 70 बिस्तर का डिजास्टर वार्ड तैयार किया गया है। अस्पतालों में ORS, कूलिंग पैड और आपात सेवाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य हर पात्र नागरिक तक सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
2: दिल्ली नगर निगम MCD ने आज दक्षिणी जोन के कुतुब इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। निगम की संयुक्त टीम ने PWD और स्थानीय पुलिस के सहयोग से सड़कों तथा फुटपाथ पर बने अवैध ढांचे, प्लेटफॉर्म और ठेलों को JCB मशीनों की मदद से हटाया। कार्रवाई के दौरान शैक्षणिक संस्थानों और पार्कों की दीवारों के आसपास किए गए अतिक्रमण भी हटाए गए। दक्षिणी जोन के उपायुक्त राकेश कुमार ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने एक व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग कर लगभग 9,58,000 रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 50 ग्राम वजन के 4 सोने के सिक्के भी बरामद किए। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने पुलिसकर्मियों को उन्नत साइबर प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा की मौजूदगी में किया गया। पुलिस के अनुसार इस साझेदारी के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, साइबर फोरेंसिक, साइबर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और अन्य उभरती तकनीकों से जुड़े विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराध, ऑनलाइन वित्तीय ठगी और गलत सूचना फैलाने वाले अभियान जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को न्यू उस्मानपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 750 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की है, जिस पर केवल हरियाणा में बेचने का लेबल लगा था। राजधानी में आज दिन के समय तेज धूप रही और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल दिन के समय बादल छाए रहने की संभावना है, शाम और रात के समय हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। कल अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री और न्यूनतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभागों के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। सुश्री गुप्ता ने नागरिकों से भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच सावधानी बरतने की अपील की। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने शाहबाद डेयरी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परवेश साहिब सिंह ने राजौरी गार्डन में अंबेडकर चौपाल और हरिजन चौपाल के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
7: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
8: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
9: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
10: कॉल 8826213131।
11: हाँ जी, कैसे हालचाल? आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और यहाँ पर जब आनंद आता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है। और दोस्तों, आज तो मैं भी एक शायर बन के आ गया हूँ। माना कि मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अंदर की जो बातें हैं ना, जो अंदर की फीलिंग्स है, वो निकल जानी चाहिए और अच्छा होता है यार। और आज हमारे साथ में जो शख्स हैं, जो जनाब हैं, वो भी बस इसी के सरताज बनने वाले हैं हमारे स्टूडियो में। आज बहुत सारी बातचीत होगी आपके साथ, आपकी शाम को थोड़ा सा और खूबसूरती के साथ जो है हम ब्यूटीफुल बनाएंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। हाँ जी, फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भावनाएं मिलती हैं सुरों से, वहीं शुरू होती है हमारी महफिल, दिलों की बात दिलों के साथ। आपका अपना रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद, जहां पर आज प्यार मोहब्बत इश्क और ना जाने कौन कौन सी बातें होने वाली है, लेकिन जो भी बातें होंगी वो सिर्फ आपके काम की होंगी और आपसे रिलेटेड होंगी, यानी कि आपको एंटरटेनमेंट का डोज भी देंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और अभी मैं अपनी बातों को देता हूँ विराम, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है अब उन्हें नहीं करने देंगे आराम, उनसे बातचीत करना है यार, यही तो हमारा काम है। हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेशन में आपका।
12: मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू आनंद जी।
11: जी, हालांकि इनकी आवाज आपने पहले भी सुनी है, लेकिन ये अभी काफी सीरियस होके बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। सर मतलब लंच वंच खा पी के आए हो ना आप स्टूडियो में हमारे?
12: नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, जरा एक शुरुआत होती है तो उससे फिर आगे बढ़ना होता है, तो वही मैं उस इंजन को स्टार्ट करने के।
11: बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, आप इंजन स्टार्ट कीजिए, हमने तो पूरी गाड़ी स्टार्ट कर दी है सर। वेल, आगे बढ़ते हैं सर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में हमारी जनता को अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए जरा आपने आपको।
12: जी, मेरा परिचय क्या है कि मैं आप ही के बीच का हूँ।
11: बिल्कुल सर।
12: मेरा नाम मनोज मनु है
11: जी,
12: और शायरी और कविताओं से मुझे निस्बत है।
11: क्या
12: मैं
11: बात है?
12: अपने परिचय के बारे में चार मिसरे ही क्यों ना रखूं?
11: बिल्कुल इरशाद जनाब, मजा आ जाएगा फिर तो। आए हाय,
12: कहता हूँ कि अपनी धुन में रहता हूँ, बस एक खुमारी मुझमें है।
11: अरे वाह।
12: अपनी धुन में रहता हूँ, बस एक खुमारी मुझमें है, कौन है कैसा खबर है मुझको, सब होशियारी मुझ में है।
11: क्या बात है।
12: पीतल नगरी घर है मेरा, मैं मनोज उपनाम मनु। पीतल नगरी घर है मेरा, मैं मनोज उपनाम मनु। गीत गजल दोहे से निस्बत, ये बीमारी मुझ में है। गीत गजल दोहे से निस्बत, ये बीमारी मुझ में है।
11: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, सुपर फैंटास्टिक। तो मनु जी, एक बात मैं आपसे, मैं आपको मनु जी बोल सकता हूँ ना सर?
12: क्या बात है मेरा
11: सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तो आपकी आवाज में बेस इतना अच्छा है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतना बढ़िया आप डिलीवर कर रहे हैं अपना, लेकिन ये जो आपने अभी अपने आप को भी इन शब्दों में पिरो दिया, मुरादाबाद, और फिर अपने आप को भी कनेक्ट कर दिया, तो ये खूबसूरती कहाँ से आती है मुरादाबाद के कलाकारों में? अभी तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, सबका कुछ ना कुछ रहा है मुरादाबाद की चीजों से रिलेटेड, अपने आप को भी उसमें शामिल देना, ये मतलब कैसे कर लेते हैं आप लोग जब लिखते हो तो उसके अंदर खुद को फील करते हो क्या?
12: आपने सुना होगा कि अल्लाह अगर तौफीक ना दे इंसान के बस की बात नहीं।
11: एग्जैक्टली,
12: तो ये बस प्रभु का आशीर्वाद है।
11: क्या बात है,
12: जिसने जो शब्द अता किए हैं उनके माध्यम से जो जहन में आता जाता है, उतरता जाता है, वही कहा जाता है। कहते हैं ना कि शेर लिखा नहीं जाता, कहा जाता है, पढ़ा जाता है,
11: फील किया जाता है।
12: जी जी, तो बस वही जो वो दे देता है, वही हम ले लेते हैं।
11: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया सर। और ऐसी खूबसूरत बातें जो है आज सुनते रहेंगे आप इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल आपकी शाम को खूबसूरत बना रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनोज वर्मा मनु जी, और आज आपकी शाम को स्पेशल बनाने के लिए कुछ तो अपनी डायरी में चिट्ठा लेकर आए हैं, पूरा एकदम भारी भरकम तैयारी के साथ आए हैं। तो सर शुरुआत बात कैसे होने वाली है, क्या है जो आप हमारे श्रोताओं को आज की शाम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं मैं, मतलब बता दूं आपको गाइज, जैसे मनु जी हमारे स्टूडियो में आए तो उन्होंने बोला कि आनंद जी अपनी रफ्तार थोड़ी कम रखिएगा, तो मैं थोड़ा सा डर गया कि भाई ऐसे में कौन सी एक्सप्रेस में सवार होता हूं जो सर ने मेरे को ये पहले से अलर्ट भेज दिया। ऐसा क्यों बोला सर आपने? माना कि आपका फ्लो वो अपना शायर वाला चलेगा, बट मेरा तो वो जॉकी वाला ही रहेगा ना सर।
12: जी, एक शेर कहा जाता है,
11: हर बार
12: बर्क रो था,
11: हाँ
12: वो बर्क रो था,
11: हाँ,
12: कहाँ रह गया जाने पीछे,
11: हाँ,
12: अब इंतजार करेंगे सकिश्तापा उसका।
11: हाँ, अरे वाह,
12: सकिश्तापा यानी कि जो धीरे धीरे कदमों से चलने वाले हैं,
11: हाँ, हाँ,
12: वो इंतजार करते रह जाते हैं।
11: ओके,
12: तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोफेशन है और आप जुड़े हुए हैं, शहर मुरादाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं
11: जी,
12: तो ये बहुत जो उसकी स्पीड है आपकी, वो स्पीड काबिले तारीफ है, लेकिन ये जो शायरी है,
11: हाँ,
12: ये हसास का विषय है,
11: इसमें ठहराव चाहिए,
12: एहसासों का विषय है,
11: और
12: इसमें ठहराव की बहुत जरूरत है,
11: बहुत जरूरत है,
12: बस इसीलिए मैंने आपसे दर्ज की थी
11: कि नहीं तो मैंने वो पब्लिकली रख दी ना सर, देखिए इतनी अच्छी बात है, ताकि वो चीज हमें पता तो चले और हमारी ऑडियंस को भी पता चले।
12: नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, जब हम पब्लिक के सामने होते हैं तो हमारा अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ पब्लिक के लिए होता है,
11: क्या ही होता है, उसी के लिए होता है।
12: बेशक इसमें कोई जरा सा भी गुंजाइश नहीं कहने की, मुरादाबाद की और आपके एफएम की जो जनता है, जो श्रोता है, वो निहायत खास हैं, कोई आम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं रेडियो एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज पर।
11: बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बोला, और आप भी काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लग रहा है आरजे बन जाएंगे आप भी अगर ऐसी प्रैक्टिस चलती रही तो। खैर आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है मनु जी आपसे बातचीत करके, और वैसे तो कई मर्तबा मेरी इनसे मुलाकात होती रहती है आते जाते रोड के किनारे, सड़क के किनारे हम लोग गुफ्तगू करने लग जाते हैं जब भी मिलते हैं, लेकिन आज जो ये इंटरेक्शन हो रहा है ना सर, मेरा आपका पहली बार हो रहा है शायद ये कॉन्वर्सेशन ना?
12: जी जी, ये पहली बार ही है जो मैं हिम्मत समेट के आपके सामने हूँ।
11: अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आप हमेशा इतना अच्छा करते हैं, मैं इवन आपके स्टेटस भी देखता रहता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, आप कनेक्टेड है मेरे साथ, तो जब भी कोई ओकेजन होता है सर का हम देखते रहते हैं, मान सम्मान और आपकी जो चीजें आप करते हैं मतलब बढ़िया है, और मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास कलाकारी है, अगर वो पहचान के उसमें कुछ अच्छा करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है।
12: सही कहा आनंद जी, ये बिल्कुल आपकी निस्बत है, आपकी मोहब्बत है जो मुझे इतनी आपने सम्मान प्रदान किया है। मैं फिर अपनी दो लाइनें रहूं?
11: जरूर सर,
12: ये यही शेर में दो लाइनें दो मिसरे होते हैं जो आपके साथ साथ हमारे जो सामाईन जो श्रोतागण है
11: जी जी
12: उनके लिए भी है कि मेरे शेरों में जो लज्जत है मेरा कुछ भी नहीं।
11: वाह।
12: मेरे शेरों में जो लज्जत है मेरा कुछ भी नहीं, उसकी बख्शी हुई नेमत है मेरा कुछ भी नहीं, और चंद मिसरों को जो तरजीह अता करता है, ये तेरा हुस्ने समात है मेरा कुछ भी नहीं।
11: क्या बात है,
12: ये तेरा हुस्ने समात है मेरा कुछ
11: गजब भी नहीं। बाजी गजब, मुझे लग रहा है कि दोस्तों कल सुबह अगर मैंने उर्दू के कुछ भी शब्द नए बोले तो उसमें सारा योगदान मनु जी का होगा, आज पूरी उर्दू सिखा के जाने वाले हैं। मतलब क्या इनके शब्द है, मतलब तलफ्फुज देख रहे हैं आप इनका कितना गजब का है सर, मतलब
12: शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया,
11: मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन करते हुए सर।
12: ये कॉम्प्लीमेंट्स है मेरे लिए,
11: एब्सोल्युटली सर आप डिजर्व करते हैं, और गाइस हम जो है आपकी शाम को ऐसे ही रॉकिंग बनाते रहेंगे। काम करते हैं, रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो सर से कुछ बेहतरीन सा सुनेंगे जो आपकी शाम को और भी बेहतर से बेहतरीन बना देगा। फिलहाल आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस गीत के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैंने कहा जी आपका खैर मकदम करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सर आपका भी इस्तकबाल करते हैं। आज मैं भी थोड़ा उर्दू में, थोड़ा शायराना अंदाज में मैं भी कुछ न कुछ कहता रहूंगा। जब इतने खास लोग सामने बैठे हों शानदार प्रस्तुति के साथ तो फिर वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो मनु जी वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में, और मैं चाहूंगा कि कुछ बढ़िया से अपने अल्फाजों में कुछ बढ़िया से हमारे लिसनर्स को सुना दें आप।
1: शुक्रिया आनंद जी, मैं फिर रखता हूँ दो मिसरे
0: जी।
1: तमाशा बन के रह जाए मरासिम,
0: वाह,
1: मोहब्बत में कभी इतना ना झुकना। तमाशा बन के रह जाए मरासिम, मोहब्बत में कभी इतना ना झुकना।
0: क्या बात,
1: उसी की जी हुजूरी मार देगी, मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात है,
1: मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे भी कुछ लिखते हैं सर, या यहीं पे ये लाइन जो है एंड हो जाती है?
1: जी लाइनें तो हैं, लेकिन जो मौजू है वही चीज सामने आती है।
0: क्या बात है, लेकिन सर एक बात तो है कि कहीं ना कहीं जो प्यार करने का तरीका होता है, जब आप शेरो शायरी के साथ आते हो तो उसका मजा डबल हो जाता है। आप लोगों तक वो बात पहुंचा देते हो जो एक्चुअली आप जानते हो, और जो सुन रहा होता है ना, जो उसको फील करता है तो वो समझ पाता है, क्योंकि जो कनेक्शन होता है ना वो दिल से दिल तक का होता है। और ये बात जो आप अपने अल्फाज के थ्रू कह रहे हैं हमारे लिसनर्स से, जो अपनी शायरियों के थ्रू रख रहे हैं, ये ज्यादातर लोग रिलेट कर पाएंगे जो दिल से इस चीज को फील करते हो या इस चीज से जुड़े हो कहीं ना कहीं।
1: नहीं, मैं समझता हूँ कि शायरी का जो अपना मकाम है, जो उसकी सफलता है
0: जी जी,
1: वो भी यही है कि जो मन कह रहा है वो मन सुने सामने वाला।
0: वही वही, बिल्कुल सही कहा,
1: कनेक्ट करता है, तो ये शायरी वास्तव में अपनी अपनी सार्थकता महसूस कराती है।
0: गॉट इट, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। आजकल के प्यार के बारे में कुछ है आपके पास, कुछ इंटरेस्टिंग? आजकल का जो सोशल मीडिया वाला जमाना है, सोशल मीडिया वाला प्यार है, जहां एक घंटे के अंदर प्यार हो जाता है, वहीं दूसरे घंटे में लोग ब्लॉक हो जाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर कोई नया मिल जाता है। तो इस आजकल का जो जमाना चल रहा है, अगर उसकी बात करूं तो उस पर कुछ अगर आप रखना चाहें।
1: देखिए, चीज तो होती है, दरअसल क्या है, बाकी की चीजें मौका ही नहीं देती। जिंदगी इतनी तेज भाग रही है मौजूदा हालात में
0: 100%
1: कि उसे आप कुछ भी नहीं कह सकते, रोक नहीं सकते। जहां रुकते हैं तो दुनिया आगे निकल जाती है। लेकिन आप इस बारे में ये नहीं कह सकते कि जो कली, जो जो जो एक पौधा, उसके जो बीज मोहब्बत का उस दिल में फूटा था, वो दबके रह गया। हो सकता है वो खत्म हो गया, ऐसा आप नहीं कह सकते। उनके लिए मैं दो लाइनें बताता हूँ आपको।
0: Please, sure.
1: ये किसी शय का किसी तौर भी बदल ना हुई, ये किसी शय का किसी तौर भी बदल ना हुई, ये मोहब्बत की कहानी भी मुकम्मल ना हुई।
0: क्या बात है,
1: ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है
0: जी।
1: तो जो सच्चाई है वो हमेशा सच्चाई रहती है, बस यही सच्चाई का एक सार्थक गुण है। ये किसी शय का किसी तौर भी बदल ना हुई, ये मोहब्बत की कहानी भी मुकम्मल ना हुई। हमने माना कि तेरा साथ नहीं किस्मत में, मगर ये भी क्या किसी और से पहल ना हुई।
0: क्या बात है,
1: मगर ये भी क्या किसी और से पहल ना हुई।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, कहते हैं कि सच्चा प्यार वही होता है जो मुकम्मल नहीं होता है, इसमें कितनी सच्चाई है कि सच्चा इश्क वही होता है जो आपको ना मिले? ऐसा बहुत सारे लोगों को कहते मैंने सुना है, इवन मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल एकदम सच्चा वाला प्यार करते हैं, एकदम सत्यवान टाइप वाला, बट उनको जब नहीं मिलता तो वो कहते हैं सच्चा प्यार तो वही है जो नसीब ना हो। क्या सच में इसमें इस बात में सच्चाई है? वैसे आप लोग इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं?
1: सच्चाई क्या है? सच्चाई दरअसल ये है कि जब तक, जैसे मैं एक आपको फिर वही शेर के माध्यम से बताना चाहूंगा
0: जी, प्लीज।
1: हमारे एक उस्ताद शायर ने कहा है
0: जी जी,
1: आ तमन्ना तुझको रोलू वक्ते वस्ल।
0: क्या बात,
1: वस्ल यानी कि मिलन का जो समय होता है
0: जी जी।
1: आ तमन्ना तुझको रोलू वक्ते वस्ल, आज तू दिल से निकाली जाएगी। यानी कि जो चीजें पूरी हो जाती हैं फिर वो खत्म हो जाती हैं। और जैसे हमारे गालिब चचा ने भी कहा है कि वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर का पार होता।
0: क्या,
1: तो जाहिर सी बात है कि जो उस तीर की खलिश है, दर्द है, वो जब तक गड़ा रहता है तब तक मुकम्मल रहती है, लगातार रहती है। यही अधूरी मोहब्बत का सिलसिला भी है, वो पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं लगातार वो अपनी पीस बनाए रखती है, और जो पूरी हो जाती है वो अपना दम तोड़ देती है।
0: वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया मनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसी तमाम जानकारियां जो आज हम सर से निकलवाते रहेंगे और तमाम ऐसे उनके दिल की फीलिंग्स कह सकते हैं जो आज वो हमारे साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अपने थॉट्स, अपनी बातें, अपनी शायरी, सब कुछ आपके लिए यहाँ पर आज की शाम हम आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करिए, रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद लौट कर आएंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। मेरा नाम आनंद है।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन। आप सुन रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्टेंट।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
0: हाँ जी, कैसे हालचाल? आप सुन रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, नो डाउट आप इतना अच्छा बोल रहे हैं। और सर देखिए, बातचीत तो चलती रहेगी लेकिन थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को और मुझे भी जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप वैसे प्रोफेशनली क्या करते हैं अपनी रियल।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं आरजे आनंद के साथ और ये स्टेशन है दिल से दिल तक वाला। यस ऑफ कोर्स यू आर लिसनिंग टू आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। आज स्टूडियो की शाम को और भी खूबसूरत और रंगीन बना रहे हैं अपनी बातों के साथ मनु वर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में है एंड अभी मैं भी उनका साथ दे रहा हूँ, ढेर सारी बातचीत उनसे कर रहे हैं। ऑफकोर्स आप इन्जॉय कर रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों इतना और कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है, कुछ बढ़िया कला है, आप लिखते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा सुना सकते हैं, आप अच्छी शायरी करते हैं, जो भी आप करते हैं व्हाटएवर, आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। हमारा सोशल मीडिया का हैंडल आपको मिलेगा एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, या ऑफिशियली अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो वहां की भी आप डीएम कर सकते हैं अगर आप हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं तो, या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपका टैलेंट है, जो आप हमारे साथ परफॉर्म करना चाहते हैं। हमारे स्टूडियो के नंबर पर आप हमें भेजिए ना अपनी एंट्रीज 9837896896, यानी कि 9837896896 ये स्टूडियो का नंबर है। इस नंबर पर आप बिना किसी देरी के फटाफट से जो भी आप बढ़िया करते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, तो ये सबके लिए खुल चुका है। बिल्कुल आप हमें पहुंचाइए अपने प्यारा सा एक मैसेज अपने टैलेंट के साथ, उसके बाद हम आपसे खुद ही कनेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अभी मनु जी से हमने ढेर सारी शेर व शायरी तो सुन ली है, नज्म हमने सुन ली है, अब बारी है एक ऐसी चीज की जो शेर व शायरी से भी परे है। अच्छा सर, शेर व शायरी से मुझे याद आया, शेर व शायरी से हम प्यार मोहब्बत इश्क हर चीज की बातें करते हैं शेर व शायरी के माध्यम से, लेकिन अगर हमें कोई सामाजिक मैसेज डिलीवर करना हो, हमें कोई सोशल मैसेज देना हो या आम जनता के हित की बात करनी हो, तो क्या ये भी शेर व शायरी और गजलों के माध्यम से हो सकती है क्या?
1: हम गजल के माध्यम से, शेर के माध्यम से क्या नहीं कह सकते,
0: मतलब वही मैं आपसे जानना, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होती है बहुत सारी चीजें,
1: काव्य की यही खूबसूरती है।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि मेरा जो कविता में भी
0: जी
1: और गजल में भी मैं दोनों को पसंद करता हूँ।
0: क्या बात है,
1: और दोनों का मैं विद्यार्थी हूँ।
0: वेरी नाइस।
1: तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुरातन समय में जो हम वेदों की बात करते हैं, ऋचाओं की बात करते हैं, जो अनुष्टुप छंद में आपने देखा होगा
0: जी,
1: ये काव्य चीज यही है जो हर तरीके का संदेश देता है।
0: क्या बात,
1: हर तरह का संदेश देता है, और इसमें सारी की सारी जो जानकारियां हैं जो हमारे हित के लिए हैं, जो सामाजिक हित के लिए हो सकती हैं, इवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा, राष्ट्र पर, देश पर, विश्व पर, और अपने अंदर के मन पर, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण पर भी, यही चीज आगे बढ़ी है। बस भाषाओं का फेर है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा सर, भाषाओं का,
1: उर्दू से ली गई है,
0: बिल्कुल
1: फारसी से ली गई है, और काव्य का क्षेत्र हमारे सनातन से
0: जी
1: जुड़ा हुआ है, कविता क्षेत्र वही है। मैं आपको दो वानगी इसकी दूंगा।
0: जरूर सर।
1: एक रचना के माध्यम से,
0: हाँ जी
1: ये हिंदी रचना है
0: जी,
1: आप देखें किस तरह का संदेश कैसे देती है, एक सामाजिक संदेश, और वर्तमान में ये बहुत आवश्यक है। बच्चे जिनका अपना एक अलग आइडियोलॉजी है, ये क्या सोचते हैं, जो वर्तमान में हमारा पार का ध्रुवीकरण हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली हमारी हो गई है, ऐसी कंडीशन में ये रहता है कि एक बच्चा या दो बीबी, इस तरीके की कंडीशन हो गई है, तो एक बच्चा क्या सोचता है, ये संदेश बच्चे के माध्यम से बड़े को पहुंच रहा है।
0: क्या बात है,
1: हम उस चीज को देखें, सोचें, महसूस करें
0: जी
1: और कोशिश करें कि हम कैसे बदल सकते हैं। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, ये एक बच्चे की तकलीफ है जो रचना प्रस्तुत कर रही है। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, अलग पले दादा दादी का साथ न मिल पाया, चाचा चाची बुआ सभी का मेहमानी साया, एक अकेली

0: आया है बस रिश्ते नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। रंग बिरंगे फूल तितलियां सब मॉनिटर पर, आभासी दुनिया में जीते हम ऐसे अवसर। रंग बिरंगे फूल तितलियां सब मॉनिटर पर, आभासी दुनिया में जीते हम ऐसे अवसर। धूप सुनहरी क्या वो घर वो अंगने नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे।
1: क्या बात है।
0: भेंट चढ़ गई प्रदूषण की होली दिवाली, भेंट चढ़ गई प्रदूषण की होली दिवाली, क्या खुशियां त्योहारी सब लगता खाली खाली।
1: क्या बात है।
0: वो त्योहारी रंग बिरंगे सपने नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे।
1: क्या
0: देखें, लगे हमारे बचपन में अब सुर्खावों के पर, अकेला बच्चा रह गया है, सारी की सारी इंटेंशंस उस पर आ गई और इतना सोफिस्टिकेटेड उसे बना दिया गया
1: जी, जी।
0: कि उसके बचपन का क्या होना है, ये उसका अधिकार सारा छीन लिया गया है। आप देखें, हालांकि हम महसूस करते हैं कि हम अपने बच्चे को इतनी सहूलियतें इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है
1: जी।
0: लगे हमारे बचपन में अब सुर्खावों के पर, केवल शिष्टाचार ओढ़ जीना होता अक्सर। लगे हमारे बचपन में अब सुर्खावों के पर, केवल शिष्टाचार ओढ़ जीना होता अक्सर। बचपन से बतियाते दो पल सच्चे नहीं रहे, बचपन से बतियाते दो पल सच्चे नहीं रहे। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे।
1: क्या बात है।
0: तो ये रचना
1: बहुत ही बढ़िया,
0: क्या कहती है, एक बचपन क्या कहना चाहता है, उसकी अपनी क्या मंशा है,
1: एक मैसेज भी है इसमें। एक सोशली आपने बहुत अच्छी, मतलब कहने की अवेयरनेस भी पहुंची है, और जो आपने एक बचपन की बात करके हमें फ्लैशबैक में पहुंचा दिया, उसकी
0: बात
1: ये लग रहा
0: था कि आप थोड़ा सोच दिए।
1: नहीं सच, इसीलिए ना सर, कि मतलब एक अपना, एक तो बचपन जब शब्द आता है तो हम रिलेट करने लगते हैं तुरंत, हम अपने उस टाइम में पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बचपन एक इतनी खूबसूरत चीज है कि हर जवान आदमी सोचता है कि आज एक बार फिर से बचपन आ जाता, हाँ फिर से बच्चा बन जाता। तो वो चीज है
0: जो संभव नहीं है,
1: जो संभव नहीं है बिल्कुल। लेकिन कहते हैं इंसान को अपने अंदर का बचपना कभी नहीं मारना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, उसकी कुछ हरकतें, उसकी कुछ शरारतें होती हैं जो उसको बचपन में ले जाती हैं, उसकी आदतें ऐसी फील कराती हैं सामने वालों की कितना बचपन है इसके अंदर।
0: सही कहा, बिल्कुल सही कहा आनंद जी आपने। दरअसल क्या है कि हमारी जिम्मेदारियों के साथ हमें एक सीरियसनेस होनी चाहिए,
1: होनी चाहिए।
0: लेकिन मैं समझता हूँ जो आपने कहा अभी कि अपना बचपन नहीं भूलना चाहिए, मैं ये महसूस करता हूँ कि वो बचपन जो नहीं भूलता है वही अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखता है।
1: करेक्ट, ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट।
0: बहुत बढ़िया बात
1: जी
0: है।
1: शुक्रिया सर,
0: आप भी बचपन में पहुंच गए थे।
1: बिल्कुल, मुझे बहुत आनंद आया,
0: सार्थकता के महसूस।
1: मुझे बहुत आनंद आया, थैंक यू वेरी मच। आपने ये खूबसूरत बात, ये जो कुछ पंक्तियां थी ना, ये एक्चुअल में वो रियलिटी से हमें रूबरू करा रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। और मनु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपने निकाला। लेकिन मैं चाहूंगा कि जाने से पहले, इजाजत लेने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम म्यूजिक वाला, क्योंकि गीत संगीत भी जरूरी है सर बातचीत के साथ, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो एक छोटा सा गीत, उसके बाद जो है लौट कर आते हैं मनु जी के पास और उनसे इजाजत लेंगे, लेकिन जाने से पहले उनसे कुछ बेहतरीन भी सुनेंगे। तो सर एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं, ठीक है सर। चलिए दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: दोस्तों वेलकम बैक है और ये महफिल सच रही थी आज कुछ खास शब्दों से, कुछ खास शेरो शायरी से और कुछ खास ऐसी बातों से जो शायद आपको आज सुन के आनंद आ गया होगा। आनंद के साथ और साथ में मनु जी भी स्टूडियो में उपस्थित हैं आज की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए। आई होप सर आपको भी अच्छा लगा हो हमारे स्टेशन में आके।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वास्तव में हम यहाँ पर दो हैं लेकिन तीन है, एक मैं आनंद और एक आनंद।
0: क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोला आपने। और मतलब ये जो संवाद है, जो कॉन्वर्सेशन है, ये कैसे, मतलब इतना टाइम हम लोगों का निकल गया, हमें पता भी नहीं चल रहा है, मतलब हाउ इंटरेस्टिंग, कैसे जा रहा है मुझे भी नहीं पता। सर वो ये ना, जब दिल से आप काम करते हो तो मजा आता है, अरे यार ये बोरिंग लग रहा है, चलो कब खत्म होगा, कब भागेंगे, वो फीलिंग नहीं इसमें, लगता और करो और ज्यादा करना है, वो है, बस वो भूख बढ़ती रहती है फिर। चलिए सर, अब जो है हमारा जाने का समय हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमारे लिसनर्स को आप क्या सुनाना चाहेंगे, क्या कुछ खास उनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे जाते जाते, क्या छोड़ के जा रहे हैं अपनी स्पेशल छाप।
1: जी आनंद जी, अभी पीछे जो बात चली थी कि रचना, कविता, शायरी क्या सामाजिक संदेश भी देती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उसके परिपेक्ष में कि हिंदी की रचना हुई थी
0: जी,
1: दो चार मिसरे, दो चार शेर आप उर्दू के गजल के सुने। जमी पे पाँव फलक पे निगाह याद रहे,
0: क्या बात है,
1: जमी पे पाँव फलक पे निगाह याद रहे, मियाँ बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रहे, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रहे, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रहे, करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो,
0: क्या बात है,
1: करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, मगर गुनाह से तौबा गुनाह याद रहे, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रहे। देखिए पहले बुजुर्ग ही सलाह देते थे, मशवरे देते थे, और रहम पसंद बनो, ये पसंद है उसकी, ये ईश्वर के लिए है कि रहम पसंद बनो, ये पसंद है उसकी, मुआफियों में है रब की पनाह याद रहे, नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रहे, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रहे, जमी पे पाँव फलक पे निगाह याद रहे,
0: क्या बात है,
1: मियाँ बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रहे।
0: nice.
1: और चलते चलते
0: जी जी,
1: मैं अपने सुधी दर्शकों श्रोताओं के लिए, आपके FM के इन श्रोताओं के लिए जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दो शेर रखता हूँ और उसके बाद इजाजत।
0: बिल्कुल सर, श्योर।
1: मेरी सच्चाई मेरा एतबार सुनता है,
0: वाह,
1: मेरी सच्चाई मेरा एतबार सुनता है, मेरी खामोशियां ठहराव गार सुनता है,
0: क्या बात है,
1: और बराए हुस्ने समात गजल के मिस्रों को उठा के हाथ उन्हें बार बार सुनता है। और ये हमारे समाइन के लिए, ये श्रोताओं के लिए कि ये तरीका है मेरी हौसला अफजाई का,
0: क्या बात,
1: ये तरीका है मेरी हौसला अफजाई का, बड़े अदब में वो करके शुमार सुनता है,
0: क्या बात है,
1: बड़े अदब में वो करके शुमार सुनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी।
0: सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके साथ जो है हमने भी एक जो स्पेशल ये कन्वर्सेशन की, ये जो एक शो था, ये शो था, ये एक बेसिकली मेमोरी थी,
1: क्या बात है,
0: है ना, जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो काम तो होता ही, लेकिन एक याद भी हम बना लेते हैं,
1: ये मोहब्बत है आपकी, मुझे ताउम्र याद रहेगी।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको ऐसे ही परेशान करने के लिए बुलाते रहेंगे,
1: क्या बात है, मेरी खुश नसीबी है,
0: अरे बिल्कुल,
1: जब भी आप याद करेंगे
0: जरूर,
1: आप... नहीं सर के बल दौड़ेगा आएंगे।
0: अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे तो हम मुलाकात जो है करते रहते हैं नो डाउट, लेकिन जब लिसनर के साथ मुलाकात होती है तो उसका जो मतलब एक माहौल है वो अलग ही हो जाता है।
1: जी बेशक,
0: है ना, तो सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप आए, और दोस्तों आप कहीं मत जाइए, ऐसे इंटरेस्टिंग शोज के लिए, इंटरेस्टिंग बातों के लिए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, लोकल फॉर वोकल के लिए ट्यून इन रहिए आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पे, जो कहता है भैया कनेक्शन जो है ना आपका और हमारा वो दिल से दिल तक का है। जल्दी मिलेंगे फिर कुछ और नए कलाकारों के साथ, कुछ और नई बातों के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी में मुस्कुराना बहुत जरूरी है, और हाँ ढेर सारा पानी पीना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल गर्मियां बहुत ज्यादा है,
1: बिल्कुल सही
0: है ना,
1: ये संदेश रेगुलर रहना चाहिए,
0: एब्सोल्युटली। तो बाकी दोस्तों चलिए अभी हम चलते हैं, तो अब जो है समय हमें और इजाजत नहीं दे रहा, एक खूबसूरत नगमा आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिए, और बाकी ऐसे ही प्लीज कीप लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6, बाय बाय।
2: टायर लो सोना जीतो,
3: क्या
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका, जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क मुरादाबाद, कॉल 9412211111,
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजवाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और देखिए, आप अक्सर मुझे अकेले सुनते थे शो में, लेकिन मेरे साथ है जिनकी आवाज आप दोपहर 3 बजे भी सुनते हैं। समझ गए होंगे गाइस कि हमारे साथ कौन कनेक्ट हुए हैं। आप कहें तो मैं उनकी आवाज सुनवा देती हूँ। चलिए जी, सुनवाई देती हूँ। हाँ जी सर, क्या हाल चाल है आपके?
1: नमस्कार रीना जी, कैसी हैं आप?
0: मैं तो एकदम बढ़िया, फैंटास्टिक। आप बताओ कैसे हो?
1: आपकी जो ये गुडी गुडी गुड वाली इवनिंग है ना, ये ऐसी कानों में गूंजती है कि चाहे मॉर्निंग हो, चाहे आफ्टरनून हो, चाहे नाइट हो,
0: हर टाइम गूंज जाती है।
1: हमेशा ऐसा लगता है गुड इवनिंग है जी।
0: क्या बात है, वो पता है आपको, एक जब ओरा बन जाता है ना तो आपके उस जुबान पे रखा रहता है, चाहे आप कितना भी चेंज कर लो। बहुत ट्राई भी करते हैं लेकिन कभी कभी फिसल जाती है जुबान, है फिसल तो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कह रही है।
0: लेकिन आज आप रात को कैसे, आप तो दोपहर 3 बजे आते हो, लेकिन आज रात को कैसे, क्या मतलब, क्या कुछ लाए हो हमारे श्रोताओं के लिए?
1: मैं अपने लिसनर्स के लिए यही लेके आया हूँ कि हर किसी की लाइफ में ना एक ऐसा इंसान जरूर आता है जिसकी एक स्माइल पूरा दिन, उसके उस स्माइल से उसका पूरा दिन बन जाता है।
0: क्या बात है, मतलब एक मुस्कान चेहरे पर जरूरी होना चाहिए। क्या बात है, श्रोताओं ढेर सारी बातें करेंगे। अखिल भैया मेरे साथ है, ये आपको शेर और शायरी का पाठ पढ़ाने आ गए हैं आज। जो आपके दिल में कोई दर्द छुपा है उसको बाहर निकालने का मौका आ चुका है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9823789689। चाहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं और आप भी शेर और शायरी सुना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप व्हाट्सएप मैसेज ही करें, क्यों सही बोल रही हूँ ना?
1: बिल्कुल सही है, आप कॉल भी कर सकते हैं और अपनी शायरी को मैसेज भी कर सकते हैं।
0: चलिए जी, फिलहाल बहुत प्यारा गाना जो कि इन्हीं के पसंद से, इन्होंने कहा कि इसी गाने से ओपनिंग करते, आपको सुनने के बाद पता चलेगा ये कौन सा गाना है।
2: साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी,

0: गुड वाली इवनिंग है और मेरे साथ है अखिल भैया, जो कि आपने बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया है। और आप बताइए, आज बड़े खुश है आप?
1: मैं बहुत खुश हूँ। चलो खुशी की बात ही बता दूंगा कि अब मैं अपने सारे श्रोताओं के साथ इसी समय पर जुड़ने वाला हूँ।
0: वो तो जुड़ चुके हैं आप, जुड़ने क्या वाले, जुड़ने के भी इन द सेंस कि आप थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन आप ऑलरेडी कनेक्ट हो गए हैं, तो आज मतलब क्या कुछ लेकर आए हैं?
1: कुछ कहना चाहूंगा पहले मैं, मोहब्बत सूरत से नहीं होती जनाब, मोहब्बत तो दिल से होती है। सूरत उनकी खुद ही प्यारी लगने लगती है जिनकी कदर दिल में होती है।
0: वही बात है ना, सूरत से प्यार मत करिए, सीरत से करिए। सूरत है वो ढल जाएगा।
1: क्या बात करी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
0: हाँ, तो दिल प्यार यानी कि दिल से होना चाहिए। लेकिन आजकल का प्यार आपको पता है कैसा है? आजकल का प्यार मेकअप वाला है। जो मेकअप कर रहा है, जो चमक रहा है, वही बिक रहा है। क्योंकि आपको पता है कि चमकता हुआ इंसान बहुत जल्दी उस भाई ये अच्छी है, बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन अंदर से हमें पता नहीं चलता कि कैसा इंसान है।
1: तो आज का जो सवाल है ना अपने श्रोताओं के साथ, हमारे साथ यही सवाल है, क्या आपको याद है आपको अपना पहला क्रश, स्कूल वाला, ट्यूशन वाला, या इस समय इंस्टाग्राम वाला? हमें मैसेज करिए या बताइए।
0: हमारा नंबर है 9837896896 पर आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए एक और बड़ा ही खूबसूरत सा गाना, सो इस गाने को एंजॉय करेंगे हम और बने रहिए हमारे साथ, यानी कि FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: पंडित जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लविना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: टायर लो सोना जीतो।
8: क्या?
7: जी हाँ,
9: चावला टायर
7: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
9: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
10: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।

0: जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जेंटीना के साथ और अखिल भैया मेरे साथ है, जो कि आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं। यानी कि भैया इनको शेर और शायरी करने का बड़ा ही मन है, तो आज ये अपने पिटारे में बहुत अटपटे चटपटे यानी कि रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें लेकर आए हैं, प्यार मोहब्बत। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट कितना मायने रखता है?
1: रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत मायने रखता है। रिलेशनशिप में ना सिर्फ चैट और रील से ही काम नहीं चल सकता, थोड़ा तो ट्रस्ट आपको रखना ही होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ट्रस्ट थोड़ा नहीं, मुझे लगता है कि ट्रस्ट पूरा होना चाहिए, तभी आपका रिलेशन आगे तक लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है।
1: रिश्ता वही मजबूत होता है जहाँ बातें कम और समझ ज्यादा हो।
0: क्या बात है।
1: और नाराजगी कम परवाह ज्यादा हो।
0: समझदारी बहुत मायने रखती है ना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
1: बस आजकल प्रॉब्लम यही है कि लोग प्यार नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि लोग उस प्यार के लिए पेशेंस नहीं रखते।
0: पेशेंस होगा कैसे, मैं बताती हूँ। पेशेंस लेवल पता है कहाँ खो गया है? पहले चिट्ठी वाला प्यार हुआ करता था ना, लेकिन अब ऑनलाइन डिजिटल है, जब भी एक मिनट में मैसेज करो आपको रिप्लाई आ जाता है। पहले के टाइम में ये होता था कि इंसान को गुस्सा भी आ रहा है ना, तो दिखाए कैसे, वो लेटर लिखता था भाई, जब तक वो लेटर पहुंचता था इंसान के गुस्सा वही इंसान। लेकिन अब बैक टू, आपने एक मैसेज किया गुस्से वाला, दूसरा आपको बैक टू बैक रिप्लाई देगा, तो वही रिलेशनशिप हमारा खराब हो जाता है।
1: सबसे डेंजरस लाइन पता है कौन सी होती है? तुमसे बात करनी है, उसके बाद तो उस बंदे के ना अपने पुराने पाप वाप सब याद आ जाते हैं। अरे यार कौन सी ऐसी बात करनी होगी।
0: हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम होपलेस हो जाता है इंसान। तुमसे बात करनी यानी कि कुछ तो बात है, तभी बात करनी है ना। सो श्रोताओ, आपके मतलब आप किसी से प्यार करते हैं और ट्रस्ट की बात आती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या राय होगा? हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी करके बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको व्हाट्सएप ही करना है, कॉल भी कर सकते हैं, शायरी भी सुना सकते हैं, आप उनका नाम भी डेडिकेट कर सकते हैं, उनके लिए कुछ गाने जो आप बोलेंगे हम डेडिकेट कर देंगे। आप उसकी टेंशन ना लीजिए, बस आपने कॉल या मैसेज करना है हमें, हमारा नंबर है 9837896896। चलिए एक बहुत ही प्यारा गाना, उसके बाद गाने के बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच, और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

0: मोड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ और अखिल भी है मेरे साथ एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी क्या कहा आपने, क्या नाम रख दिया जाए?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, अब आपने नाम तो इतने सारे
0: रख दिए। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, अभी आपने बोल दिया कि सही बोला है तुमने।
1: हर लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं हो जरूरी नहीं है, कुछ कहानियां हमसे स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है।
0: क्या बात है, सही कहा आपने, कुछ कहानियां स्ट्रॉन्ग होती है और मुझे लगता है कि हम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।
1: कुछ भी
0: क्यों, कुछ भी डबल काम कर करके फिर भी काम तो करते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग ही होता है इंसान।
1: ये तो है, तुम तो बिल्कुल एकदम सुबह से शाम तक पूरा स्ट्रॉन्ग होके घूमती रहती हो।
0: और आप तो कर्मी काम, ये मुझसे ज्यादा काम करते हैं श्रोताओ। ये सुबह आ जाएंगे 6 बजे स्टूडियो में पधार जाते हैं। रेड कहते हैं कि मैं आनंद के साथ आता हूँ, लेकिन ये बोलते नहीं, वो अलग बात है। और फिर ये जब मतलब रात को इनको बोलो कि भैया आपको शो करना है, तो इन्होंने आज बोल दिया कि अब मैं डेली आया करूंगा। तो श्रोताओ अब आपको डेली इनका इंतजार करना पड़ेगा कि अखिल सर आएंगे हमारे साथ लव स्टोरी लेकर, अपनी लव कहानी बताने के लिए। लेकिन मैं आप कहती हूँ, एक मैसेज आता है हमारे पास ना, ये रितेश जी का मैसेज है।
1: हाँ।
0: और इनका कहना है कि देखिए प्यार में ना ट्रस्ट बहुत जरूरी है, अगर प्यार में ट्रस्ट है तो आप समझो कि दुनिया आपने जीत ली है, अगर प्यार में ट्रस्ट नहीं है तो दुनिया जीत कर भी आप हार चुके हो।
1: बिल्कुल सही कहा रितेश जी ने। और रितेश जी की एक बात और अच्छी लगी, इन्होंने ये भी कहा कि वक्त बदला लोग बदले, नहीं बदला तो बस मेरा दिल।
0: क्या बात है,
1: जो आज भी उसी मोहब्बत को याद करता है।
0: अरे अरे क्या बात,
1: तो मैं तो आशा करता हूँ रितेश जी आपको वो मोहब्बत जो है, आप जैसी भी, आप अच्छे से उसे याद से संकोर के रखे अपने पास और उसको हमेशा अपने, मतलब कहते हैं ना कुछ यादें ऐसी होती हैं जब हल्की सी याद करो तो एक मीठी सी स्माइल आ जाती है।
0: कोई भी प्यार हो हमें संजो कर रखना चाहिए। और अब मुझे लगता है आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, पहला प्यार अच्छा होता है या सेकंड प्यार अच्छा होता है?
1: पहला प्यार होता है, वो पहले प्यार को आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते।
0: पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, दूसरा प्यार कभी खत्म नहीं होता है।
1: वो पहला प्यार ही सिखा देता है आपको कि आगे प्यार करना ही नहीं करना। तो उस पहले प्यार को तो आप कंपेयर नहीं कर सकते।
0: ये तो है, और भुला भी नहीं सकते श्रोताओ, कितने भुलाने की कोशिश करो लेकिन नहीं भैया, भूल नहीं सकते हैं। चलिए फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ और सुनते रहिए हमारे साथ अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: साथ, जुरीना के साथ और अखिल सर मेरे साथ है, जो कि भैया ये लव स्टोरी लेकर तो आए हैं, लेकिन अब बात कह रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। भैया लॉन्ग डिस्टेंस पे आज के बारे में बिना बात करें तो ही बेटर है। बहुत से ऐसे श्रोता होंगे जिनका दिल दुखने लग जाएगा, अरे यार काफी टाइम हो गए मिले।
1: कहते तो हैं कि दूरियां जो हैं प्यार को कम कर देती हैं, लेकिन सच्चा प्यार तो दूरियों से भी ना, मतलब एकदम उसका इंतजार जो है दूरियों से सिर्फ इंतजार बढ़ाती है।
0: इतना भी इंतजार नहीं बढ़ाना चाहिए मुझे लगता है, जहां तक कि भाई देखो इंतजार होता है बस एक दो महीने, उससे ज्यादा इंतजार ना होना चाहिए।
1: दूर होकर भी जो पास लगता है वही तो सबसे खास लगता है।
0: आए, आए, क्या बात है, गहरी चोट वाली बात कर
1: दी। अच्छा एक बात बताओ, जो लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है ना रिलेशनशिप में, बताओ कौन सा होता होगा? अच्छा गैस करो।
0: प्यार?
1: नहीं नहीं, कोई अगर जैसे दो लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, जो बहुत दूर हैं और आपस में बातें करते रहते हैं, तो कोई एक ऐसा वर्ड तो होगा जो उनके बीच में जो कॉमन सा होगा।
0: ये तो मैंने कभी प्यार किया नहीं है तो मुझे पता नहीं है।
1: ऐसे एक छोटा सा जो कॉमन वर्ड है वो ये था, बेबी, या नेटवर्क इशू था, फोन कट गया।
0: ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। नहीं वो तो हम घर से भी दूर रहते तभी कह देते, अरे मम्मी नेटवर्क इशू हो रहा है, सो कनेक्ट नहीं हो पा रही मतलब। और ये अच्छा बहाना होता है कि आप कहीं घूमने चले जाओ, बोल दो अरे मम्मी बांध जाओ यार, अरे हाँ यार तुम समझा करो, तुम समझ नहीं सकते हो, प्यार में तुमसे ही करती हूँ, बट क्या करूँ नेटवर्क नहीं पकड़ रहे हैं।
1: हाँ थोड़ा सा नेटवर्क ऊपर नीचे है।
0: जब तक नेटवर्क में आते हैं गुस्सा बबूला सब बाहर निकल जाता है।
1: मगर एक सच बात बताऊं, अगर ट्रस्ट और एफर्ट दोनों तरफ से होना तो रिलेशनशिप कभी वीक ही नहीं हो सकता।
0: क्या बात,
1: चाहे नेटवर्क कितना ही वीक हो मगर वो रिलेशनशिप कभी वीक नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: चलिए एक गाना,
0: म्यूजिकल ब्रेक, बने रहिए आप FM मुरादाबाद 89.4।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना है, एंजॉय किया है। तू जाने ना, आपको कैसा लगा ये गाना?
1: ये गाना जब भी मैं सुनता हूँ ना, ये गाना तो सुनने के बाद एकदम खो जाता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा टच करता है ये गाना कि कुछ ही ऑटोमेटिकली जो होती है ना, शायद मेरे साथ साथ और भी लोग हैं जो सुनने वाले हैं, कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ जाती होगी अंदर से कि हाँ यार, ये कोई है ऐसा जिसके लिए ये गाना बच गया।
0: क्या बात है। और जब गाड़ी में हूँ और ये गाना सुनो तो मैं कहती हूँ वॉल्यूम बढ़ा लेनी चाहिए। मजा तभी आता है जब वॉल्यूम बढ़ा के आप गाने सुनो।
1: बिल्कुल सही बात।
0: अच्छा, हम अब बात करने वाले हैं, यानी कि मोहब्बत दिल से होती है। मोहब्बत दिल से होती है या फिर आंखों से होती है?
1: मोहब्बत तो दिल से ही होती है, आंखों से तो सिर्फ इशारे होते हैं।
0: आय हाय आय हाय, क्या बात है। लेकिन जो आंखों से प्यार दिल में बसता है वो लॉन्ग टर्म तक चलता है, पता है आपको? दिल से जो आंखों में उतर जाए,
1: कुछ बातें तो आंखों से ही हो जाती है। मतलब पूरा एक नजरों में ही पता चल जाता है, हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हो जी, कहाँ हो जी, और कैसे थे जी, सब बातें आंखों से हो जाती
0: है। लेकिन आपको बताऊं, ये कहाँ हो जी, कैसे हो जी, मुझे लगता है कि प्यार में फ्रीडम बहुत जरूरी है। हाँ, आई नो कि ये सही है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, ये बताना बहुत जरूरी होता है, अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। कुछ मतलब इंसिडेंट होता है आपके साथ तो वो आपको लोकेशन पर पहुंच सकता है ना,
1: आपको पता हो कि हाँ भाई, आपका हमदम किधर है।
0: हमदम, क्या बात है जी।
1: ना चांद की चाहत, ना तारों की फरमाइश, हर जन्म तू मिले, बस इतनी सी है ख्वाहिश।
0: आय हाय, क्या बात है। लेकिन मैं कहती हूँ मुझे हर जन्म चांद मिलता रहे, वो भी मेरी विंडो से। जिसका दीदार मैं डेली करती हूँ, और दीदार करते करते मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि काश इस चांद को मैं हमेशा अपने साथ रखती। लेकिन उसके लिए मन में मेरे ख्याल आता है कि इस चांद के ऊपर मैं सीढ़ी लगा कर जाऊं, उसे सुई धागे से पिरो कर लाऊं और हमेशा अपने साथ रखूं, कभी अपने से दूर ना होने।
1: क्या बात है, तुम कहाँ रखोगी, तुम्हारा तो बहुत छोटा कमरा है।
0: नहीं, अरे कमरा छोटा है, दिल थोड़ी छोटा है।
1: सही है, सही है भाई साहब, आप जाएं और सीढ़ी जरा थोड़ी सी लंबी लगाएं, क्योंकि छोटी से मोटी सीढ़ी से तो आपका काम होने वाला नहीं।
0: नहीं नहीं यार, सीढ़ियों से हम पहुंच जाएंगे, और ऐसे पहुंचेंगे कि चांद को जब अपने पास लेकर आएंगे जाने नहीं देंगे,
1: तो बिल्कुल
0: सातों बंधन में बंध जाएंगे। समझ गए आप? अब
1: हमारे एक लिसनर का, अजीत जी का मैसेज आया है, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें सिर्फ स्पेशल फील मत कराएं, उन्हें सिक्योर भी फील कराएं।
0: अरे अरे,
1: क्या बात है। अजीत जी ने बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही एकदम एक ही इन बातों में सारी बातें कह दी अपनी।
0: लेकिन हम अब जाने की इजाजत लेने वाले है ना।
1: बिल्कुल सही बात कहा।
0: तो क्या कहेंगे आप?
1: मैं तो अपने सिंगल लिसनर्स से यही कहूंगा कि टेंशन ना ले, आपके लिए भी कोई ना कोई ऑनलाइन आज भी टाइप कर रहा होगा या कर रही होगी।
0: अरे क्या बात है जी, बस नंबर की जरूरत है। हमारा नंबर है 9837896896। गाइस कॉल करिएगा, रीना उठाएगी।
1: और सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज़ मुरादाबाद।
0: क्या बात है जी। चलिए जी, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, यूं मुस्कुराते रहिए। आई होप कि आप सभी ने खाना एंजॉय कर लिया होगा, हम जाके जम करेंगे।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: You are listening to Coke Studio Pakistan on Savan.
1: टायर लो सोना जीतो
2: क्या
1: जी हाँ
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका जल्दी कीजिए
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून TNC अप्लाई
6: नमस्कार श्रोताओं आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल जो श्री साई हॉस्पिटल में है इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद हाउ आर यू कैसे हैं आप प्लीज बताएं आकाश जी
7: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म
6: थैंक यू सर
7: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस
6: ओह वाओ लवली कैसा लग रहा है पहले तो मैं यही पूछूंगा
7: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस
6: लाइक
7: थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल ठीक है आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो
6: क्या बात है
7: तो पहले तो मैं बताता हूँ मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है जैसे कि आपने सबको बताया है
6: जी जी प्लीज
7: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से उसके बाद मैंने किया है DM न्यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से
6: क्या बात है
7: अब लोग सोचते हैं ये DM न्यूरोलॉजी है क्या
6: जी
7: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM न्यूरोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं अब आजकल प्रीमेच्योरिटी लो बर्थ वेट मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स
6: हाँ जी
7: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है एंड रही बात मेरे बारे में तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं
6: Alright.
7: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है सो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है ये सब केसेस
6: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया सो डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें जब न्यू बॉर्न बेबी होता है
7: जब बेबी डिलीवर होता है एक्चुअली कॉमन चीजें कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है हेल्दी है तो क्या करते हैं फैमिलीज कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं
6: जी जी।
7: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
6: जी
7: हैं
6: जी जी जी।
7: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा जॉन्डिस कम हो जाएगा
6: जी जी जी।
7: ये कॉमन चीजें हैं कुछ लोग गाय का दूध भैंस का दूध मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं ये चीजें नहीं होती होनी चाहिए ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है मदर के पास है तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए ठीक है अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है कोई वायरल इन्फेक्शन है कुछ है तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें हाइजीन मेंटेन रखें हाथ धो के ही बच्चे को टच करें इन सब चीजों का ध्यान दें
6: ओके सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है तो ये कितना इम्पोर्टेंट है जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए
7: हाँ डेफिनेटली यस अगर मदर हेल्दी है मतलब नॉर्मली क्या होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी है
6: हाँ
7: तो
6: हाँ
7: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं
6: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक
7: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग.
6: ऑलराइट.
7: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है.
6: अच्छा,
7: okay, जो कम वजन के बच्चे होते हैं.
6: हाँ जी, हाँ जी,
7: ठीक है. इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है. बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
6: जी.
7: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है. तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें. नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है. कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह. अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं.
6: ओके,
7: ठीक है. बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी.
6: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए.
7: बेबी को 2-3 आवर्ली इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं. जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
6: हैं, हाँ जी,
7: उनको नहीं पता
6: नहीं
7: होता
6: पता
7: है
6: होता
7: वो क्या
6: है.
7: करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
6: जी.
7: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले.
6: Okay.
7: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है. जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
6: हाँ जी,
7: उसमें
6: हाँ
7: हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं.
6: ओके.
7: तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है. तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा. और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है. फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है. फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद ज़रूरी होता है. तुरंत लेटाना, उसको अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाना.
6: बहुत ही बढ़िया. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं. डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है ना, तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
7: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चे तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना. अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा.
6: बिल्कुल बिल्कुल,
7: है ना,
6: बिल्कुल.
7: वो कॉमन चीजें होती हैं. सबसे पहले
6: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
7: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं. मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं. हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड. कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है. मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है. सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं. तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है. ठीक है. कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है. कॉमन चीजें हमें देखनी है. कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है.
6: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया. नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
7: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती. तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है. मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है.
6: ठीक है, बहुत
7: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
6: जी,
7: है
6: जी, जी,
7: ठीक है. तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें. पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है. मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है, आप एसी चला सकते हैं बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो. डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो. ठीक है. और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है. हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथों पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहना रहे हैं. ठीक है. और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
6: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो है पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
7: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
6: जी,
7: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
6: हाँ जी, हाँ जी,
7: ठीक है
6: हाँ जी।
7: तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
6: हाँ जी, हाँ जी,
7: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है, जिनका जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
6: छोटे बच्चों के लिए जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
7: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
6: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
7: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर
6: जी।
7: हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है, बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यू बॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें, जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूटर एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
6: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप एक क्या संदेश नहीं है जाते जाते?
7: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
6: हाँ जी।
7: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है?
6: जी जी।
7: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है।
6: हाँ जी हाँ।
7: ठीक है। या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीज देखने को मिलती है तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए
6: जी।
7: कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें।
6: बिल्कुल सही कहा।
7: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
6: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे सर। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
2: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
1: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
2: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।